सुनो शारदा 90.8 FM। सुंदर स्त्री हीरा है, लेकिन नेक स्त्री हीरों का खजाना है, ये कहना है शादी का। नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। मैं हूं गगन और प्रोग्राम है शारदा सवेरा।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं डॉक्टर प्रीति सिंह। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपसे बात करने वाले हैं उस शक्ति के बारे में जो बिना किसी दवा के और बिना ही किसी इलाज के एक दर्शन के द्वारा हमारे मन को गहराई से बदल सकती है, जिसको कहा जाता है ध्यान, जिसको कहा जाता है भक्ति मार्ग। क्योंकि भागदौड़ भरी जिंदगी में, सोशल मीडिया के दबाव में, पढ़ाई और नौकरी की चिंताएं, इन सब के बीच में मन को शांति कहाँ से मिले? क्या कुछ ही मिनट रोज ध्यान करके हम सच में ज्यादा शांत, सकारात्मक और संतुलित हो सकते हैं? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं इस्कॉन से जुड़े हुए एक साधक जो भक्ति योग और मंत्र ध्यान का अभ्यास करते हैं। ये सिर्फ एक साधक ही नहीं है, ये एक पेशे से एक इंजीनियर है और इस्कॉन भक्ति शास्त्री के नाम से इनको जाना जाता है, और जो कि TTC सर्टिफाइड भगवत गीता ट्रेनर भी हैं, जो कि शारदा यूनिवर्सिटी के साथ में जुड़े हुए हैं। इन्होंने 13 साल वायरलेस टेक्नोलॉजी पे काम किया है, अलग अलग विभागों में, R&D डिपार्टमेंट्स में इन्होंने IT कंपनीज में काम किया है, और पिछले 10 साल से इन्होंने वैल्यू बेस्ड सेशन और वर्कशॉप्स ली हैं। देश और विदेशों में इन्होंने यात्राएं की हैं और न्यूयॉर्क, USA, लंदन, कैलिफोर्निया, चाइना, ये कुछ ऐसे नाम मैं बता रही हूँ, ऐसे स्थान में बता रही हूँ जहाँ पे जाके इन्होंने भगवत गीता के प्रसार और प्रचार में अपना योगदान दिया है। बल्कि इसके अलावा ये बहुत सारे अकेडमिक कोर्सेज भी जो है ये डिलीवर करते हैं, जिसमें भगवत गीता, इमोशनल इंटेलिजेंस और यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज पे जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, ये कुछ ऐसे विषय हैं जिसपे इन्होंने बहुत सारी वर्कशॉप्स लगाई हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है वो आयोजित किए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नाम है हमारे बीच में, जीव गोपाल दास जी, और जो हमें बताएंगे कि हरे कृष्ण महामंत्र, जप माला और सरल साधना के जरिए कोई भी साधारण व्यक्ति अपने जीवन में आध्यात्मिकता, एकाग्रता और आनंद कैसे ला सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ और शुरू करते हैं आज का सफर ध्यान और भक्ति के रंगों के साथ में। जीव गोपाल दास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुनो शारदा में।
1: धन्यवाद मैम, आपके इस प्रोग्राम में मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये एक बहुत अच्छा मंच है जो कि आप इतने सालों से बहुत सुंदर रूप से लेके चल रहे हैं। रियली थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन।
0: बहुत बहुत शुक्रिया हमारा इनविटेशन जो है एक्सेप्ट करने के लिए। और मैं खुद बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ, उत्सुक हूँ ये जानने के लिए, क्योंकि आप पेशे से एक इंजीनियर हैं, तो इंजीनियरिंग से आप कैसे भक्ति मार्ग में आप रमे, कैसे इस मार्ग पे आए और कैसे इस्कॉन का एक हिस्सा बन के आप गीता के प्रचार प्रसार में अपने आप को शामिल करने के बारे में सोचा?
1: बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा कि मैं पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और मैंने 13 साल इंडस्ट्री में जॉब किया, पूरी दुनिया में जाके आया, लेकिन एक प्रॉब्लम मैंने हर जगह देखी और वो थी हर व्यक्ति खुश रहना चाहता है। ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वो खुश नहीं है। मेरा सफर हुआ उस खुशी के पीछे भागने की। पेशे में तो मैं भागता रहा और अपने आप को एंजॉय किया, लेकिन जब उस खुशी की दौड़ में भागा तो मुझे एहसास हुआ कि पेशे से पूरी बात नहीं बनेगी, थोड़ी सी कमी है। उसको पूरा करने के लिए एक बहुत अच्छी सुंदर व्यवस्था है, जब हम कोई इच्छा करते हैं तो पूरी प्रकृति और भगवान सब मिल के हमारे लिए कार्य करने लग जाते हैं। और यहाँ पर मेरे हाथ में श्रील प्रभुपाद की भगवद गीता यथारूप, भगवद गीता एज इट इज मेरे हाथ में आई, और उसको क्योंकि एज एन इंजीनियर मुझे रिसर्च में बहुत सारा पढ़ना पड़ता था, भगवद गीता पढ़ना शुरू किया इसी एटीट्यूड के साथ, स्क्रूटिनाइजिंगली, इसमें कुछ गलती हो सकती है, चलो पकड़ते हैं।
0: क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से
1: एग्जैक्टली गलती तो नहीं मिली, लेकिन मेरे जीवन में एक बहुत सकारात्मक परिवर्तन आया और इससे मैं भक्ति योग में जुड़ा।
0: किस तरह के परिवर्तन की बात कर रहे हैं आप?
1: जब हम देखते हैं भगवद गीता हमें बताती है कि आप इस संसार में जब भी जितनी भी खुशी, किसी भी वस्तु में जितनी खुशी को एंजॉय कर सकते हैं, वो वस्तु आने वाले समय में आपको उतना ही दुख प्रदान करने वाली। उदाहरण देखिए, आप मान लीजिए बहुत एक दो साल तक पैसा सेविंग करते हैं कि मुझे एक बड़ी कार खरीदनी है।
0: जी जी।
1: और आप खरीद के आ जाते हैं शोरूम के बाहर निकलते हैं।
0: हाँ।
1: लेकिन जैसे ही आप शोरूम से बाहर निकलते हैं और कार को आप जैसे ही टर्न मारते हैं और रोड पे आते हैं, अचानक से लेट से रिक्शा वाले ने आके स्क्रैच मार के निकल गया, तो बताइए वो स्क्रैच आपकी गाड़ी पे लगा या आपके दिल?
0: बिल्कुल दिल पे लगा।
1: तो इस गाड़ी में जितना
0: और
1: सुख दिया।
0: आपने तो मुझे कुछ याद भी दिलवा दिया कि हम कहते हैं ना कि ओनली योर चाइल्ड हैज द कैपेसिटी टू हर्ट यू मोस्ट इन द वर्ल्ड। क्योंकि जितना प्यार हम अपने बच्चों से करते हैं, जितना ख्याल उनका रखते हैं, जितनी खुशी वो हमें देते हैं, तो क्या एक वक्त पे वो हमें सबसे ज्यादा दुख दे सकते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हैं और वो देते हैं।
0: देते हैं। अच्छा, हमने भी दिया है। जब हम बच्चे थे तो हम भी अपने जो है माता पिता को, पेरेंट्स को परेशान करते ही थे, तो दुख तो हमने भी दिया है। ये तो एक जनरेशनल प्रोसेस है जो आगे बढ़ रहा है।
1: यस, आप देखेंगे कि जिससे जितना लगाव है उससे जितना प्रेम मिलता है उससे उतना ही क्लेश भी मिलता है।
0: ओके,
1: राइट। ये केवल दूसरों की बात नहीं है, रिश्तों की बात नहीं है, स्वयं हमारा शरीर भी जितना सुख देता है वो जाते जाते उतना दुख भी देके जाता है।
0: जी,
1: हमारा
0: जी।
1: मन जितना हमें सुख देता है उतना ही दुख भी जाता
0: है। देकर
1: बिकॉज इस संसार में एक कंसेप्ट है कि सुख के साथ दुख फ्री में मिलेगा, तो दो ऑपोजिट पोल्स के बीच में हमेशा हमें ट्रेवर्स करना पड़ता।
0: तो ये एक कॉम्बिनेशन है, ये एक पैकेज है जो कि साथ में ही आएगा।
1: लेकिन भगवत गीता हमें बताती है कि सुख और दुख के ऊपर भी एक ऐसी दुनिया है। जब सुख के पीछे भागते तो दुख मिल सकता है, लेकिन हाँ। एक ऐसी दुनिया है जहाँ की अगर हम सुख के पीछे भागेंगे तो सुख बढ़ता चला जाए, और उसको कहते हैं वो एक एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कि ये दो पोल्स के बीच में दुनिया नहीं चलती। जब सुख के पीछे भागते हैं तो बढ़ता जाता है, और उसको सुख नहीं बोलते, उसको आनंद कहते हैं। इस आनंद की खोज हमने शुरू करी और ये बढ़ता चला गया।
0: तो किस प्रकार का आनंद है ये जीव गोपाल दास जी जिसकी आप बात कर रहे हैं? हम भी उस आनंद की अनुभूति करना चाहेंगे आपकी मौजूदगी के साथ में।
1: ये बहुत अच्छा आपका प्रश्न है, और भगवत गीता बताती है कि ऐसे प्रश्न केवल एक बुद्धिमान व्यक्ति ही कर सकता है। अगर इसलिए आप सबके मन में भी यही प्रश्न है कि हम कैसे इस सुख की प्राप्ति कर सकते हैं, इस आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम आपको ABCDE फॉर्मूला देंगे। ए फॉर्मूला इस ऐसे लोगों के साथ पहले एसोसिएट कीजिए जो कि इस आनंद की खोज में हैं। क्योंकि अगर मैं देखूं तो क्रिकेट के मैदान में सचिन तेंदुलकर नहीं बनते अगर वो हॉकी के मैदान में जाकर क्रिकेट की प्रैक्टिस करते।
0: जी,
1: विच मीन्स कि उन्हें क्रिकेट के एक्सपर्ट्स का एसोसिएशन चाहिए था। और एक समय उन्हें चाहिए था, और एक ऐसा समय आया जब दूरी दुनिया उनके एसोसिएशन के पीछे दीवानी थी। सो एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
0: यानी जिन लोगों के साथ हम जुड़ते हैं, जिस स्थान पे हम रहते हैं, जिस वातावरण में हम रहते हैं, वो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है हमें बनाने में, हमारी पर्सनालिटी को एस्टैब्लिश करने में।
1: एग्जैक्टली, आप देखिए कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैं सोशल मीडिया से दूर होना चाहता हूँ, मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक और बताने आजकल कितने प्लेटफॉर्म्स आ गए, इनसे दूर होना चाहता हूँ। परंतु ये दूर नहीं हो पाते, प्रयास करते हैं, हर साल रिजोल्यूशन लेते हैं कि अब नहीं करूंगा, ये आदतें मैं छोड़ दूंगा। नहीं छोड़ पाएंगे जब तक कि ऐसे लोगों का एसोसिएशन नहीं लेंगे जो कि छोड़ चुके हैं या छोड़ने का सीरियस प्रयास कर रहे हैं
0: या इस प्रकार के वातावरण में रहते ही नहीं है, उसका प्रयोग करते ही नहीं है।
1: Exactly, ma'am.
0: तो देखिए, जो सामुदायिक रेडियो स्टेशन है हमारा, और इसके जो श्रोता है वो काफी हद तक एक छात्र कम्युनिटी भी है, स्टूडेंट कम्युनिटी भी है, तो खास तौर पे मैं उनको ध्यान में रखते हुए ये बात आपसे पूछ रही हूँ कि समय के साथ में कई बार हमारे वातावरण के भी प्रभाव में आके हमारे कुछ स्टूडेंट्स कुछ एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं, तो उस एडिक्शन से बाहर निकलने का भक्ति साधना में क्या जरिया हो सका है?
1: आपका ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से भी ज्यादा स्पिरिचुअलाइज्ड क्वेश्चन है। इस प्रश्न के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, बट देखते हैं हमारे स्टूडेंट्स तैयार हैं कि नहीं।
0: जी,
1: सो फर्स्ट थिंग इज, अगर स्टूडेंट्स किसी भी तरह के एडिक्शन में फंसे हैं तो उन्हें सबसे पहली चीज ये सोचनी चाहिए थी क्या वे बदलना चाहते हैं। अगर उनके अंदर से प्रश्न आता है मैं बदलना चाहता हूँ, तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। करने के लिए उन्हें ऐसे व्यक्तियों से एसोसिएशन लेना पड़ेगा जो कि अपने जीवन को बदल चुके हैं। मैं एक सुंदर सा उदाहरण देता हूँ। शिला प्रभुपाद जो कि इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, 1966 में वो न्यूयॉर्क पहुंचे, और न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद वो उनके गुरु ने उन्हें इंस्ट्रक्शन दिया था कि जाकर आपको विदेशों में अंग्रेजी भाषा में प्रचार करना है भगवद गीता और भागवत धर्म का। तो इसीलिए वे पहुंचे वहां पर, और वहां उन्होंने देखा कि समाज में कोई नियम ही नहीं है। एडिक्शन तो छोड़ दीजिए, एक्सट्रीम एडिक्शंस, ड्रग एडिक्शन, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, कोई ऐसा एडिक्शन नहीं था जो वो करते थे।
0: जी,
1: नहीं करते थे। परंतु शिला प्रभुपाद ने उनको एक चीज दी, जैसा हमने डिस्कस किया एसोसिएशन, संघ प्रदान किया। किसका संघ दिया? शिला प्रभुपाद भगवान के एक शुद्ध भक्त थे, और उन्होंने शुद्ध भक्त जब किसी व्यक्ति को संघ प्रदान करता है तो किस प्रकार से उनके जीवन में चेंज आया आप देखिए। ऐसे लोग जो कि एडिक्शन से बाहर नहीं आना चाहते थे, कृष्ण का नाम जीवन में कभी सुना नहीं
0: जी,
1: लेकिन वे भक्ति योग को इतना सीरियसली प्रैक्टिस करने लगे कि सुबह 4 बजे उठते थे और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे, भगवद गीता पढ़ते ही नहीं थे, जाकर भगवद गीता को डिस्ट्रीब्यूट भी करते थे ज्यादा से ज्यादा। दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। जिसने कृष्ण का नाम नहीं सुना, भगवद गीता का भी सुना नहीं है, वो भगवद गीता के डिस्ट्रीब्यूशन को कर।
0: बल्कि मेरा अपना एक पर्सनल जो है अनुभव कहिए, ऑब्जर्वेशन कहिए, कि हम जिस धर्म से जुड़े हुए हैं, हम जिस देश में रह रहे हैं, वहाँ तो गीता हमारे जीवन का एक आधार है, है ना। लेकिन अगर हम विदेश की बात करें तो उनका जुड़ाव तो आप छोड़िए, कि आपने जैसे कहा कि उन्होंने कभी धर्म का नाम ही नहीं सुना था इस प्रकार का, तो उनका जो भक्ति भाव हम देखते हैं वो हमें बहुत इम्प्रेस करता है, कि कैसे एक इंसान एक डिफरेंट कल्चर से आकर उठकर दूसरे कल्चर में किस तरीके से अपने आप को जो है वो समाहित कर लेता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो ये जो असर आप बात कर रहे हैं, ये कैसे होता है, किस प्रकार से ये हम किसी व्यक्ति को जो है प्रोत्साहित कर सकते हैं, एनकरेज कर सकते हैं कि आप इस भक्ति भाव की तरफ जाएं, आप एडिक्शन से जो है बाहर निकलें, और क्या क्या जरिए हो सकते हैं इसको अपनाने के?
1: सबसे प्रमुख, मैम आपने बहुत अच्छा ये भी प्रश्न किया है, सबसे प्रमुख चीज जो व्यक्ति को जानना चाहिए, अपनी सही पहचान को
0: जी।
1: हमारी सही पहचान का अर्थ है कि क्या जो मैं रोज सुबह ब्रश करते हुए आईने में देखता हूँ,
0: हाँ,
1: क्या मैं यही हूँ? कहने का तात्पर्य ये है,
0: यानी हमारा क्या शरीर ये हमारा ही है या हम ही शरीर के ही हैं,
1: या मैं शरीर हूँ भी कि नहीं,
0: हूँ भी कि नहीं।
1: फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण की तरह देखिए, अगर ड्राइवर कहे कि मैं ही गाड़ी हूँ,
0: हाँ,
1: तो क्या ये सही होगा?
0: हाँ।
1: तो ड्राइवर तो गाड़ी नहीं होता,
0: नहीं हो सकता।
1: गाड़ी केवल एक माध्यम है लक्ष्य तक पहुँचने के लिए
0: जी।
1: इसी प्रकार से ये शरीर हम नहीं है, क्योंकि ये शरीर एक दिन समाप्त हो जाएगा। इसलिए भगवत गीता हमें बताती है कि आप शरीर नहीं है, आप शरीर को चलाने वाले ड्राइवर अर्थात आत्मा है, और उस आत्मा की पहचान अगर आप सही से कर लेते हैं तो फिर आप केवल इस शरीर को जैसे चलाना चाहें, अपने मन और बुद्धि को जैसे चलाना चाहें इसको चला सकते हैं। मन

0: तब परेशान करता है जब आप सोचते हैं मैं मन हूँ। जब आप मन को बोलेंगे कि तुम्हारे साथ जो भी प्रॉब्लम है तुम मैं नहीं हूँ, अर्थात मैं आत्मा हूँ और तुम मेरे मन हो, मैं मन नहीं हूँ। जब मन को स्वयं से अलग कर वो व्यक्ति देखने लगता है तो उसमें सुधार की गुंजाइश है। लेकिन किसी व्यक्ति को आप बोलेंगे कि आप सही नहीं है तो उस व्यक्ति को ये प्रश्न पूछना चाहिए सही क्या नहीं है। आप शरीर की बात कर रहे हैं, मन की बात कर रहे हैं या बुद्धि की बात कर रहे हैं, कि आत्मा तो हमेशा सही है।
1: सही है बिल्कुल।
0: तो जब पता चला कि प्रॉब्लम तो मन में थी, मन कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो उस पे काम करते हैं। लेकिन वो मन मैं ही मान लूंगा ना, तो मेरा अहंकार इसे एक्सेप्ट करने के लिए मुझे मानने नहीं देगा और मेरा अहंकार मुझसे कहेगा अरे मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं बिल्कुल गलत नहीं हूँ। और यहाँ हम सुधार करने के लिए तैयार नहीं, कितना ही बुरा एडिक्शन हो हमारे जीवन में लेकिन वो सुधारा जा सकता है अगर हम एक्सेप्ट करें कि वो प्रॉब्लम हमारे अंदर नहीं है, हमसे जुड़े एक एलिमेंट में, तत्व में है। गाड़ी में प्रॉब्लम है उसको सुधार सकते हैं, ड्राइवर में प्रॉब्लम है तो मुश्किल हो गया ना। इसलिए मन को अपने से अलग कर देख कर और फिर उस पर कार्य करें बड़ा आसान।
1: तो ये जो आप कह रहे हैं कि शुरुआत करें अपने मन पे काम करने की, उस मन पे काम करने के लिए पहला स्टेप क्या हो सकता है?
0: मन को क्या अच्छा लगता है वो करिए। कितना आसान हो गया ना,
1: जो मन करे, जहाँ मन जाए, क्योंकि मन तो एक चंचल है। अक्सर हम कहते हैं कि मन बहुत चंचल है, ये शब्द यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं इनका मन के लिए, तो उस चंचला को भी तो नियंत्रित करना जरूरी होता है।
0: आप अगर स्प्रिंग को दबाएंगे, एक साल तक दबाए रखेंगे तब भी वो उछल के रिएक्ट करेगा। मन भी बेचारा ऐसा ही है, उसमें इसकी क्या गलती, उसकी प्रकृति ऐसी। मन में तीन चीजें होती है, थिंकिंग अर्थात सोचता है, फीलिंग अर्थात कुछ महसूस करता है, और इंटेंशनैलिटी यानी कि कुछ करने की उसमें प्रवृत्ति होती है। अब ऐसे में जो दूसरा मैंने पार्ट, मन के अंदर फीलिंग्स होती हैं, कुछ इमोशंस होते हैं, कुछ महसूस करना चाहता है, जहाँ उसको अच्छा लगता है वो करता है ना। तो अगर हमें अपने मन को कंट्रोल में रखना है और आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ना है, देखिए दो चीजें मन एंजॉय करता है, एक तो या तो आध्यात्म में बढ़कर अपने आप को कंट्रोल कर लेगा या फिर भौतिक विषयों में एडिक्शन में कहीं ना कहीं फंस जाएगा।
1: और भौतिक भी अगर हम बात करें तो ये सिर्फ एडिक्शन, जो कहते हैं कि हर व्यक्ति एडिक्टेड है, हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ अल्कोहल एक एडिक्शन है या ड्रग्स एक एडिक्शन है। मुझे कई बार लगता है कि चाय भी एक एडिक्शन है, जो अब मेरे जैसे भारतीयों को बहुत विचलित करती है। बार बार किसी से बात करने की इच्छा होना, मन को खाली करना, वो भी एक एडिक्शन है। कुछ लोग नेगेटिव एनर्जी बहुत फैलाते हैं अपने आसपास, वो भी एक एडिक्शन है कि उनको उस तरह की बातें करने की आदत हो गई है। तो ये जो एडिक्शन है, जो खास तौर पे हम जिस पे बात कर रहे हैं, भक्ति मार्ग में उससे निकलने का क्या तरीका बताया गया? उस मन को नियंत्रित तो नहीं करने की बात कहूंगी मैं अब, क्योंकि आपने कहा जितना नियंत्रित करेंगे वो उतना बेकाबू होता चला जाएगा, तो उसको सही मार्ग पर लेकर आने का क्या तरीका हो सकता है?
0: वेरी नाइस क्वेश्चन मैम। अब अगर दूसरे स्टेप पे आगे बढ़े, कंट्रोल मत करिए, फोर्स मत करिए मन को। मन को जो अच्छा लगता है वो करते हैं ना।
1: हाँ।
0: तो हम लाइफ में अगर एनवायरनमेंट ऐसा रखें, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, सुबह वॉक पे जाना, सुबह जल्दी उठ के मेडिटेशन करना, अच्छा क्वालिटी का भोजन लेना, केवल जिह्वा की तृप्ति के लिए रोज पिज्जा बर्गर नहीं खाना। तो कहने का तात्पर्य, अगर अच्छी आदतों में भी मन को अच्छा लगने लगे तो करने लगेगा। तो मन को ये कन्विंस करना और उस ज्ञान के स्तर पर लाना कि अच्छी चीजें अच्छी,
1: तो यानी मन को भी हमें कन्विंस करना होगा, बच्चे की तरह समझाना होगा उसको कि ये तुम्हारे लिए अच्छा है, ये बुरा है,
0: उसके इमोशंस में अच्छी चीजों को भरना है। जैसे कि जब टंकी में पानी गंदा होता है तो हम टंकी पूरी इतनी बड़ी टैंकर साफ करने तो नहीं जाते। हम क्या करते हैं,
1: फिल्टर लगा देते हैं।
0: हाँ। फिल्टर भी लगाते हैं और एक और चीज करते हैं, ऊपर से साफ पानी चालू करते हैं और नीचे से गंदे पानी को निकलने का रास्ता खुला छोड़ देते हैं। जैसे ही गंदा पानी निकलता जाता है, पानी साफ हो जाता है। कहने का तात्पर्य, अच्छे विचारों को, सात्विक विचारों को मन में आने दें, भगवद गीता के उत्तम विचारों को मन में आते रहने दें और धीरे धीरे आप देखेंगे कि मन में जगह तो उतनी है ना। जैसे अच्छे विचार अंदर आएंगे, जो पुराने विचार हैं, दुखित विचार हैं, धीरे धीरे बाहर होते जाएंगे। कुछ समय में आप देखेंगे मन में अच्छे विचार ज्यादा हैं और स्वयं अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते।
1: अक्सर कहा जाता है कि मेरा मन नहीं लगता है ना, और जैसे हमारे बॉलीवुड ने मन को बड़ा रोमांटिसाइज भी कर दिया है कि मेरा मन तुम्हारे बगैर नहीं लगता है, या मन जो है वो अकेले खुशी नहीं देता है, किसी और के साथ खुशी नहीं देता है। तो मन लगाने का क्या तरीका है भक्ति मार्ग में, मन को हम कैसे लगाते हैं और किस प्रकार से जो है वो, जैसे आप एक तरीका आपने सुझाया कि सुबह समय से उठें और मेडिटेशन करें, मेडिटेशन करने के क्या तरीके हो सकते हैं, ये हमें कैसे अफेक्ट करता है, थोड़ा सा इस बारे में बताइए।
0: इस पे दो प्रश्न मैं देख पा रहा हूँ। पहला ये कि मन को कैसे हम अध्यात्म में लगा सकते हैं
1: जी।
0: और बॉलीवुड ने जिस प्रकार से
1: हाँ।
0: मन को या दिल को
1: हाँ।
0: जिस प्रकार से रोमांटिसाइज किया है उसी को यूज कर लेते हैं। जब किसी से प्रेम होता है यू
1: हाँ।
0: नो you know, आप देखिए बॉलीवुड में भी
1: हाँ।
0: या हॉलीवुड में भी
1: हाँ।
0: लव जो होता है, प्रेम होता है
1: जी।
0: वो वन साइडेड होता है, एक तरफा होता है,
1: एक तरफा है।
0: कहने का तात्पर्य है
1: हाँ।
0: कि उसे एक तरफा ही रखे ना, बट प्रॉब्लम।
1: लेकिन क्या एक तरफा जो प्रेम है क्या वो पूर्ण प्रेम कहा जा सकता है, क्या वो फुल सर्कल है?
0: यस, वही पूर्ण है। यही मैं इस पॉइंट पे आना चाहता हूँ कि एक तरफा लव ही, प्रेम ही जो है पूर्ण है
1: हाँ।
0: जब दो तरफा से हो जाता है
1: तो
0: उसमें स्वार्थ जुड़ जाता है। मैं कुछ आपके लिए करता हूँ, आप मुझे बदले में कुछ देंगे, ये तो बिजनेस हो गया,
1: ये बिजनेस हो गया।
0: प्रेम तो केवल एक तरफा ही होता है,
1: यानी अपेक्षा रखना जो है वो बिजनेस है।
0: एग्जैक्टली अभी हम भक्ति योग में यही करते हैं कि भगवान से कहते हैं, एक संस्कृत में चैतन्य महाप्रभु ने एक बहुत सुंदर श्लोक कहा है
1: जी।
0: उसकी छोटी सी पंक्ति ऐसी है
1: जी।
0: यथा तथा वा विदधा तुलं पटो मत प्राण नाथस्तु स एव नापरः। व्हाट इज द चैतन्य महाप्रभु सेज, महाप्रभु सेज कि देखिए भगवान, मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ
1: हाँ।
0: मैं आपकी प्रेम से सेवा कर रहा हूँ
1: जी।
0: आप मेरे साथ कुछ भी करिए,
1: समर्पण,
0: आप कुछ भी करिए मेरे
1: जी,
0: साथ
1: जी,
0: कितने
1: जी।
0: ही बुरे दिन दिखाइए, लेकिन ये मेरी परीक्षा है, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला हूँ, आप ही मेरे प्राण नाथ
1: जी,
0: हैं
1: जी, जी।
0: जब हम ऐसा कह देंगे तो स्वार्थ से हम बाहर निकलने के लिए अपने आप को खोल देते हैं,
1: खोल देते हैं, यानी प्रभु को समर्पित कर दें हम स्वयं को।
0: एक जगह प्रेम है और दूसरी तरफ काम है। बॉलीवुड में काम को प्रेम की तरह दिखाया जा रहा है, लेकिन जो व्यक्ति ज्ञान में होता है वो इन दोनों को अलग अलग करके देख पाता है और वो शुद्ध प्रेम से बिना किसी स्वार्थ के भगवान की सेवा में लगा रहता है, उससे जो आनंद आता है वो बढ़ता जाता है। लेकिन अगर कामवश व्यक्ति किसी प्रेम में फंसा है, काम में फंसा है, तो थोड़े दिन के बाद फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। इसीलिए हम जब काम की भावना से किसी रिलेशनशिप में या मैरिज में या किसी भी रिलेशनशिप में जब घुसते हैं
1: जी,
0: तो उस रिलेशनशिप में बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेशन आता है,
1: इट डजंट लास्ट लॉन्ग।
0: यस, और जब निस्वार्थ सेवा में जाइए उस रिलेशनशिप में, वो पूरे जीवन आपके साथ है।
1: तो ऐसा कोई मार्ग, जैसे अक्सर हमने सुना है कि आपने कहा दो तरीके हो सकते हैं मन को जो है वो सही रास्ते पे लगाने के, एक मेडिटेशन हो सकता है, अगर हम करें तो मन नियंत्रित रहेगा, दूसरा तरीका भक्ति मार्ग भी हो सकता है। तो क्या ये दो अलग अलग तरीके हैं, और हैं तो किस प्रकार से ये हमारे शरीर और मन पे काम करते हैं?
0: ओके, तो इसमें हम क्विकली अब अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि भक्ति क्या अलग से करनी पड़ती है या हमारे अंदर है
1: जी।
0: सो अगर शॉर्ट में बोले तो एक बच्चा माँ से बच्चे का क्या रिलेशन होता है, क्या रिश्ता है ये माँ और बच्चे का?
1: एक जुड़ाव है, एक ममता। हाँ,
0: ममता,
1: ममता
0: में प्रेम है
1: जी जी।
0: तो ये प्रेम का बच्चे का और माँ का जो रिश्ता है
1: जी जी,
0: इसमें जब माँ को बच्चे से प्रेम होता है तो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर बच्चे को सर्व करती है
1: जी जी।
0: एक दिन ऐसा आता है जब बच्चा उसके पंख
1: निकल
0: जाते हैं, निकल
1: हाँ।
0: जाते हैं और वो उड़ना चाहता है
1: हाँ।
0: माँ कहती है बेटा कोई बात नहीं, जा तू उड़ और अपने जीवन में यू नो सक्सेस को, सफलता को प्राप्त कर,
1: को प्राप्त कर।
0: वो रोती है, अंदर ही अंदर रोती है, लेकिन वो निस्वार्थ होती है, ये माँ का प्रेम,
1: बांधता नहीं है, यानी प्रेम कभी बांधता नहीं है हमें किसी रिश्ते में या फिर
0: दूसरे रिश्ते के बारे में सोचता है कि ये कितना अच्छा करेगा इस प्रेम में
1: हाँ,
0: अपने
1: हाँ।
0: स्वार्थ से बाहर निकल के व्यक्ति
1: निकल के सोच पाता है,
0: और यही भक्ति है। क्यों? क्योंकि हम शरीर नहीं, हम तो आत्मा है और हम भगवान का अंश है
1: जी,
0: जैसे कि शरीर से माँ ने हमें जन्म दिया है, वैसी आत्मा रूप में इस आत्मा को भगवान ने जन्म दिया है, भगवान का अंश है ये आत्मा। तो उस एंगल से हमारा भगवान के साथ क्या रिश्ता हुआ? प्रेम का,
1: प्रेम का रिश्ता।
0: और प्रेम का रिश्ता है तो क्या करेंगे, हम उनकी सेवा करेंगे,
1: सेवा।
0: शरीर समाप्त हो जाएगा एक दिन, लेकिन आत्मा हमेशा अमर है,
1: साथ में रहेगी।
0: तो बिल्कुल, हमारा इटर्नल शाश्वत रिश्ता है भगवान से प्रेम का। और यही अगर हम प्रेम भगवान से करते हैं तो भक्ति हमारे जीवन का अंश है, अलग से नहीं करनी है
1: जी जी। और ये जो मार्ग है इस पे चलने में परिवार का, हमारे आसपास के घर का माहौल का कितना असर पड़ता है?
0: जैसे हमने कहा कि शरीर जो है बदलता रहता है, आत्मा का पिछले जन्म में तो कोई घर था,
1: घर था।
0: अगर उसने पिछले जन्म में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया है
1: जी
0: भक्तियों को
1: हाँ।
0: इस जन्म में आकर उसको अगर फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं मिलता
1: हाँ।
0: तब भी वो फेवरेबल एनवायरनमेंट बना लेता है या उस फेवरेबल एनवायरनमेंट में चला जाता है, ये नेचुरल है हमारे साथ। अगर मुझे क्रिकेट खेलने की इच्छा तो अपने आप क्रिकेट के ग्राउंड में मिलूंगा मैं आपको। वैसे जिसका भक्ति योग, जिसने पहले भी पिछले जन्मों से भक्ति करी अभी पूर्ण नहीं हुई, पूर्ण करने के लिए वो अगले जन्म में भी वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढ के पहुंच जाएगा।
1: यानी कि अक्सर हम कहते हैं कि जब हम किसी से मिलते हैं तो हमें लगता है कि शायद इनसे पहली बार नहीं मिले, मिलते ही जैसे आज आपसे मुझे मिलके ऐसा लग रहा है कि मैं आपसे पहले भी मिली हूँ। तो ये एक हमारा रिश्ता होता है जो हम कभी पहले किसी और जन्म की जब हम बात करते हैं, या एक आप कहिए कि लाइक माइंडेड जो लोग होते हैं, लाइक माइंडेड जो पीपल होते हैं, तो उनका मन को एक दूसरे को आप पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं कि आप जो बात कर रहे हैं वो मेरी समझ में आ रही है और जो मैं पूछना चाह रही हूँ वो आप उस भाव को समझ पा रहे हैं। तो ये रिश्ता बहुत जरूरी है भक्ति मार्ग पे चलने के लिए। मैं जीव गोपाल दास जी एक ऐसी समस्या की बात करूंगी कि जो हमारा जो युवा वर्ग है खासतौर पर वो बहुत जूझ रहा है समस्या से, और ये समस्या ऐसी है कि मुझे लगता है कि जिसमें शायद उनकी ज्यादा गलती नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने जैसे कहा कि सोशल मीडिया का भी प्रेशर बहुत ज्यादा है, उनको पोस्ट करना होता है, लाइक करना होता है, दोस्तों ने लाइक नहीं किया, या फिर रात भर जो है गेम खेलते हैं, सुबह पेरेंट्स जो है वो शिकायत करते हैं कि सुबह टाइम से नहीं उठते हैं, स्कूल में नहीं परफॉर्म कर पाते हैं, एग्जाम्स के समय पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, और अल्टीमेटली ये जो सारी चीजें हैं उनको स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन की तरफ लेके जाती है। तो क्या भक्ति मार्ग में ऐसा कोई रास्ता है जिसके द्वारा जो है वो अपने इस तनाव से बाहर निकल सकते हैं?
0: अभी हमने जैसे चर्चा किया कि भक्ति करनी नहीं होती,
1: हो जाती है,
0: हमारे अंदर
1: होती है।
0: इसी प्रकार से अगर मान लीजिए, उदाहरण देता हूँ कि एक मछली से कहा जाए कि आपको पेड़ पे चढ़ के कॉम्पिटिशन में फर्स्ट आना है, और बंदर से कहा जाए कि पानी में आपको एक घंटे तैर कर फर्स्ट आना है, तो दोनों के लिए अननेचुरल है, अप्रकृतिक है, प्रकृति के उनके विरुद्ध है।
1: बिल्कुल।
0: सो भक्ति योग हमें ये बताता है कि आपकी जो प्रकृति है उसको कैसे हम भगवान की सेवा में लगा सके। फॉर एग्जाम्पल, मैं जैसे आपने देखा मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था
1: जी।
0: अब 10 12 13 साल जॉब करने के बाद अगर मैं भक्ति में आता हूँ तो क्या मुझे अपने स्किल्स को, अपने टैलेंट को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए? डेफिनेटली यस। और इसी तरह से हम शारदा यूनिवर्सिटी में कुछ समय से एक प्रोग्राम रन कर रहे हैं
1: जी,
0: और ये प्रोग्राम बड़ा सुंदर है
1: जी। हाँ, और मैं खास तौर पे इस प्रोग्राम पे अभी आने ही वाली थी, क्योंकि इसके बारे में भी हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि किस रंग में ये प्रोग्राम आप प्रस्तुत कर रहे हैं, किस तरीके से ये हमारे छात्रों को, हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी को प्रभावित कर रहा है, और कुछ ऐसे उदाहरण अगर आंखों के सामने आप देख पाते हैं, कोई ऐसे एग्जांपल कि बच्चों के जीवन में कोई बदलाव आ रहा है इससे, तो वो मैं जानना चाहूंगी।
0: राइट मैम, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। सो नेचुरली हमारी कुछ फीलिंग्स होती हैं, वो किसी ना किसी डायरेक्शन में इंक्लाइंड होती हैं। जैसे कि जैसे ही हमने यहाँ पर इन प्रोग्राम्स को शुरू किया, हम शुरू में कीर्तन करते हैं विद म्यूजिक एंड डांस, तो उसके साथ साथ म्यूजिक डांस के साथ जब हम इस कीर्तन को करते हैं तो अपने आप ही नेचुरली कुछ स्टूडेंट जिनको म्यूजिक अच्छा लगता है, जिनको डांस अच्छा लगता है, स्वयं अपने आगे आ गए, उन्हें कहा हम भी कीर्तन करना चाहें,
1: करना चाहेंगे।
0: सो उनके अंदर वो उनका नेचर था, हमने उनको एक चैनलाइज किया
1: जी जी।
0: ऐसी कुछ स्टूडेंट्स आए बोले कि सर हम इंजीनियरिंग में हैं, सेकंड ईयर थर्ड ईयर, हम क्या कर सकते हैं? मैंने कहा जो मैंने किया, मैंने इस प्रोफेशन से सीखा और मैं अभी उसी टैलेंट को सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा हूँ। हमारे आध्यात्मिक इंस्टीट्यूशंस को भी जो है टेक्नोलॉजी में का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना आना चाहिए, अर्थात ये टेक्नोलॉजी जो हमें दे सकती है वो हमें भी करना चाहिए
1: जी।
0: तो इस प्रकार से उन बच्चों ने कहा यस सर हम भी करना चाहेंगे, आप आइए इंटर्नशिप करिए हमारे साथ में और अच्छे से एक्सपोजर लीजिए। बच्चे बिल्कुल खुश हो गए, बोलते हैं यस सर हम करना चाहेंगे। उन्होंने अपना डिटेल्स दिया कि भाई आप ये रहा हमारा सीवी, आप तो प्लीज इसको परस्यू करिए। कुछ स्टूडेंट्स आए बोले सर मैं क्या कर सकता हूँ? हमने कहा आप क्या कर सकते हैं आप सोचिए, आपका नेचर क्या, आपकी प्रकृति क्या है, और आप भगवद गीता में बताती कि आपके अंदर जो भी टैलेंट है, अर्जुन के अंदर तीर चलाने का टैलेंट था उसको भगवान की सेवा में लगाया, वैसे आपके अंदर जो भी टैलेंट है अगर उसको भगवान की सेवा में नहीं लगा पा रहे तो वो आपके बंधन का, इस संसार में बंधन का कारण बन सकता है। अगर पूर्ण रूप से मुक्त होना है तो जो कुछ भी आपके अंदर टैलेंट है उसको भगवान की सेवा में लगाइए। इसलिए स्टूडेंट से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ये म्यूजिकल अवेकनिंग का जो प्रोग्राम है एवरी ट्यूजडे इवनिंग 4 PM शारदा यूनिवर्सिटी के टेम्पल में हॉल में होता है, और वो आकर जरूर अटेंड करें। वहाँ आप अपने टैलेंट को फ्रीली कैसे आध्यात्मिक रूप से भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। मंदिर केवल घंटी बजाने के लिए नहीं है, मंदिर वो है जो आपके अंदर के नेचर को बाहर निकाल कर लाए ताकि आप अंदर और बाहर दोनों तरफ सफाई से देख सके। So, ये हम
1: so, अध्यात्म हमें वो क्लैरिटी देता है कि हम अंदर और बाहर अच्छे से देख पाते हैं, डिफरेंस समझ पाते हैं।
0: हाँ, आप देखिए, अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहा था, लेकिन उसका टैलेंट जो था वो तीर चलाने में था, और भगवान ने उसे कहा तुम्हारा टैलेंट है तीर चलाने का, तो उसे ही भगवान की सेवा में लगाओ, अलग से जाकर कहीं योग और ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है।
1: जी,
0: यही भक्ति योग।
1: यानी अगर हम अपने कर्म पे ध्यान दें, जैसे गीता में कहा गया है कि कर्म कर और फल की इच्छा मत कर, कर्म करते जाएं और भक्ति भाव से अपने कर्म को प्रभु को समर्पित कर दें, तो ये जो समर्पण की जो भावना अगर हमारे अंदर रहेगी तो ये स्वयं ही हमें भक्ति मार्ग पे ले जाएगी।
0: जी।
1: और जो तनाव, डिप्रेशन, चिंता, एंजाइटी जो हम बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है हम स्वयं ही इससे बाहर निकल पाएंगे।
0: यस, मैं बहुत सुंदर कहा। इसमें छोटी सी बात मैं जोड़ूंगा
1: जी,
0: कि हमें किसी ना किसी को गुरु तो हम बना ही लेते हैं, या तो भगवत गीता को अपना गुरु बना ले या मन को गुरु बना ले। मन को बनाएंगे तो वो क्या करवा रहा है ये तो हमने देख लिया। एक बार भगवत गीता को गुरु बना के देखिए।
1: तो जो गुरु की जो एक कंसेप्ट हमारे धर्म में मौजूद है, हमारे पुराणों में मौजूद है, तो वो गुरु ही हमें जो है आगे लेके जाते हैं, हमारे सूत्रधार बनते हैं जीवन के।
0: यस, भगवत गीता 4th चैप्टर में भगवान इसको कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनाम् तत्वदर्शिना। जिसने तत्व को देखा है वो आपको तत्व के बारे में बता सकता है। आपने बस 3 चीजें करनी है, जाके समर्पित करना है, दूसरा प्रश्न पूछना है, तीसरा थोड़ी सेवा करनी है, निस्वार्थ भाव। और इसी की प्रैक्टिस हम यहाँ करते हैं।
1: बहुत सुंदर। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि जितना आनंद मुझे, जैसे आनंद की अनुभूति मुझे हुई है इस कार्यक्रम को आप सबके सामने प्रस्तुत करते हुए, आप सबके बीच लेके आते हुए, उतनी आनंद की अनुभूति आपको सुनने में भी ज़रूर प्राप्त हुई होगी। तो अभी है हमारे साथ में जीव गोपाल दास जी, जो कि अपने जीवन को समर्पित कर चुके हैं और गीता दर्शन के लिए और इस्कॉन के प्रचार प्रसार के लिए, भक्ति मार्ग के लिए, और विभिन्न क्षेत्रों में हमारे जैसे आपके जैसे लोगों की ज़िंदगी को बदलने के लिए। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने समय निकाला और हमें, हमारे छात्रों के साथ में, हमारी कम्युनिटी, हमारे समुदाय के साथ में सुनो शारदा 90.8 FM पे हमारे बीच में ये कुछ अपने विचार साझा किए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते रहेंगे दोबारा से। फिर से कोशिश करेंगे कि फिर से आपके विचारों को हम सुनो शारदा पे दोबारा से जो है प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद
0: इस प्लेटफॉर्म पर गीता के विचारों को व्यक्त करने का जो आपने मौका दिया। बहुत बहुत
1: धन्यवाद।
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

शुक्र करूं तेरी रहमतों का ऐ खुदा, मुझे मांगने का सलीका नहीं है पर तू देने की हर अदा जानता है। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर शारदा सवेरा।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: जिस प्रकार एक मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, उसी प्रकार व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के बिना अधूरा है, ये कहना है भगवान गौतम बुद्ध का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा, सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक,
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

हर कोई कहता है कि ईश्वर नजर नहीं आता, लेकिन सच तो यह है कि संकट के समय कोई साथ नहीं देता, तब किसी न किसी रूप में भगवान ही साथ देता है। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: हाय नमस्कार, मैं हूं आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।
2: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। हमें भगवद गीता एक बहुत सुंदर बात बताती है। वह हमें बताती है कि जिस प्रकार से एक गांव में बहुत सारे कुएं होते हैं, किसी कुएं में कपड़े धोते हैं, किसी में हम स्नान करते हैं, परंतु इन सारे कुओं का जो कार्य है एक नदी पूर्ण कर देती है। उसी प्रकार से अगर हम अपने जीवन में बहुत सारे लक्ष्यों को एक साथ लेकर चलेंगे तो हम भी इसी प्रकार से अलग अलग कुओं में जाना पड़ेगा, लेकिन अगर जीवन में एक लक्ष्य बनाकर उस पर पूरे फोकस से कार्य करें तो आप उसको बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए फोकस होना जीवन में बहुत आवश्यक है। हरे कृष्णा।

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM. ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश.
2: हाय, मैं हूं रणविजय. आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM.

0: You got to
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की में आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो एक गंभीर विषय है। जी हाँ, पेशाब, जिसे हम कहते हैं मूत्र। अगर इसमें खून आ रहा है तो आप एक परेशानी से जूझ रहे हैं। एक्सपर्ट क्या कहते हैं, क्या समस्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि पेशाब में खून आने की ज्यादातर वजह जैसे कुछ दवाएं, छोटी मोटी चोटें या गुर्दे की पथरी, ये सारी चीजें अस्थाई होती हैं जिनका लंबे समय तक प्रभाव नहीं पड़ता। ज्यादातर लोगों के लिए मूत्र पथ का संक्रमण इलाज योग्य होता है। अगर जल्दी पता लगा लिया जाए तो मूत्र पथ के कैंसर का भी अच्छा पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। मूत्र में रक्त दिखाई देने के अधिकांश मामले आपातकालीन स्थिति नहीं होते हैं। हालांकि यदि आप चक्कर आना, पेशाब करने में असमर्थता या अत्यधिक दर्द जैसे लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। लेकिन जिन लोगों के पेशाब में खून की अधिक मात्रा आ रही है, पेशाब करते समय अधिक दर्द हो रहा है, पेशाब करने में कठिनाई या अक्षमता महसूस हो रही है, तो उन्हें उसी समय डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है कि धैर्य रखना क्यों जरूरी है। अगर आप जिंदगी में धैर्य रखते हैं तो निश्चित तौर पर तमाम बीमारियों से आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे। एक्सपर्ट कहते हैं कि धैर्य मन का वो गुण है जिसके होने से मनुष्य विपत्ति के समय भी विचलित नहीं होता है। धैर्य कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति की सहन शक्ति की अवस्था है। ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के मन को क्रोध अथवा खीज जैसी अवगुणों के प्रभाव से बचाती है। धैर्य के तीन गुण क्या हैं? एक्सपर्ट कहते हैं कि आत्मनियंत्रण, स्थिति के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने और बिना किसी शिकायत के इसे सहन करने में सक्षम होना। विनम्रता, ये स्वीकार करना कि आप किसी और से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है और ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है कि आपको इंतजार न करना पड़े। और उदारता, दुनिया को देखकर मुस्कुराना तब भी जब ऐसा लगे ये आपके खिलाफ साजिश रच रही है। तो ये खास जानकारी आपको कैसे लगे बताइएगा जरूर। ऐसी खास अपडेट्स के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: Hi, this is Sharmili Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
2: नाम तो सुना ही होगा।
3: राम राम दोस्त, राम सत श्री अकाल। यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये आवाज आपने सुनी ही होगी। मेरा नाम है गगन। सुबह से लेकर शाम तक मैं रहता हूँ आपके साथ, लेकिन एक ऐसी शख्सियत से आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ जिसका नाम अक्सर आपने सुना है, जिसकी आवाज से आपका दिन बन जाता है या यूं कहें कि रातें बन जाती हैं। सो लिसनर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं आरजे साइमा, रेडियो मिर्ची की बड़ी फेमस आरजे, पुरानी जींस लेकर आती हैं और रेडियो शो में पुरानी हिंदी फिल्मों के गानों के साथ साथ दिलचस्प किस्से और शायरियां सुनाती हैं। जब इनसे मुलाकात हो तो मौके पर चौका मारना चाहिए और ऐसे मौके पर चौका मारा हमारी सहयोगी खुशबू ने। उनसे बात की एआई के विषय में। आइए, क्या बात हुई, सुनते हैं आरजे साइमा को खुशबू के साथ।
4: आज हमारे साथ खूबसूरत आवाज के साथ साथ एक ओपिनियन रखने वाली आरजे मौजूद है, आरजे साइमा, जिन्हें किसी पहचान की तो जरूरत नहीं है, लेकिन एआई के दौर में रेडियो किस तरह से बदल रहा है आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो मैम, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि बदल रहा है रेडियो एआई के बाद, कह रहे खत्म हो जाएगा, जॉब चली जाएगी, बहुत सारी सवाल हैं, आप इसे कैसे देखती हैं?
5: मैं इसे देखती हूँ कि रेडियो बदल रहा है, हर दिन बदलता है, हर वक्त बदलता है, हर मोमेंट बदलता है, तो रेडियो भी बदलेगा और उसके बदलने में कोई बुराई नहीं है, गम बेहतरी की तरफ बढ़े। इसका जो एक प्रॉमिस है, उसका जो एक वादा है, वो उससे कॉम्प्रोमाइज ना करे और उसमें हर वो नई चीज लाए जिससे जो सुनने वाला है वो मुतासर हो, वो उससे कनेक्ट करे। एआई एक नई टेक्नोलॉजी है जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये हमारे रेडियो एक्सपीरियंस को बेहतर कैसे करेगा, और मुझे यकीन है कि ये बेहतर करने के लिए ही आया है।
4: मैम, दौर बदला है, वक्त बदला है, हम बदलने के लिए और अडॉप्शन की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से आपकी आवाज को अगर कोई बदल कर कुछ और पेश कर दे तो ये कितना खौफनाक है और इसे कैसे देखते हैं?
5: हाँ, ये बहुत खौफनाक है और ये एआई का एक फ्लिप साइड है जहाँ पे हमें एथिकल लॉज की जरूरत है, हमें रेगुलेशन की जरूरत है, हमें बहुत सारे कानून की जरूरत है ताकि इसी का दुरुपयोग ना किया जा सके। कोई भी टेक्नोलॉजी दोनों चीज लेकर आती है, वो आपके लिए फायदेमंद भी होती है, वो आपके लिए नुकसानदेह भी बन सकती है। मेरी आवाज को इस्तेमाल करके कोई अगर नफरत की कोई बात कहे तो मुझे खुशी सिर्फ एक बात की होगी कि जो लोग मेरे बारे में जानते हैं उनको पता है कि ऐसी बात मैं कभी कर नहीं सकती और मैं यहाँ हूँ उस बात को झुटलाने के लिए। लेकिन ये कानून आना बहुत जरूरी है कि कोई भी मुझसे बिना पूछे मेरी आवाज नहीं बन सकता और नहीं इस्तेमाल कर सकता।
4: आज के दौर को आप उस आवाज में क्या कहना चाहेंगी जहां पर एक स्टूडेंट आपको सुनता है, आपको एज अ इंस्पिरेशन देखता है और रेडियो को, क्योंकि डिजिटल दौर में रेडियो को इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ी लाइन ब्लर हो रही है, तो मैं चाहूंगी कि आप उन स्टूडेंट से कुछ कहें जिनसे वो ब्लर लाइन के बीच अच्छे से कनेक्ट कर सके।
5: एक इंसान को, यू नो, व्हाट डू वी लव, जिंदगी के बारे में सबसे अच्छी चीज क्या है कि जिंदगी अनप्रिडिक्टेबल है, हमें नहीं पता कि अगले पल क्या होगा एंड इससे हम इंटरेस्टेड रहते हैं, दिलचस्पी बनी रहती। जो रेडियो मीडियम है ना, वो हमें बहुत आजाद करता है। एक तो वो दुनिया बनाने में जो हम बनाना चाहते हैं, उस चीज को देखने में और किस तरह से हमें देखना है, ये हमारे हमारे अंदर ये हमारा राइट होता है। मैंने एक बात कही, अगर मैं सामने नहीं हूं तो आपने मेरे एक्सप्रेशंस तो नहीं देखे, लेकिन वो बात अब आप कैसे इमेजिन कर रहे हैं वो आपकी हो गई। तो रेडियो देने वाला मीडियम है, मैंने आपसे कोई बात अगर कही तो वो बात अब आपकी है, आप उसको कैसे सोचते हैं वो लिबर्टी आपके पास है जो कि और मीडिया के पास नहीं है। वहां पे जो दिखता है वही है, आप बदल नहीं सकते।
4: बिल्कुल मैम, एक आखिरी सवाल आपसे है, एज अ रिसर्चर, कम्युनिटी रेडियो के अपने चैलेंजेस हैं, एज अ आरजे कैसे देखते हैं आप, क्योंकि बड़े चेहरे बड़े नाम कहानियां बदल जाती है लेकिन कम्युनिटी, छोटा सा प्रदेश, उसकी चुनौतियां और उसकी सस्टेनेबिलिटी बदल जाती है, तो क्या कहेंगे इस पे?
5: मुझे लगता है कम्युनिटी रेडियो रेडियो का असल फॉर्म ले, बिकॉज रेडियो इंपैक्ट का मीडियम होना चाहिए और कम्युनिटी रेडियो के पास वो आजादी है कि वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। और आज के दौर में हमें छोटे छोटे हिस्सों में अपनी आवाज को एक बेहतर अंजाम के लिए इस्तेमाल करना है। सो कम्युनिटी रेडियो आज जितना रेलेवेंट और आज जितना जरूरी है उतना कभी भी नहीं था।
3: भाई बिल्कुल सही कहा आरजे साइमा ने कि जिस तरीके से सामुदायिक रेडियो स्टेशन आज रेलेवेंट है इतना पहले कभी नहीं था। सामुदायिक रेडियो स्टेशन आपकी आवाज है, जन जन की आवाज है, और जन जन की आवाज को लाखों करोड़ों लोगों तक हम पहुंचा रहे होते हैं फ्रीक्वेंसी के माध्यम से, ऐप के माध्यम से। इसीलिए कहूंगा कि सुनो शारदा 90.8 एफएम के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। 01204060205 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा मेल भी कर सकते हैं 90.8fm@sharda.ac.in पर। और अगर आपको लगता है कि एक मुलाकात जरूरी है तो शारदा विश्वविद्यालय के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं इन्हीं नंबर पर कि ये चर्चा आपको कैसी लगी। आरजे साइमा के साथ जुड़ी रही हमारी खुशबू, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: Hi everyone, this is Dania Doshi and you're listening to Suno Sharda 90.

0: आइए समझते हैं महावारी के चक्र को। महावारी की शुरुआत गर्भाशय की परत के टूटने से शुरू होती है। इस दौरान हार्मोन के कम स्तर की वजह से महिला या लड़की अक्सर चिड़चिड़ा महसूस करती है। महावारी के दौरान अंडाशय पर तरल से भरे हुए फॉलिक्स आने लगते हैं। इनमें से प्रत्येक में एक अंडा होता है जो बाहर आने की प्रतीक्षा कर रहा होता है।
1: फॉलिकुलर चरण, इस चरण में गर्भाशय की परत फिर से बनने लगती है। एस्ट्रोजन का स्तर लगातार बढ़ता रहता है और फॉलिकल जिसमें अंडा रहता है और बड़ा हो जाता है। अंडे के छूटने से ठीक एक दिन पहले और अंडे के छूटने का दिन सबसे ज्यादा प्रजनन योग होते हैं। ये आमतौर पर माहवारी के 11वें से 14वें दिन के बीच में होता है, लेकिन ये बहुत अधिक इस बात पर भी निर्भर करता है कि महिला या लड़की का मासिक चक्र कितना लंबा है।
0: ओव्यूलेशन चरण, इस चरण में अंडा बाहर निकलता है। यदि महिला इस दिन या 3 दिन पहले यौन संबंध बनाती है तो गर्भवती होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। फॉलिकल का फटना गर्भाशय की परत को और भी मोटा बना देता है। अंडाशय से निकला हुआ अंडा फैलोपियन ट्यूब के जरिए अपनी यात्रा शुरू करता है और आगे जारी रखता है।
1: ल्यूटियल चरण, ल्यूटियल चरण के दौरान होने वाले हार्मोनल परिवर्तन अक्सर माहवारी के पहले महसूस किए जाने वाले सामान्य लक्षणों से संबंधित होते हैं, जैसे कि आमतौर पर माहवारी से पहले मूड में बदलाव, सिर दर्द, चेहरे पर मुहासे, पेट फूलना, स्तनों में भारीपन और दर्द आदि का अनुभव हो सकता है, जो कि सामान्य है। गर्भाशय में जमी हुई परत एक प्रकार का रसायन छोड़ती है जो कि अंडे के निषेचित होने पर उसे गर्भाशय की दीवार से चिपकने में मदद करती है, और यदि निषेचन नहीं हुआ है तो वही

0: रसायन उस परत को टूटने और बहकर बाहर निकलने में मदद करता है।
1: महामारी संबंधी अधिक जानकारी के लिए नजदीकी एएनएम या आशा से संपर्क करें।
0: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की में। आज हम बात करने वाले हैं कि विटामिन B12 की कमी से क्या क्या दिक्कतें परेशानियां हमारे सामने आ सकती हैं। बात करते हैं विटामिन B12 की कमी से शरीर और ब्रेन हो सकता है कमजोर। ये 5 फूड्स खाकर इस कमी को आप पूरा कर सकते हैं। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। जाहिर सी बात है कि इसके बारे में कुछ रोज पहले हमने बातें की थी, लेकिन अब हम इससे कुछ आगे बढ़ते हैं तो बात निकलकर ये सामने आती है कि विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए कुछ फूड्स बताए गए हैं, वो अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर इसका फायदा आपको आपकी सेहत में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और विस्तार से बात करते हैं। विटामिन B12 की कमी की समस्या काफी कॉमन है, हालांकि कई बार लोग इसे अधिक गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विटामिन B12 की कमी हो जाने के बाद मसल्स में कमजोरी और जोड़ों में दर्द जैसी परेशानियां हो सकती हैं? विटामिन B12 DNA बनाने का काम करता है, जो ये नर्वस सिस्टम को काम करने में भी सहायता करता है। हमारा शरीर विटामिन B12 का उत्पादन खुद नहीं कर सकता, इसीलिए इसकी कमी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। हम जानेंगे ऐसी फूड्स के बारे में जिनके सेवन से पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 पाया जा सकता है। बात करते हैं विटामिन बी की कमी क्यों होती है, ये भी जानना समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर प्रिया पालन के अनुसार उम्र बढ़ने के साथ लोगों के शरीर में विटामिन B12 की कमी होने की आशंका भी बढ़ जाती है। मसल्स में कमजोरी, हाथ पैर सुन्न हो जाना, एनीमिया और कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। विटामिन B12 की पर्याप्त मात्रा के लिए डॉक्टर पायल कुछ विशेष फूड्स के सेवन की सलाह देती है। चलिए जानते हैं, सालमन मछली की बात करते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड्स में विटामिन B12 पाया जाता है, इसके लिए आप सालमन और टूना मछली का सेवन कर सकते हैं। बात करते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों के विषय में। विटामिन B12 से भरपूर फूड्स में हरी पत्तेदार सब्जियां और कई फलों का नाम भी शामिल है। केला, पालक और चौलाई जैसी सब्जियों का सेवन करने से आपको विटामिन B12 प्राप्त हो सकता है। वहीं सीजनल फ्रूट्स का सेवन भी करने से विटामिन B12 मिल सकता है। लो फैट पनीर के विषय में जानते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दही, पनीर, चीज और दूध का सेवन करने से विटामिन B12 की अच्छी मात्रा प्राप्त हो सकती है। डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन उन लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण है जो नॉनवेज नहीं खाते। दूध उन शाकाहारी फूड्स में से एक है जो विटामिन B12 से समृद्ध होते हैं, साथ ही इससे प्रोटीन और कैल्शियम भी प्राप्त हो सकता है। बात करते हैं मशरूम की। कैल्शियम और विटामिन डी के अलावा विटामिन B12 की अच्छी मात्रा मशरूम्स में पाई जाती है। वहीं मशरूम में प्रोटीन और कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। आशा करता हूं ये जानकारी का आपने लाभ उठाया होगा। ऐसी खास जानकारी सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं। मैंने टीवी को बहुत करीब से देखा है और हराया भी है। सही सुना आपने, बड़े धैर्य की लड़ाई थी वो। पहले मैंने टीबी के लक्षण सही पहचाने, फिर डॉक्टर की सलाह लेकर टीबी का कोर्स पूरा किया और टीबी हार गया। इलाज के दौरान थोड़ा राहत महसूस करते ही कोर्स अधूरा ना छोड़ दीजिएगा, बस इसी गलती से ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो सकता है आपको, इसीलिए टीबी का कोर्स पूरा कीजिए, यही है इसका पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। मेरी तरह आप भी पूरा इलाज कीजिए और टीबी पे जीत पाइए। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
1: हाय नमस्कार, मैं हूं आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग, यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा, यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान, यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: नई दुल्हन तो बिल्कुल चांद जैसी है।
1: काकी, आप अपनी टीबी का इलाज तो करवा रही हैं ना?
0: हाँ बेटी, मैं टीबी की दवाइयाँ हर रोज खा रही हूँ। ये दवाई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त मिल रही है।
1: हाँ, अब तो आप और जल्दी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि अब सरकार टीबी के मरीजों को मुफ्त इलाज के साथ हर महीने 500 रुपए की मदद भी दे रही है, ताकि वो इलाज के दौरान पोषण से भरपूर भोजन ले सके, और ये मदद सीधे उनके बैंक खाते में आएगी।
0: दुल्हन सुंदर ही नहीं, समझदार भी है।
2: आइए मिलकर टीबी को हराएं, टीबी मुक्त भारत बनाएं।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: हाय, मैं उरण विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों 100 दिवसीय टीबी जागरूकता अभियान चल रहा है, तो इसी क्रम में सुनते हैं सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत एक विशेष कार्यक्रम जो आपको टीबी के प्रति जागरूक करेगा और आप इस बीमारी से बच पाएंगे और अपने परिवार को बचाएंगे, साथ ही साथ औरों को भी जागरूक करेंगे। तो आइए सुनते हैं ये विशेष कार्यक्रम जो आधारित है 100 दिवसीय टीबी जागरूकता अभियान पर।

0: नमस्कार, सुनो शारदा 90.8 FM से मैं शशि कपूर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, आपका अपना रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM और स्मार्ट मिलकर मुहिम चला रहे हैं सेहत सही लाभ कई, और इसी के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं टीबी के बारे में। और आज हम आए हैं शारदा हॉस्पिटल के डॉट सेंटर में, जहां पर हम बैठे हैं दीपक कौशिक जी के सामने। उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ सेवाएं वो शारदा हॉस्पिटल के डॉट सेंटर में प्रोवाइड करा रहे हैं। तो कौशिक जी, सबसे पहले आपका सुनो शारदा 90.8 FM पर स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। मैं सभी आपके श्रोतागण है सभी का धन्यवाद करता हूँ।
0: बिल्कुल, और सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि जो शारदा हॉस्पिटल का डॉट सेंटर है, यहाँ पर आप किस पद पर कार्यरत हैं और क्या क्या कार्य आप यहाँ पर देखते हैं और किस तरह से जो डॉट सेंटर है वो लोगों की सेवा कर रहा है।
1: सर, मेरा नाम दीपक कौशिक है और मैं बेसिकली यूपी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बिलोंग करता हूँ। और शारदा हम विजिट के लिए यहाँ आते हैं, डॉट सेंटर को रन कर रहे हैं क्योंकि अंडरटेकिंग गवर्नमेंट के यहाँ डॉट सेंटर चलता है। विगत 2011 से हम लोग यहाँ पे हैं, जो डॉट सेंटर को हम लोग चला रहे हैं। और इन 2011 से हमने कई हजार मरीज जो टीबी से ग्रसित थे उनको हमने ठीक किया है। और देखा जाए तो टीबी एक जो पहली सदी में एक महामारी के रूप में जानी जाती थी, लोग उसको लाइलाज बीमारी के रूप में बताते थे, लेकिन जैसे जैसे डॉट्स आया, पहले हमने RNTCP से स्टार्ट की, RNTCP के बाद में हमने इसको अब NTP में ला के आए, अब एलिमिनेट की तरफ हमने इसको प्रोग्राम को चलाया हुआ है। तो हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक लक्ष्य विजन रखा है कि हमें अपने देश से टीवी को जड़ से भगाना है, टीवी फ्री इंडिया करना है। तो इसी मुहिम में हम सभी लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रहे हैं
0: और इसी उद्देश्य को लेकर के टीवी कैंपेन भी चलाया जा रहा है। तो इस कैंपेन को सफल बनाने में आप और आपका जो स्टाफ है और आपका जो स्वास्थ्य विभाग है किस तरह से योगदान कर रहे हैं ताकि हम इस लक्ष्य को हासिल कर पाएं?
1: हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जो कि एक विश्व से टीवी को जड़ से समाप्त करने का एक लक्ष्य रखा था 2030, एलिमिनेट करना है, टीवी फ्री करना है इंडिया को, बट थोड़ा सा अभी ये महामारी एक कोविड के रूप में हमारे पास आई जिसने हमारे 3 साल इसमें हमारे खराब हो गए, लेकिन फिर भी हमने अब महामारी से अपने आप को उभरते हुए इस टीवी प्रोग्राम पे हमने अपना फोकस रखा हुआ है कि हम आज भी अपने जो माननीय मोदी जी का विजन है 2025 तक टीवी फ्री करने का, तो उसको हम सुचारू रूप से सभी लोग कंधे से कंधा मिलाकर कहीं ना कहीं हम इसको जड़ से समाप्त करेंगे भी। और रही बात हमारे योगदान की, तो देखिए सर, हम तो गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं जी, तो हमारा तो मेनली उद्देश्य ही है कि टीवी को जड़ से समाप्त करना। तो सभी हमारी पूरी टीम, आशा, आंगनबाड़ी और आपका जितने भी MOs हैं, CHOs हैं, सुपरवाइजर्स हैं और भी जो भी हेल्थ से हमारे रिलेटेड, चाहे वो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं, वो सभी लोग इस मुहिम में लगे हुए हैं कि कैसे ही हम इसको बीमारी को जल्द से जल्द अपने टीवी इंडिया से बाहर कर सके।
0: बिल्कुल सर, जैसा कि अभी आपने आशाओं की बात की, हमारी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ते हैं उनकी बात की, तो ये किस तरह से इस अभियान में अपना योगदान दे रही हैं?
1: सर, इसमें अभी हमको ना 100 दिवसीय टीवी सघन रोगी खोज अभियान हमने सरकार ने चलाया हुआ है। उस 100 दिवसीय में क्या है कि हम 1 जनवरी से हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया है अपने प्रदेश में और उसको हम 24 मार्च तक हम इसको चलाएंगे। तो इस 24 मार्च तक हमको वेनरेबल जो पॉपुलेशन है उसको स्क्रीनिंग करना है, क्योंकि जब हम स्क्रीन करेंगे तो उसमें हमें टीबी के पेशेंट मिलेंगे। तो हमारी जो आशाएं हैं, जो हमारी आंगनबाड़ी हैं, जो हमारे CHOs हैं, वो घर घर जा रहे हैं, पेशेंटों के उनके कॉन्टेक्ट से मिल रहे हैं, उनको स्क्रीनिंग कर रहे हैं। अगर उनमें कहीं ना कहीं ये 5 लक्षण आपको दिखाई देते हैं, 2 हफ्ते से लगातार खांसी किसी अगर हमें स्क्रीनिंग चिन्हित किए हुए व्यक्ति में दिखाई देते हैं, 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी हो, रात पर कमर पर पसीने का ज्यादा आना हो, वजन अचानक उसका गिर गया हो, वजन बहुत ज्यादा कम हो गया हो, और लो ग्रेड फीवर, जैसे जैसे दिन ढलता है वैसे उसको बुखार और अधिक होता चला जाता है, उसको हम लो ग्रेड फीवर कहते हैं। अगर ऐसे और किसी के बलगम में खून का आ रहा हो, किसी की बॉडी में कहीं कोई गांठ दिखाई दे रही है, तो ऐसे लोगों को हम चिन्हित करते हैं। और अभी 100 दिवसीय सघन उसमें क्या कह रहे हैं, वेनरेबल पॉपुलेशन में हमने 60 साल से ऊपर जितने भी व्यक्ति हैं उनको भी हमने क्या कह रहे हैं, वेनरेबल पॉपुलेशन में चिन्हित किया है। स्मोकिंग करने वाले, एल्कोहल कंज्यूम करने वाले, वो भी व्यक्ति हमारी सस्पेक्ट वाली श्रेणी में आते हैं। और ऐसा व्यक्ति जिसका BMI 18.5 से कम हो, उस व्यक्ति को भी हम क्या कह रहे हैं, इसमें वेनरेबल उसमें हम क्या चिन्हित करते हैं। कुछ आपका डायबिटीज से ग्रसित पेशेंट, क्योंकि जो डायबिटीज जो होती है वो भी कहीं ना कहीं एक जननी होती है हर बीमारी की, तो हमने उस डायबिटीज पेशेंट को भी हमने चिन्हित करा है अपनी इस स्क्रीनिंग में। तो ज्यादा से ज्यादा हम उन लोगों को चिन्हित कर रहे हैं। चिन्हित करने के बाद में हम उनका क्या कह रहे हैं, उचित माध्यम के द्वारा, प्लेटफॉर्म के द्वारा, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट सेक्टर से हो पीपीपी मॉडल पे, तो उनमें हम उनकी जांचें करवा रहे हैं स्क्रीनिंग करने के बाद। तो अगर पेशेंट पॉजिटिव आता है तो देन उसका हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं।
0: बिल्कुल सर, जैसा कि अभी आपने उनके लक्षणों के बारे में बताया, और जो हमारी आशाएं हैं या आपने आंगनवाड़ी जो हमारी कार्यकर्ती है उनका नाम लिया, और भी हमारे जो CHO हैं, ये तो अपनी भूमिका बखूबी निभाई रहे हैं, लेकिन हमारे जो आम इंसान है, कहते हैं ना कोई भी अभियान जब तक सफल नहीं होता जब तक हर इंसान उसमें अपना योगदान ना दे, तो हमारा जो आम इंसान है वो किस तरह से इस अभियान में अपना योगदान दे सकता है ताकि हम TB मुक्त भारत बना सके।
1: सर जैसे कि मैंने अभी आपको पूर्व में बताया कि 5-6 लक्षण मेन लक्षण होते हैं, 2 हफ्ते से लगातार ज्यादा खांसी, कोई ऐसा व्यक्ति जिसका बुखार ठीक नहीं हो रहा हो, ऐसा व्यक्ति जिसको क्या कह रहे हैं लगातार उसका वजन कम होता जा रहा हो, बलगम में खून आ रहा हो, या रात में कमर पर ज्यादा पसीने आ रहे हो, या किसी को गांठें दिखाई दे रही हो बॉडी पे, तो ऐसा व्यक्ति, आम लोग भी हम ऐसे व्यक्ति देख सकते हैं कि हमारे सराउंडिंग वातावरण में कहीं ऐसा कोई व्यक्ति तो नहीं है। अगर हम उनको लगता है कि ऐसा कोई व्यक्ति है कि पड़ोस में कोई खांस रहा है, 2 हफ्ते से ज्यादा खांस रहा है, तो हम उसको एक सलाह दे सकते हैं कि आप नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पे जाएं, जहां फ्री में आपकी जांचें होंगी। अगर उसमें टीबी आपको पॉजिटिव पाया जाता है तो आपको फ्री में ही उसका इलाज भी मिलेगा, और साथ में सरकार जो एक इलाज के साथ में निक्षय पोषण योजना के तहत उसको 3,000 रुपये, अभी पहले क्या था 500 रुपये पर मंथ था, लेकिन सरकार ने उसको भी बढ़ा दिया, उसको 1,000 रुपये पर मंथ कर दिया। तो जो ड्यूरिंग है आपका इलाज के दौरान 6 मंथ का इलाज होता है, तो उसमें उसको पेशेंट को 6,000 रुपये भी मिलते हैं।
0: तो सर ये तो निक्षय पोषण जो पोर्टल है उसके बारे में आप बात कर रहे हैं, जैसे किसी व्यक्ति को टीबी हो जाता है, टेस्ट के जरिए ये पुष्टि भी हो जाती है कि भाई आपको टीबी है, तो उस दौरान जरूरत पड़ती है उसको अच्छे पोषण की, तो क्या क्या उसको खाना चाहिए उसके बारे में भी आपसे ही जानना चाहिए।
1: जी देखिए, टीबी का जो पेशेंट होता है अल्टीमेटली ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं उसकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। जब इम्यूनिटी वीक हो जाती है तो कोई भी रोग उसको बड़ी जल्दी घेर लेता है। तो जो टीबी के पेशेंट हैं उनको ज्यादा से ज्यादा हाई प्रोटीन डाइट्स का लेना जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि सभी लोग मांसाहारी हैं तो मांस से ही आपको क्या कह रहे प्रोटीन मिलेगा। दाल है हमारी, अंकुरित करके दालें खाइए, चने खाइए, आप पनीर ले सकते हैं, और जो भी क्या कह रहे प्रोटीन जिसमें दूध आप ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं, तो जो भी प्रोटीन फुल क्या कह रहे हैं आपकी डाइट में उसको ज्यादा से ज्यादा शुमार करिए। तो जब आप प्रोटीन युक्त अगर डाइट लेंगे तो पेशेंट का इम्यून जो पावर है वो स्ट्रांग होता है। तो मेरा तो यही कहना है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन अपने उसमें आहार में वो सम्मिलित करें, जिससे कि इस बीमारी को जल्दी से वो भगा सके।
0: बहुत से टीबी के मरीज ऐसे हैं जो सक्षम हैं, जो आपने बताया कि प्रोटीन युक्त आहार उनको ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए, लेकिन हमारा जो ग्रेटर नोएडा है यहाँ पर प्रवासी मजदूर बहुत ज्यादा रहते हैं, घनी बस्तियां हैं, अब ऐसे में अगर उनको टीबी हो जाता है तो पोषण की बड़ी दिक्कत रहती है, कैसे एक तो मजदूरी मिली ना मिली, तो ऐसे में क्या उनके लिए कोई ऐसी कोई योजना है या कोई ऐसे लोग हैं इस योजना से जुड़े हुए जो उनकी मदद कर पाए?
1: देखिए, मलिन बस्तियां हमेशा हमारे प्रायोरिटी पे रही हैं और हम समय समय पर मलिन बस्तियों में जाके कैंप भी लगाते हैं, वहाँ स्क्रीनिंग करते हैं, स्क्रीनिंग करने के बाद उनकी निःशुल्क जाँचें करवाते हैं। जाँच करवाने के बाद अगर टीबी रोगी पाया जाता है पॉजिटिव, तो सरकार उनको निश्चय पोषण योजना, एक निश्चय पोषण योजना सरकार ने चला रखी है, उसके माध्यम से सरकार उनको 1,000 रुपये DBT के माध्यम से उनके डायरेक्ट बैंक में उनके खाते में वो 1,000 रुपये देती है, और वो जब तक इलाज उसका चलता है जब तक सरकार हर महीने प्रति उसमें क्या कह रहे उनको 1,000 रुपये देती है।
0: ये योजना इसके अंतर्गत जो निक्षय मित्र हैं वो भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, तो ऐसे अगर हमारे कोई सुनने वाले हैं वो भी इस अभियान में आगे आना चाहते हैं, सक्षम हैं लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं परोपकार की भावना है, दूसरों का भला चाहते हैं, तो किस तरह से इसमें अपना योगदान कर सकते?
1: सर जैसा कि आपने पहले भी कहा कि कोई भी योजनाएं, सरकारी योजनाएं जब तक फलीभूत नहीं हो सकती, जब तक सुचारू रूप से नहीं चल सकती, जब तक उसमें आम लोगों की भागीदारी ना हो, तो ये निक्षय मित्र जो कॉन्सेप्ट है ये सरकार क्या कह रहे हैं आम लोगों की भागीदारी को ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करने के लिए बनाया गया है। तो इसमें क्या होता है, निक्षय मित्र कोई भी व्यक्ति हो सकता है, चाहे वो हमारे क्या कह रहे जनप्रतिनिधि हो, हमारे कोई अफसर हो, क्योंकि हमारे तो राज्यपाल जी ने इसका शुभारंभ किया था निक्षय मित्र बनाने का। तो मैं तो यही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना में जुड़े। निक्षय मित्र वो व्यक्ति हो सकता है जो भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए टीबी रोगी को उस इलाज के दौरान उसकी हालचाल पूछे, उसको खान पीन की भी अगर वो व्यवस्था कर सकता है, एक निक्षय पोषण पोटली बोलते हैं उसको हम, तो वो निक्षय पोषण पोटली भी उसके इलाज के ड्यूरिंग उसको देता रहे। और सबसे बड़ी बात है उसका मोरल, जो उसको बार बार पूछ के उसका जो मोरल को हाई करता रहे कि भाई अगर बीमारी है आपको, ये बीमारी ठीक हो जाएगी। और बीच बीच में उसको बताता भी रहे, क्योंकि ये भी एक निक्षय मित्र की मैं समझता हूँ कि एक उसका दायित्व है ये टीबी की बीमारी स्प्रेड ना हो, तो टीबी के मरीजों को ये भी समझाए वो कि भाई आप हमेशा छींकते वक्त खांसते वक्त अपने मुंह पे कपड़ा रखें, इधर उधर ना थूके, पान बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू शराब ना खाए पिए, जिससे कि ये बीमारी अपना विकराल रूप ना ले सके।
0: कहने का मतलब यह है कि जो निक्षय मित्र हैं वो टीबी पेशेंट का हालचाल पूछे, उनका मनोबल भी उड़ाते रहे, साथ ही साथ उनको कुछ सावधानियां भी बताते रहे ताकि वो इस बीमारी से जल्दी छुटकारा पा जाए। अब बात आती है कि कोई भी व्यक्ति हमारी आपकी बात सुनकर के रेडियो के माध्यम से निक्षय मित्र बनना चाहता है तो कहां पर जाके संपर्क करें?
1: सर, निक्षय मित्र कोई भी व्यक्ति अगर बनना चाहता है तो वो जितने भी हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, जहां भी डॉट सेंटर्स हैं, वो वहां जाके सिर्फ मिल सकता है हमसे। और एक आधार कार्ड और एक मोबाइल नंबर अपना उसको देना है, हम उसका आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से उसको क्या कहते अपने निक्षय उस पर रजिस्टर्ड कर देंगे और वो निक्षय मित्र के रूप में हमारा वर्किंग कर सकते।
0: बिल्कुल, तो हमारे जो भी सुनने वाले हैं अगर अपना योगदान इस अभियान में देना चाहते हैं तो जैसा सर ने बताया है उसके जरिए आप निक्षय मित्र बन के किसी का भला कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। और सर अब आगे बढ़ते हैं, जैसे कि बहुत सारे आपके पास पेशेंट भी आते हैं और वो उन्होंने टीबी को हराया भी होगा, तो हम कुछ ऐसे जो टीबी चैंपियन है उनके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे कि वो पहले बहुत परेशान थे लेकिन अब वो सामान्य जीवन जी रहे हैं आराम से, तो उनके बारे में कुछ बताइए।
1: जी बिल्कुल सर, क्योंकि बातें करें तो मैं 2004 से इस जॉब में हूँ और 2004 से ही मैं क्या कह रहा टीबी के पेशेंट देख रहा हूँ और हजारों पेशेंटों को मैंने अपने सामने ठीक होते हुए देखा है। और एक टीबी का रोगी जब आता है तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं उसकी ऐसी स्थिति होती है कि वो खटिया पे ही लेटा हुआ आता है और जब वो अपना डॉट्स का पूरा इलाज लेता है तो वो एक स्वस्थ जीवन जीता है और कुछ सावधानियों के साथ में। जैसे अभी अगर मैं एक उदाहरण दूं कि अगर कपड़ा है कोई आपकी शर्ट है और शर्ट पर एक ही शर्ट है, आप पे कोई ऑप्शन है ही नहीं दूसरा, तो करते क्या है कि शर्ट अगर कहीं फट गई तो उसमें क्या करेंगे, सिलाई लगाएंगे। अगर हम उसी सिलाई को सहेज के रखेंगे यानी कि उसको हम अपनी शर्ट का ध्यान रखेंगे तो वो जीवन पर्यंत आपकी शर्ट चलती रहेगी। तो ऐसी हमारे टीबी का मरीज है। टीबी का मरीज अगर अपने एक बार ग्रसित होने के बाद पूरा इलाज लेता है और अपने वो शरीर के लिए कुछ सावधानियां बरतता है तो वो अपना एक सुरक्षित और सामान्य जीवन जी सकता है। और ऐसे बहुत हजारों मरीज हैं जो आज सामान्य जीवन जी रहे हैं, पहले टीबी से ग्रसित थे, आज वो सामान्य जीवन जीते हैं और वही लोग दूसरे लोगों की मदद कर रहे हैं, वही लोग आगे बढ़ के, क्योंकि जिन्होंने इस दर्द को झेला है वो जब ये दवाइयां खा के वो स्वस्थ हुए हैं तो उन्होंने जो सामने वाले व्यक्तियों को देखते हैं तो उनको समझाते हैं वो लोग। तो यही लोग हमारे जो टीबी चैंपियन है सर, तो ये लोग कहीं ना कहीं हमारी जो सरकार की योजना है टीबी फ्री इंडिया करने की, उसमें ये भी लोग हमारे बहुत बड़े मदद।
0: बिल्कुल सर, तो बहुत सारी बातें आज रेडियो के माध्यम से आपने हमें बताई, हमारे श्रोता भी सुन रहे होंगे और जो टीबी पेशेंट है हो सकता है वो भी सुन रहे होंगे, बिल्कुल जागरूक रहेंगे। चलते चलते हम आपसे जानना चाहेंगे, कहना चाहेंगे कि अभी जो टीबी कैंपेन चल रहा है इसको सफल बनाने के लिए क्या कहना चाहेंगे?
1: सर मैं यही कहना चाहूंगा, एक तो टीवी के जो भी मैंने अभी पूर्व में लक्षण बताए थे उन लक्षणों को सभी लोग जो हमारे श्रोता हैं वो सभी लोग इसको जान लें। और जानने के बाद अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति अपने सराउंडिंग में दिखाई देता है, रिश्तेदारी में हो, आपके ऑफिस में हो, आपके क्या कहते हैं पड़ोस में हो या कहीं पे भी ऐसा कोई व्यक्ति है तो आप उसे चिन्हित करें। और चिन्हित करने के बाद में उस व्यक्ति को ये समझाएं कि भैया ये लाइलाज बीमारी नहीं है, आप इसके लिए पहले सरकारी जो केंद्र है डॉट सेंटर है उस पर आप जाइए, जाने के बाद वहाँ निशुल्क जांचें होती हैं। अगर आपको ये पॉजिटिव आ भी जाता है, टीबी रोग आ भी जाता है, तो आप घबराइए मत, ये बिल्कुल ठीक हो जाता है और इसमें पूर्णतः क्या कह रहे हैं आपको इलाज लेना है जितनी भी अवधि का वो डॉट सेंटर में बताते हैं। तो दो तरीके की हमारे यहाँ टीबी अभी मुख्यतः चल रही है, एक सिंपल टीबी और एक एमडीआर टीबी। उसमें क्या होता है मल्टी ड्रग्स रेजिस्टेंस हो जाता है, तो कुछ ड्रग्स हैं जिससे वो रेजिस्टेंस हो जाता है तो उसका भी कारण ये कहीं ना कहीं वो डिफॉल्टर पेशेंट रहा होता है या कहीं ना कहीं वो ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आता है जो पहले से वो एमडीआर का पेशेंट था। तो यही है कि सभी लोग जागरूक बने, इन चीजों को देखें और हमेशा छींकते वक्त खांसते वक्त अगर आपको लगता है कि पॉजिटिव पेशेंट है तो उसको भी जागरूक करें कि भैया समाज में आपको तो इलाज लेके ठीक होना ही है लेकिन आपको दूसरे को भी बचाना है, दूसरे व्यक्ति को आपसे ग्रसित नहीं होना, ये चीजें आप थोड़ा सा वो जागरूकता सभी लोग फैलाएं। और जैसे कि आपने बताया ही है पूर्व में कि भाई आम लोगों की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा होगी तभी हम इस रोग को हरा पाएंगे। ऐसा कोई सरकारी तंत्र नहीं है कि वो स्वयं इसको हरा देगा। जब तक आम मानस घर घर में प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा, अपने दायित्व को नहीं समझेगा, जब तक हम टीबी को नहीं हरा पाएंगे, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें भागीदारी करें।
0: बिल्कुल सर, जो भी इस अभियान से जुड़े हैं वो अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं और जो सूचना लोगों तक पहुंच रही है वो भी अपनी भागीदारी निभाएं तो हम टीबी मुक्त भारत बना सकते हैं। एक और चलते चलते बात सवाल आपसे हम पूछना चाहेंगे, जैसे कि हमारा जो शारदा विश्वविद्यालय का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन है सुनो शारदा 90.8 FM, ये भी जन जागरूकता फैला रहा है टीबी के लिए, तो इसके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अभियान में जो अब तक भूमिका रही है शारदा रेडियो स्टेशन की?
1: सर, शारदा रेडियो स्टेशन की जो भूमिका रही है वो काबिले तारीफ है। मैं दिल से क्या सभी आपके श्रोताओं और आप चैनल के सभी लोगों को दिल से धन्यवाद देता हूं कि ऐसे ही जागरूकता प्रोग्राम आप चलाते रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी इस जागरूकता से बहुत से लोगों का जीवन बच सकता है। तो ऐसे ही मैं आपको धन्यवाद पुनः देते हुए कि आप ऐसे जागरूकता अभियान टीवी है या और भी डिसीज को लेकर जो भी जागरूकता अभियान है वो हमेशा चलाते रहे।
0: बिल्कुल सर, आगे भी ऐसे ही अभियान चलते रहेंगे। आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। मैंने टीबी को बहुत करीब से देखा है और हराया भी है। सही सुना आपने, बड़े धैर्य की लड़ाई थी वो। पहले मैंने टीबी के लक्षण सही पहचाने, फिर डॉक्टर की सलाह लेकर टीबी का कोर्स पूरा किया और टीबी हार गया। इलाज के दौरान थोड़ा राहत महसूस करते ही कोर्स अधूरा ना छोड़ दीजिएगा, बस इसी गलती से ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो सकता है आपको, इसीलिए टीबी का कोर्स पूरा कीजिए, यही है इसका पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। मेरी तरह आप भी पूरा इलाज कीजिए और टीबी पे जीत पाइए। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: और भाई शुक्ला, तेरी टीबी के क्या हाल हैं?
4: अरे भाई, 2-4 हफ्ते का इलाज करवाया और टीबी की हो गई अजामत।
5: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
4: ये क्या, आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
5: कमाल करते हैं आप, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
4: है?
5: याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए, फुल कोर्स। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं। मैंने टीबी को बहुत करीब से देखा है और हराया भी है। सही सुना आपने, बड़े धैर्य की लड़ाई थी वो। पहले मैंने टीबी के लक्षण सही पहचाने, फिर डॉक्टर की सलाह लेकर टीबी का कोर्स पूरा किया और टीबी हार गया। इलाज के दौरान थोड़ा राहत महसूस करते ही कोर्स अधूरा ना छोड़ दीजिएगा, बस इसी गलती से ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो सकता है आपको, इसीलिए टीबी का कोर्स पूरा कीजिए, यही है इसका पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। मेरी तरह आप भी पूरा इलाज कीजिए और टीबी पे जीत पाइए। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
0: नमस्कार, सुनो शारदा 90.8 FM से मैं आपके साथ शशि कपूर। जैसा कि आप जानते हैं, सुनो शारदा 90.8 FM और स्मार्ट मिलकर मुहिम चला रहे हैं सेहत सही लाभ कही, जिसका फोकस टीवी पर है। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी कहना है कि हमें देश को टीवी मुक्त करना है, तो इसी क्रम में हम आपको जागरूक कर रहे हैं। बार बार रेडियो के जरिए आप तक बहुत सारी जानकारियां पहुंचती हैं और आगे भी हम पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि टीबी मुक्त भारत बनाना हम सबका कर्तव्य है। और इसी क्रम में आज हम आए हैं शारदा हॉस्पिटल और शारदा हॉस्पिटल के रेस्पिरेटरी मेडिसिन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर एंड HOD डॉक्टर देवेंद्र कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे टीबी के बारे में। तो सर, सबसे पहले आपका सुनो शारदा 90.8 FM पर बहुत बहुत स्वागत है।
6: थैंक यू इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मेरे विचार श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
0: बिल्कुल सर, और हम आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि जो टीबी है आखिर ये है क्या, क्यों लोग इससे इतना डरते हैं?
6: देखिए, इस सवाल का जवाब देना या समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अब यूं समझिए कि ये टीबी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जैसे अभी कोविड आया कुछ दिन में जो इवॉल्व हुआ, ये हजारों साल से चली आ रही है। पहले इसको एक आनुवंशिक बीमारी माना जाता था। रीजन ये था कि एक परिवार में अगर किसी एक सदस्य को हो गई तो ये हम जानते हैं कि एक से दूसरे में फैलने में देर नहीं लगती, और इलाज थानी इलाज की क्वेश्चन तो बाद में उठता है। पहले किसी को यही नहीं पता था कि क्या प्रॉब्लम है ना, तो लोग बोलते थे कि एक ही परिवार के सभी लोगों में तो ये आनुवंशिक बीमारी है। लेकिन बाद में एक जो लैंडमार्क आया ट्यूबरक्लोसिस में, दैट वाज 1882, जब एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट कोच, तब उन्होंने ये डिक्लेयर किया एक कॉन्फ्रेंस में कि नहीं, ये एक आनुवंशिक बीमारी नहीं है, ये तो एक इन्फेक्शियस प्रॉब्लम है। इन्फेक्शियस प्रॉब्लम जो एक कीटाणु से होती है, जिसको बैक्टीरिया बोलते हैं, उनके बैक्टीरिया से होने वाली प्रॉब्लम है। तो बेसिकली ये चीज़ तो अब क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये तो अभी सभी जानते हैं कि बैक्टीरिया से होने वाली प्रॉब्लम है, और उस बैक्टीरिया का नाम हम बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। यूजुअली सबसे ज़्यादा फेफड़ों को प्रभावित करती है, और एक इंसान जिसके फेफड़े पहले से प्रभावित हैं, जब वो खांसता है, जब वो छींकता है, तो बहुत सारे बैक्टीरिया वो हवा में रिलीज करते हैं, और उसी हवा को जब कोई दूसरा एक इंसान एक सांस के रूप में अंदर लेता है तो उसमें भी चांसेस होते हैं इन्फेक्शन के। मतलब इन्फेक्शन के चांसेस, ये हम ऐसे बोलते हैं कि टीबी होने के चांसेस, कि जितने लोगों के शरीर में बैक्टीरिया जाता है उन सभी को टीबी नहीं होती। जिन लोगों की इम्यूनिटी अच्छी होती है तो वो इम्यूनिटी उन बैक्टीरियाज को मार गिराती है, और जिनकी इम्यूनिटी कुछ कम होती है, या बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर में जाते हैं, या बैक्टीरिया बहुत एक टर्म यूज़ करते हैं कि विरुलेंट होते हैं, तो उनको उस पर्टिकुलर इंसान की जो इम्यूनिटी है वो किल नहीं कर पाती, और उनमें वो टीबी का फिर प्रोग्रेशन हो जाता है, खांसी होना, बुखार होना, फिर ये सब कुछ चल जाता है, और ये प्रोसेस चलता रहता है। जब वो एक इंसान कहीं दूसरी जगह घूमने फिरने के लिए जाता है, किसी मीटिंग के अंदर में खांसता छींकता, वो दूसरे लोगों को फैलाता है, और ये चेन चलती रहती है।
0: बिल्कुल सर, तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाती है कि जो टीबी है वो आनुवांशिक बीमारी बिल्कुल भी नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलती है, ये एक जैसा कि सर ने बताया बैक्टीरिया से ये बीमारी फैलती है। अब बात आती है सर यहाँ पर लक्षणों के बारे में, तो किस तरह से कोई आम आदमी पहचान ले कि हो सकता है इनको टीबी हो गई है, तो ऐसे कौन कौन से वो सामान्य लक्षण होते हैं?
6: देखिए, वैसे जब बोलते हैं मेडिकल साइंस में 2+2=4 रेयरली होते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि बहुत सारे लक्षण हैं जो जाने जाते हैं कि टीबी के मरीज में होते हैं। जैसे अभी हम बोलते हैं कि अगर खांसी है किसी इंसान को और उसको 2 हफ्ते ऐसे ज़्यादा हो गए हैं, तो हम ये बोलते हैं कि एक सस्पिशन होना चाहिए कि ये टीबी हो सकती है। टीबी के मरीज को बुखार आता है, जिसको हम बोलते हैं लो ग्रेड इवनिंग राइज फीवर, मतलब बुखार बहुत तेज़ नहीं होता लेकिन शाम के टाइम यूजुअली बढ़ने लगता है, और जो पेशेंट है वो बोलते हैं कि जी हरारत सी होने लगती है रात में। कुछ मरीज ये भी शिकायत करते हैं कि भी रात में उनको पसीने आते हैं, मरीज को भूख लगनी कम हो जाती है जिसकी वजह से उसका वजन कम होना, कभी कभी खांसी के साथ में ब्लड आना। तो ये जो मैंने सिम्टम्स आपको बताए, ये जो लक्षण बताए, ये यूजुअली तब होते हैं जब फेफड़े वाली टीबी होती है, और मोस्ट ऑफ केसेस में फेफड़े वाली टीबी, और उसी के बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे। अब प्रॉब्लम ये होती है कि कोई सुन के ये बोले, कई बार मरीज ये आते हैं कि जी मुझे तो खांसी हुई नहीं, मुझे तो हल्का बुखार आया था, डॉक्टर अब आप बोल रहे हो कि भाई ये टीबी कैसे हो सकती है, मुझे तो खांसी कभी हुई नहीं है ना, दुनिया बोलती है कि खांसी होती है ना। तो ये कुछ ये बोलते हैं जी मुझे तो बुखार आया ही नहीं है ना। तो मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं जितने सिम्टम्स जितने लक्षण का मैंने नाम लिया वो सभी एक साथ हों या सभी मरीजों में, किसी मरीज में ये सब एक साथ देखने को मिल जाते हैं। कभी कभी मरीज आते हैं कि जी वजन कम हो रहा है, सिर्फ वजन कम हो रहा है, खांसी भी नहीं है, बुखार भी नहीं है ना, लेकिन पता चला या फिर उसने बताया हमें कि पिछले 2 महीने में मेरा 5, 6 या 7 किलो वजन कम हो गया। तो कई बार सिर्फ वजन ही कम होना एक लक्षण होता है, कभी कुछ भी नहीं होता, पेशेंट आता है जी वो खांसा मैंने और खांसी में ब्लड आ गया मेरे। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे लक्षण सभी मरीजों में देखने को मिले, कभी कभी एक ही लक्षण होता है, लेकिन अगर नंबर ऑफ लक्षण बढ़ रहे हैं तो ज्यादा चांसेस हैं कि भी टीबी।
0: तो सर ये तो बात रही टीबी के लक्षणों की, अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से वो प्रारंभिक जांच होती हैं, टेस्ट होते हैं जिसके जरिए टीबी की पुष्टि की जाती है।
6: एक तो जो डॉट सेंटर है वो गवर्नमेंट के द्वारा हर 5 किलोमीटर के रेडियस में बनाए गए हैं।

0: वहाँ पे भी होते हैं, एक्सरे से छाती का एक्सरे और बलगम की जांच टीबी के कीटाणुओं के लिए।
1: तो डॉक्टर साहब, ये तो बात रही टीबी की जांच की, अब बात कर लेते हैं अगर किसी भी व्यक्ति की टीबी की जांच में पुष्टि हो जाती है टीबी की, कि आपको टीबी का संक्रमण हो चुका है, तो इसका इलाज क्या है?
0: देखो, इलाज है सबसे पहली बात तो, कुछ लोग का तो क्वेश्चन यही होता है कि डॉक्टर साहब ये ठीक हो जाएगी, इसका इलाज है भी कि नहीं। हाँ, मैं बोलता हूँ इलाज है। सबसे अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट द्वारा हर एक इंसान के लिए फ्री में जो मेडिसिन है वो उपलब्ध है। जैसे मैंने बोला कि हर 5 किलोमीटर के रेडियस में गवर्नमेंट ने एक डॉट सेंटर डेवलप करने की कोशिश की है और हैं भी वो। यहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट में भी डॉट सेंटर है जहाँ से हम टीबी की दवाई मुफ्त में देते हैं। और यहाँ तो खैर हमारा वो एक मेडिकल कॉलेज का डॉट सेंटर है, तो हम यहाँ तो हम बिगड़ी हुई टीबी की दवाई भी, जो बहुत कॉस्टली होती है, और उनमें एक मेडिसिन तो आपको जान के ताजुब होगा कि एक टैबलेट की कीमत 10,000 रुपये होती है ना, और वो भी फ्री में दी जाती है हमारे डॉट सेंटर के माध्यम से। और ये है कि ऑलमोस्ट 97-98% रिकवर्ड ईजिली हो जाते हैं। 1-2% केसेस में कुछ थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन आते हैं, या फिर कई बार मेडिसिन बंद करनी पड़ जाती है कि भाई उसका लीवर ख़राब होने लगा या पेशेंट को उल्टी आने लगी, वो चीज़ भी मैनेजेबल है। मैं आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगा श्रोताओं को कि बहुत सारे मरीज हमारे पास ऐसे आते हैं कि मैंने दवाइयाँ स्टार्ट तो की थी लेकिन मुझे उल्टी आने लगी, जी मुझे सूट नहीं की, मैंने तो छोड़ दी वो। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि छोड़ना समस्या का समाधान नहीं है, आप डॉक्टर के पास आइए, जो साइड इफेक्ट है उनको कंट्रोल करने के लिए भी मेडिसिन होती है, तो अल्टीमेटली वो भी कंट्रोल हो जाएगी।
1: बिल्कुल, आपके कहने का मतलब यह है कि अगर जो पेशेंट हैं, मरीज हैं, अगर वो नियमित रूप से दवा खाते हैं तो इस बीमारी से बच सकते हैं। आगे हम बात करना चाहेंगे, जो भी पेशेंट हैं उनको टीबी हो गया है, उनका इलाज चल रहा है, दवाई वो खा रहे हैं, तो उस दौरान उनका जो पोषण है, उनकी जो दिनचर्या है वो कैसी होनी चाहिए?
0: अभी जब मैंने आपसे जिक्र किया कि सैकड़ों हजारों साल पुरानी टीबी है, उस समय हमें ये भी नहीं पता था कि ये एक इन्फेक्शियस प्रॉब्लम है, उस समय इसका ट्रीटमेंट भी कुछ नहीं था, तो उस समय हुआ करते थे सैनिटोरियम। सैनिटोरियम का मतलब होता है कि शहर के बाहर, आबादी के बाहर एक खुली हवा में एक शेल्टर बना दिए जाते थे जहाँ सभी टीबी के पेशेंट रहते थे। और कॉन्सेप्ट ये होता था कि अच्छी धूप, अच्छी हवा और अच्छा खाना पीना किसी हद तक उनको ठीक करेगा। तो वही है कि एक अच्छा एनवायरनमेंट जहाँ पर पोल्यूशन कम हो। यहाँ पे हम जो पौष्टिक खाने की बात करते हैं, एक तो हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं और एक इसमें करते हैं स्पेशली हाई प्रोटीन डाइट। तो पहले मैं हाई प्रोटीन डाइट के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको खाने से प्रोटीन हमें मिलता है। एक तो जितने भी दालें होती हैं, सख्त टाइप की दालें, चाहे वो मसूर की दाल, उड़द की दाल, काली दाल, पीली दाल, उन सबको खाने से हमें प्रोटीन मिलता है, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट। और अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो अंडा, मांस, मछली, ये सब ये प्रोटीन के पार्ट हैं। बैलेंस डाइट की बात करते हैं, इसका मतलब हम ये चाहते हैं कि उसके अंदर में कुछ विटामिन्स भी हों, तो हम यहाँ एडवाइस करते हैं कि कुछ फ्रूट्स लें। और ये पोषक तत्वों को बढ़ाने के लिए या इसकी डाइट को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट भी रुपये हर महीने उन मरीजों को देती है जिनको टीबी पाई जाती है।
1: तो सब चलते चलते हमारे और श्रोताओं से क्या कुछ कहना चाहेंगे आखिर में?
0: मैं देखिए ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई कैंसर का पेशेंट एक्सपायर होने जा रहा, मैं ज़्यादा चिंतित नहीं हूँ, लेकिन टीबी के पेशेंट को मेरी भी जिम्मेदारी बनती है, उनके परिवार की भी जिम्मेदारी बनती है और हम सब समाज की जिम्मेदारी बनती है कि उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट तक ले जाएं, उसको पकड़ के उसका इलाज कराएं और ट्रीटमेंट कराएं। क्योंकि अगर उसको आज ठीक नहीं कराया तो वो आपको भी फैलाएगा, कुछ दिनों बाद आप भी उसी प्रॉब्लम से ग्रसित होंगे।
1: डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अभी आप सुन रहे थे 100 दिवसीय टीबी जागरूकता अभियान पर विशेष कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, और अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। अगले एपिसोड में फिर से आपसे करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश.

0: नमस्ते दोस्तों, आज सुबह जब मैंने गर्मा गर्म मेथी के पराठे खाए तो मैंने सोचा घर के खाने की बात तो कुछ और ही है। स्वाद और सेहत दोनों का मजा। चलो अब मिलते हैं अपनी प्यारी मीना से, जो कि मुरली, राजू और लल्ला के साथ पकड़न पकड़ाई का खेल खेल रही है।
1: मुरली, मुझे पकड़ो।
2: मीना, तुम कितना तेज दौड़ती हो।
3: तेज दौड़ती हो, सबको पीछे छोड़ती हो।
4: मुरली, मुरली बेटा, तुमने आज आंगन के पेड़ से अमरूद तोड़े थे क्या?
1: नहीं तो माँ, क्यों?
4: कोई हमारे अमरूद चुरा रहा है मुरली, देखो तो ये पेड़।
2: अरे हाँ माँ, अब क्या करें मीना?
1: हम सब इस पेड़ के आसपास छुप जाते हैं। हाँ मुरली, तुम इस पेड़ पर चढ़ जाओ, मैं वहाँ छत पर, और लल्ला राजू तुम दोनों पास वाले आम के पेड़ पर, ये ठीक रहेगा, ऊपर से सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा और जो भी अमरूद चुराता है वो जरूर पकड़ा जाएगा।
0: अमरूद चोर को पकड़ने के लिए सब अपनी अपनी जगह छुप गए, लेकिन मुरली।
1: मुरली, पेड़ पर चढ़ना तो बहुत आसान होता है, लेकिन तुम तो बिल्कुल थक गए।
2: थका थोड़ी हूँ राजू, बस ऐसे ही जरा।
0: मुरली, मीना, राजू और लल्ला चौकन्ने होकर नीचे देख रहे थे। अचानक एक लड़के ने फल तोड़ने के लिए अमरूद के पेड़ की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। मुरली पेड़ से उतरकर उस लड़के के पीछे भागा, लेकिन थोड़ी सी दूर भागने से ही मुरली थक गया। वो लड़का मुरली से काफी आगे निकल गया और मुरली हाँफता हुआ वापस लौट आया।
1: मुरली, तुम थोड़ा और तेज भागते तो उसे जरूर पकड़ लेते।
2: राजू, मैं तेज भागता हूँ तो मेरे पैरों में दर्द होने लगता है।
4: कोई बात नहीं बेटा, हमने उस लड़के का चेहरा ठीक से देख लिया है, अगली बार कहीं मिला तो हम उसे पकड़ लेंगे। अब तुम मुंह हाथ धो लो, मैंने गर्मा गर्म पालक के पराठे बनाए हैं।
2: माँ, मुझे पराठे नहीं खाने, मुझे पालक अच्छा नहीं लगता, और वैसे भी अब मैं बहुत थक गया हूँ। मीना, राजू, लल्ला, कल स्कूल में मिलते हैं।
0: और अगले दिन मीना की क्लास में।
5: देखा बच्चों, 17 का पहाड़ा कितना आसान है। मुरली, अब तुम एक सवाल का जवाब दो।
2: जी बहन जी।
5: अगर एक डिब्बे में 17 कंचे हैं, तो ऐसे 9 डिब्बों में कितने कंचे होंगे?
2: एक डिब्बा 17 कंचे, मतलब 9 डिब्बों में। बहन जी, मुझे इसका जवाब नहीं आता।
6: 17 निम्मे 153, हाँ 153 कंचे।
5: शाबाश कृष्णा। देखा मुरली, अगर तुमने क्लास में पूरा ध्यान दिया होता तो जवाब तुम भी दे सकते थे।
2: जी बहन जी।
0: और स्कूल की छुट्टी के बाद।
1: मुरली, वो देखो, वही लड़का जो अमरूद चुरा रहा था।
2: अरे हाँ मीना, ये तो वही लड़का है, चलो उसे पकड़ते हैं।
0: चोर मीना और मुरली को अपनी तरफ आते देखकर भागने लगा। मीना बहुत तेज भागी, लेकिन तब तक चोर बस पर चढ़ गया।
2: मीना, क्या हुआ? वो लड़का कहाँ गया?
1: वो मेरे पहुँचने से पहले ही बस में चढ़ गया मुरली, लेकिन तुम इतना हाफ क्यों रहे हो?
2: मीना, ना मैं पढ़ाई में ध्यान लगा पाता हूँ, और खेलने कूदने और भागने से भी जल्दी थक जाता हूँ।
1: एक बात कहूँ मुरली, मैंने कई बार देखा है, ना तुम हरी सब्जियाँ खाते हो, ना ही अंडे, और
2: वो मीना, मैं अब चलता हूँ, पिताजी को घुटनों में बहुत दर्द है, डॉक्टर बाबू को भी आज ही उनकी जांच के लिए आना था।
1: ठीक है मुरली, कल मिलते हैं।
0: और जब मुरली घर पहुँचा।
4: मुरली बेटा, डॉक्टर बाबू का कहना है कि अब तुम्हारे पिताजी का घुटना पहले से काफी बेहतर है, तुम मुँह हाथ धोकर खाना खा लो। मैंने आज पालक की सब्जी बनाई है।
2: पालक? नहीं माँ, अभी भूख नहीं है, बहुत थक गया हूँ मैं।
7: क्या हुआ मुरली?
4: डॉक्टर बाबू, ये जरा सा भी भागता है तो थक जाता है, और बहन जी कहती हैं कि क्लास में भी ध्यान नहीं लगा पाता, समझ नहीं आता क्यों।
7: मुरली, जरा अपने नाखून दिखाओ। तुम्हारी आँखें भी कुछ फीकी सी लग रही हैं, तुम अपने खाने पीने का ध्यान तो रखते हो ना?
2: जी वो मैं
4: बताती हूँ डॉक्टर बाबू, ये अपने खाने पीने का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता। जब देखो कचौड़ी, लड्डू, समोसे, बस ऐसी ही चीजें खाने की जिद करता रहता है।
7: मुरली, तुम्हें जो खाना पसंद है वो स्वादिष्ट तो होता है पर तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं, क्योंकि इनमें आयरन नहीं होता। खाने में आयरन का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो शरीर में ताकत कैसे आएगी?
1: आयरन? आयरन से क्या होता है डॉक्टर बाबू?
7: मुरली, आयरन से ही शरीर में खून बनता है और ताकत मिलती है, और तो और दिमाग भी तेज चलता है। अभी तो तुम्हारी बढ़ने की उम्र है, इसीलिए खूब सारी हरी सब्जियां, अंडे वगैरह खाया करो, इनमें आयरन होता है।
1: डॉक्टर बाबू, अगर मैं ये सब खाऊं तो क्या मैं तेज भाग सकूंगा?
7: बिल्कुल, ना तुम ऐसे थकोगे और क्लास में भी पूरा ध्यान लगाकर हर सवाल का सही जवाब दे पाओगे।
4: मुरली, पालक की सब्जी के साथ मैंने अंडे की भुर्जी भी बनाई है, खाओगे ना?
1: ढेर सारी खाऊंगा माँ।
7: शाबाश, और ये लो
1: दवाई।
7: दवाई नहीं, ये है आयरन की गोलियाँ। रोज आयरन की एक गोली खाने से धीरे धीरे तुम्हारी कमजोरी भी दूर हो जाएगी।
0: उस दिन से मुरली ने रोज हरी सब्जियाँ, अंडे, आयरन से भरपूर चीजें खाना शुरू कर दिया। 3 महीने बाद एक दिन मुरली की माँ ने उस अमरूद चोर को फिर से देखा।
2: चोर, चोर, अमरूद चोर!
1: तुम चिंता मत करो माँ, मैं अभी उसे पकड़ता हूँ।
0: और इस बार मुरली ने उस अमरूद चोर को भाग कर झट से पकड़ लिया।
1: तो तुम ही हमारे पेड़ से अमरूद चुरा कर खाते हो?
6: मुझे माफ कर दो, अब मैं तुम्हारे अमरूद कभी नहीं चुराऊंगा।
1: चुराने की जरूरत भी नहीं, अब से जब भी अमरूद खाना हो बस बता देना, मैं भी तुम्हारे साथ खाऊंगा। अमरूद में आयरन जो होता है।
0: तो देखा दोस्तों, आयरन से भरा खाना अगर रोजाना खाते रहो तो ताकत भी मिलेगी और दिमाग भी तेज रहेगा। तेज दिमाग और चुस्त शरीर, यही है आयरन की शक्ति। अब देखते हैं मीना और मिट्ठू क्या कर रहे हैं।
8: इससे मिलती ताकत है चलता तेज दिमाग,
3: आयरन की शक्ति मिलते ही कमजोरी जाए भाग।
0: इस कविता का तो मजा ही कुछ और था। अब एक बढ़िया सा गाना भी हो जाए।

0: इस मजेदार गाने के बाद अब चलते हैं मीना की क्लास में, जहां बहन जी एक और मजेदार खेल खिलाने वाली है। चलो
1: बच्चों, आज हम खेलेंगे बीच में छुपकर कौन बैठा है। आज के खेल में मैं चार पक्षियों के नाम बताऊंगी और इन्हीं चार पक्षियों में से तुम्हें एक छुपे हुए पक्षी को पहचानना है जो बाकी तीनों से अलग है। तो तैयार?
2: जी बहन जी।
1: तो सुनो उन पक्षियों के नाम, चील, हंस, शुतुरमुर्ग और कोयल।
3: बहन जी, छुपा हुआ पक्षी है कोयल।
1: वो क्यों दीपू?
3: जो कि बहन जी, कोयल ही एक ऐसा पक्षी है जो गा सकता है कू कू कू।
1: दीपू, कोयल की आवाज मीठी तो होती है पर हर चिड़िया की अपनी आवाज होती है।
4: बहन जी, फिर तो वो छुपा हुआ पक्षी चील ही होगा, क्योंकि चील ही खाने के लिए शिकार करती है।
1: सुमी, चील की नज़र बहुत तेज होती है और वो अपने शिकार को बहुत दूर से पहचान लेती है। पर कुछ हंस भी पानी में तैरते हुए मछलियों का शिकार करते हैं।
4: बहन जी, मैं समझ गई, छुपा हुआ पक्षी है शुतुरमुर्ग।
1: शाबाश मीना। पर शुतुरमुर्ग बाकी तीन पक्षियों से अलग क्यों है?
4: बहन जी, शुतुरमुर्ग ही इन चारों में से एक ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता।
1: शाबाश मीना, बिल्कुल ठीक पहचाना।
5: बहन जी, शुतुरमुर्ग अपने पैरों पर चलते हैं, कभी बहुत तेज तो कभी बिल्कुल धीरे धीरे।
1: ठीक कहा मीना और कृष्णा। तो बच्चों, आया ना मजा?
2: बहुत।

0: एनीमिया मुक्त भारत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सही पोषण देश रोशन, नहीं रहे कहीं कुपोषण।
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: मेरा नाम गोलू है, मुन्नी का बड़ा भाई। एक दिन स्कूल से आया तो देखा मुन्नी रो रही थी, सोचा प्यास लगी होगी। मैं भाग के दादी के पास गया, बोला मुन्नी को पानी पिला दो ना। दादी ने एकदम मना कर दिया, बोली 6 महीने तक मुन्नी सिर्फ मम्मी का दूध पिएगी, और कुछ खिलाया पिलाया तो 10 सो सकते हैं। अगली बार मुन्नी रोई ना, मैंने उसके कान पे जाके कह दिया 6 महीने तक सिर्फ मम्मी का दूध पीना है।
4: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।
6: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है, और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
7: The world is here.

0: जंगल है, आधी रात है।
1: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.

किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। लेकर हाजिर हूं आपका मनपसंद कार्यक्रम खेत खलियान, और वो भी लोक संगीत के साथ। किसान मित्रों, आपके कल्याण के लिए, आपके आर्थिक स्तर को ऊपर उठाने के लिए भारत सरकार अनेक कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, जिनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। और हमारे बहुत से किसान बहन भाई इस योजना का लाभ उठा रहे होंगे, और बहुत से किसान भाई ऐसे भी होंगे जो अभी तक इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे होंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे इसी बात की कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि क्या है और इसका लाभ आप कैसे ले सकते हैं। जी हाँ किसान मित्रों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत भारत सरकार छोटे और सीमांत किसान भाइयों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत 6,000 रुपए हर साल प्रत्येक पात्र किसान भाई को 3 किश्तों में दिए जाते हैं, और ये सहायता राशि सीधे किसान बहन भाइयों के बैंक खाते में जमा हो जाती है, जिसमें हर 4 महीने बाद किसान भाइयों को 2,000 रुपए की सहायता दी जाती है। हमारे किसान भाइयों के लिए ये योजना बहुत लाभकारी साबित हो रही है। बुआई से ठीक पहले नकदी संकट से जूझने वाले किसान भाइयों को इस योजना के पैसों से खाद, बीज और अन्य साधन जुटाने में सहायता मिल जाती है। अब बात आती है सबसे महत्वपूर्ण कि इस योजना का लाभ कैसे हमारे किसान भाई ले सकते हैं। तो इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले हमारे जो किसान भाई हैं, जो भी योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो वो खुद भी, आजकल तो स्मार्टफोन का जमाना है, तो अपने फोन के जरिए आप जाइएगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर, जो कि है pmkisan.gov.in। यहां पर जाकर के आप अपने आप को पंजीकृत कर सकते हैं, या फिर आप जन सुविधा केंद्र में जाकर के पंजीकरण करवा सकते हैं। इसके बाद आधार कार्ड, जोत का ब्यौरा, यानी कि जो आपकी खतौनी है जिस पर आपका नाम लिखा होता है कि आपके नाम कितनी जमीन है, वो दस्तावेज, और साथ में आपके बैंक खाते की पासबुक, तभी आपका पंजीकरण होता है। और इसके बाद आपके पंजीकरण का ब्यौरा राज्य सरकार से केंद्र सरकार के पास पहुंच जाता है। लेकिन किसान मित्रों, एक विशेष बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, आपका आधार कार्ड, आपकी खतौनी और आपकी बैंक की पासबुक, इन तीनों दस्तावेजों में आपका नाम एक समान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आधार कार्ड में आपका नाम कुछ है और जो जमीन की खतौनी है उसमें नाम कुछ है, या बैंक की जो पासबुक है उसमें नाम कुछ है। अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर आपका पंजीकरण नहीं हो पाएगा और ना ही आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले पाएंगे। तो आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि तीनों दस्तावेजों में आपका नाम एक समान होना चाहिए, तभी आपका पंजीकरण होगा और तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो किसान बहन भाइयों, बहुत ही अच्छी ये योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना का लाभ लेने के लिए आप अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि केंद्र, या फिर अपने नजदीकी जन सुविधा केंद्र में जाके आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की, और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक देशभक्ति रागनी, कलाकार हैं ऋषिपाल खदाना और उनके साथी।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे ऋषिपाल खदाना और उनके साथियों से ये देशभक्ति रागनी। किसान बहन भाइयों, जब आप खेती करते हैं तो उसमें लागत के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, चाहे आप बीज की बात करें, खाद की बात करें, पानी की बात करें, कृषि यंत्रों की बात करें, दवाइयों की बात करें, सबके लिए पैसों की आवश्यकता होती है। अगर आपके पास ज्यादा जमीन है तो ज्यादा पैसे की आवश्यकता होगी, क्योंकि ज्यादा लाग लगेगी। अब वो पैसे की व्यवस्था कहाँ से की जाए? कई बार ऐसा होता है, कहीं अन्य जगह से हम पैसा ले लेते हैं तो उस पर बहुत सारा ब्याज लगता है, जो कि उसकी भरपाई करना संभव नहीं है। ऐसे में हमारे किसान भाई परेशान हो जाते हैं कि आखिर अब खेती करें तो कैसे करें। तो इसका सीधा समाधान है, सरकार ने एक आपके लिए बहुत ही अच्छी योजना चला रखी है, जिसका नाम है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। केसीसी के नाम से ज्यादातर हमारे किसान बहन भाई इसको जानते हैं, परिचित हैं। तो जिन किसान बहन भाइयों के पास अभी तक किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है तो वो बनवा सकते हैं। और बड़ा ही आसान तरीका है बनवाने के लिए कि आपके नाम जो जमीन है, आप उसके कागज ले जाइए, अपना आधार कार्ड ले जाइए, और भी कुछ जरूरी चीजें होंगी वो आप अपने नजदीकी बैंक में जाकर के पता कर लीजिए कि हमको केसीसी बनवाना है तो किन किन दस्तावेजों की और आवश्यकता होगी। वहां पर आप सीधे मैनेजर साहब से मिलेंगे, वो आपको बताएंगे कि आपका जो केसीसी है वो कैसे बन सकता है। तो इस तरह से आप अपना किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं और फिर आपको खेती करने में धन की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। और एक और महत्वपूर्ण आपको बात बता देते हैं कि जो किसान क्रेडिट कार्ड है, इस पर बहुत ही कम ब्याज लगता है, और जितना पैसा आप निकालते हैं उसी पर ब्याज आपका लगता है। अगर बैंक के साथ आपका व्यवहार ठीक रहता है, यानी कि आप पैसा समय से लेते हैं, समय पर जमा करते हैं, तो आपकी जो लिमिट है ना, वो बढ़ा दी जाती है। तो किसान मित्रों, अभी तक अगर आप इस योजना का लाभ नहीं उठा रहे हैं तो जरूर लीजिएगा। आप अपने नजदीकी बैंक में जा सकते हैं और वहां पर केसीसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही किसान क्रेडिट कार्ड योजना की, और आइए अब आपको एक और देशभक्ति रागनी सुनवाते हैं। कलाकार हैं ज्ञानेंद्र सरधाना।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे ज्ञानेंद्र सरधाना से ये देशभक्ति रागनी। किसान मित्रों, कई बार अचानक होने वाली भारी बारिश, सूखा, तूफान या यूं कहें किसी अन्य तरह की प्राकृतिक आपदा से फसलों के खराब होने का खतरा बना ही रहता है और इसका पूरा नुकसान किसान भाइयों को उठाना पड़ता है। इन्हीं अनिश्चितताओं के कारण होने वाले वित्तीय नुकसानों से किसान भाइयों को बचाने के लिए भारत सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चला रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बहुत कम पैसे देकर आप अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। बीमा कवरेज के तहत अगर बीमित फसल नष्ट हो जाती है तो इसकी पूरी भरपाई का जिम्मा बीमा कंपनी का होता है। इस बीमा के तहत खाद्यान्न फसलें जैसे अनाज, बाजरा, दालें, इसके अलावा तिलहन और वार्षिक बागवानी फसलों को कवर किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आवेदन करने के लिए हमारे किसान भाई अपने नजदीकी बैंक में जाकर के अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारे किसान भाइयों के पास पहले से ही किसी तरह का लोन या क्रेडिट कार्ड है तो वे उस बैंक से ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा करवा सकते हैं। किसान मित्रों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्लेम लेने के लिए आपको सबसे पहले 72 घंटे के भीतर कृषि विभाग को फसल खराब होने की जानकारी देनी होती है। इसके बाद आवेदन करना होता है। फॉर्म में फसल खराब होने का कारण, कौन सी फसल बोई गई थी, कितने क्षेत्र में फसल बर्बाद हुई है, इन सब बातों का ब्यौरा देना होता है। साथ ही जमीन से संबंधित जानकारी भी देनी होती है। इसके अलावा बीमा पॉलिसी की फोटोकॉपी की जरूरत होती है। आवेदन करने के कुछ दिनों के बाद ही बीमा कंपनी के प्रतिनिधि और कृषि विभाग के कर्मचारी खेत का निरीक्षण करते हैं और नुकसान का आकलन करते हैं, और जब सब कुछ ठीक पाया जाता है तो किसान के बैंक खाते में बीमा का पूरा क्लेम डाल दिया जाता है। तो इस तरह से किसान बहन भाइयों, आप भी किसी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, और आइए अब कार्यक्रम के आखिर

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे सुनील चौहान से ये देशभक्ति रागनी, और इसी रागनी के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान मित्रों को नमस्कार।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो शारदा।
2: सुनो शारदा 90.8 FM और स्मार्ट खड़े हैं रणभूमि में लेकर जागरूकता की तीर कमान जो ग्रेटर नोएडा से मिटा देंगे टीबी का नामोनिशान। टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है। प्रत्येक टीबी के मरीज को उपचार के दौरान सरकार द्वारा 1,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाते हैं, जिसके लिए मरीज का एक बैंक अकाउंट नंबर और आधार कार्ड होना जरूरी है। स्वास्थ्य सही लाभ कही, टीबी हारेगा देश जीतेगा।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम अपने बच्चों की निगरानी कर सकते हैं, किस तरीके से बच्चों को हम संस्कार दे सकते हैं और किस तरीके से वो अगर गलत दिशा में जा रहे हैं तो हम उनको कैसे रोक सकें। जी हाँ, कुछ ऐसी बातें कहीं ना कहीं सुनने को समझने को मिल जाती है, लेकिन कुछ चुनिंदा बातों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा आगे चलकर आपका नाम रोशन करेगा, देश का भविष्य वो तय करेगा। जी हाँ, बात करते हैं आपका बेटा या बेटी को अगर कुछ ऐसे सबक सिखाएंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा एक संस्कारी बेटा या बेटी बनकर आगे बढ़ता रहेगा। जरूरी है कि उनकी गलतियों पर हमें पर्दा नहीं डालना है, जरूरी है कि उनकी गलतियों को सुधार में लाकर आगे बढ़ते हुए चले जाना है। बात करते हैं कुछ ऐसे ही विषय के विषय में। बच्चे बड़े होकर क्या बनेंगे इसका पता किसी को नहीं, लेकिन वो अच्छे इंसान बनेंगे या नहीं ये आप पर निर्भर करता है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होंगे। बच्चे भी वही आम की ही तरह होते हैं जिसको आपको बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। अगर आप अपने बच्चों को अच्छी आदतें नहीं सिखाएंगे तो आपके लिए बच्चों के बेहतर भविष्य को तय करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि शुरू से ही बच्चों को अच्छी आदतें सिखाई जाएं। हालांकि मौजूदा वक्त में हम बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज कर उन पर हंसते हैं जो उन्हें आगे चलकर बिगाड़ने का काम करती हैं। आइए आपको बताते हैं कि बच्चों को सिखाई जाने वाली 5 ऐसी अच्छी आदतों के बारे में जो उन्हें अच्छा इंसान बनने में मदद करेंगी। बात करते हैं सबसे पहले ईमानदारी के विषय में। ईमानदारी एक ऐसा विषय है कि अगर आपके पास ये है तो निश्चित तौर पर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता और इसकी जो खुशबू है वो चारों दिशाओं में फैलती है। जी हाँ, बच्चों को शुरू से ही ईमानदारी के रास्ते पर चलना सिखाना होगा और इससे आपको 2 फायदे होंगे। पहला तो ये कि बच्चा सच बोलने में कभी आपसे कतराएगा नहीं और दूसरा उसे अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ईमानदारी बच्चों में मासूमियत बरकरार रखने का काम करती है। आप बच्चों को झूठ बोलने के परिणामों के बारे में बताएं और उन्हें गलती स्वीकार करना सिखाएं। अच्छा स्वभाव यानी कि गुड मैनर्स टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को जल्द से जल्द अच्छा स्वभाव अपनाना सिखाना चाहिए। अच्छा स्वभाव आपके बच्चे का सोशल IQ तो बढ़ाता ही है, साथ ही उसे बेहतर तरीके से निखार कर सामने आने में भी मदद करता है। अच्छा स्वभाव उसे उसके जीवन में अच्छा इंसान बनने में भी मदद करता है। बात करते हैं हेल्दी फूड्स के विषय में। हेल्दी फूड्स का चुनाव करना ये भी एक बड़ा सब्जेक्ट है, यानी हेल्दी फूड्स सिलेक्शन टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को हमेशा हेल्दी फूड्स का विकल्प चुनना सिखाना चाहिए। जब बच्चों को हेल्दी फूड्स के बारे में पता होगा तो अपने जीवन में हेल्दी रहना वो सीख पाएंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल भी फॉलो करेंगे। हेल्दी फूड्स बच्चों के स्वास्थ्य को हेल्दी रखने की एक गारंटी है जिसे हर माता पिता को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। बात करते हैं सम्मान की। सम्मान हर कोई चाहता है, लेकिन अगर आप किसी को सम्मान देते हैं तो निश्चित तौर पर ये आपके सम्मान की बात है, यानी कि रेस्पेक्ट टू टीच टू किड्स। छोटे बड़ों का सम्मान करना हर किसी को आना चाहिए। ये एक ऐसा भाव है जो हर बच्चे में होना चाहिए, फिर चाहे वो बड़े हों या छोटे, सभी का आदर बहुत जरूरी है। एक अच्छा इंसान बनने के लिए बच्चों को शुरू से ही आदर सम्मान करने का भाव सिखाना बहुत जरूरी है। बात करते हैं टाइम की, यानी कि टाइम मैनेजमेंट की। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है। बच्चों को ये पता होना चाहिए कि उन्हें अपना समय कब कहां खर्च करना है, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता और उस समय को बर्बाद करना आपके लिए और भी ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ।
2: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना, दुर्घटना, घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं, और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
3: प्रेमी सज्जन साहबानो, अस्पताल में लड़की स्वस्थ होती चली गई, लेकिन जिन लोगों ने पैसे के बल से अपने केस को बरी करा लिया, आज उन जालिम दुष्टों का आप हाल सुनेंगे, हैरान रह जाएंगे।

सब जानते हैं बुरे कर्म का बुरा नतीजा होता है और अच्छे कर्म की नैया पार होती है। भले ही अदालत में इंसाफ नहीं हो पाया, दोस्तों जिसका इस दुनिया में कोई नहीं साथी होता है उसका तो परमपिता परमात्मा ही हिमाती होता है। अदालत में सजा नहीं मिली।

लड़की थी उर्मिला की ननद, उसको इसी तरह से जलाया गया ससुराल में जैसे उर्मिला को जलाया गया था। मेहरबानों, पति के शरीर में कोल हो जाते हैं, सासू मौत के घाट उतर जाते।

0: जय हिंद, जय भारत।
1: हाय, मैं उरण विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

दहेज प्रथा या हत्या। हमारा सामाजिक परिवेश कुछ इस प्रकार बन चुका है कि यहाँ व्यक्ति की प्रतिष्ठा उसके आर्थिक हालातों पर ही निर्भर करती है। जिसके पास जितना धन होता है उसे समाज में उतना ही महत्व और सम्मान दिया जाता है। ऐसे परिदृश्य में लोगों का लालची होना और दहेज की आशा रखना एक स्वाभाविक परिणाम है। आए दिन हमें दहेज हत्याओं या फिर घरेलू हिंसा से जुड़े समाचारों से दो चार होना पड़ता है। ये मनुष्य के लालच और उसकी आर्थिक आकांक्षाओं से ही जुड़ी है। इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि जिसे जितना ज्यादा दहेज मिलता है उसे समाज में उतनी ही सम्माननीय नजरों से देखा जाता है। दहेज कम लाने पर शादी के पश्चात बहुओं को मारा पीटा जाता है, यहाँ तक कि उन्हें जला दिया जाता है, उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जाता है। नमस्कार, मैं हूँ गगन और आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। साथियों, हिंसा को नो के अंतर्गत पहले भी हम कई सारे कार्यक्रम लेकर आ चुके हैं और अब प्रस्तुत है इस श्रृंखला की 8वीं कड़ी और आज का विषय है दहेज प्रथा या हत्या। इस विषय के अंतर्गत हम इस कार्यक्रम में ये भी शामिल करेंगे दहेज प्रथा के दुष्परिणाम, दहेज प्रथा की शुरुआत कहाँ से हुई, दहेज प्रथा के जिम्मेदार कौन है, दहेज निषेध अधिनियम से कितने लाभ हुए, दहेज एक्ट क्या है वगैरह वगैरह। तो आइए सबसे पहले हमारी सहयोगी किरण पांचाल से एक कहानी सुनते हैं। दहेज एक सामाजिक दिखावा, लीजिए प्रस्तुत है ये कहानी।

0: ये कहानी है मास्टर जी और मुंशी जी के अपने बच्चों की शादी में सामाजिक ढकोसले की। कहते हैं ना कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। मास्टर जी की बेटी का रिश्ता मुंशी जी के बेटे से हुआ। उसके बाद मास्टर जी को ढेरों तैयारियां करनी थी, 4 लाख तो मांगे के और बाकी के पैसे शादी के खर्च के। जोड़ा गया तो 8 से 10 लाख का खर्च तो यूं ही बैठ गया। मुंशी का लड़का दीपक MSc पास, नौकरी के लिए मुंशी बिल्कुल निश्चिंत थे। कहीं ना कहीं तो जुगाड़ लग ही जाएगा, शादी कर देनी चाहिए। वहीं मास्टर जी की लड़की नीतू, वह भी MA, पहले दर्जे से पास। मास्टर जी भी उसकी शादी जल्दी कर देना चाहते थे। बिचौलिए से पोस्ट ग्रेजुएट लड़के का भाव पता किया तो पता चला कि वैसे तो रेट 5 से 6 लाख का चल रहा है, पर बेकार बैठे पोस्ट ग्रेजुएट का रेट 3 से 4 लाख में निपट जाता है। बिचौलिए ने सौदा 3.5 लाख में तय कर दिया। उधर मास्टर जी भी अपनी बेटी नीतू की शादी में जोर शोर से जुड़ गए। मास्टराइन कहती कि नाई को निमंत्रण भिजवाने का शगुन 25,000 भी न दिया तो समाज में हमारी नाक कट जाएगी। आखिर मिश्रा जी की पुत्री की शादी है, भोज में 25 से 30 प्रकार के भोजन न हुए तो मेहमानों के सामने शर्मिंदगी ना होगी। सजावट दरवाजे से लेकर बिल्लू किराना दुकान तक आखिर होनी ही चाहिए। एक लौती पुत्री का विवाह है, देखने वाले भी तो कहेंगे कि वो देखो मास्टर जी की पुत्री की शादी है। और न जाने कितने सामाजिक ढकोसले से लेस थी मास्टराइन। लेकिन मास्टर जी और नीतू की सोच बिल्कुल अलग थी, वो दहेज के खिलाफ थे। बात तय हुए अभी 1 माह भी नहीं हुआ था कि सरकारी पत्र आया कि दीपक को डिप्टी कलेक्टर के पद पे चुन लिया गया है। बस फिर क्या था, मुंशी और मुंशियाइन की हीकड़ी 7वें आसमान पर पहुंच जाती है। मुंशी सरकारी तंत्र को कोसते हुए उन्हें ढेरों गालियां दे देते हैं, नीच कमीने निकम्मे, ये सरकारी अधिकारी किसी काम के नहीं। मुंशियाइन पहले तो सोचती है, फिर कहती है कि अरे भाई, लड़के की इतनी अच्छी नौकरी लगी है और आप नाराज क्यों होते हैं। वहीं मुंशी जी कहते हैं कि अरे सरकार एकदम निकम्मी है, मैं तो कहता हूँ कि इस देश में क्रांति होकर रहेगी। यही पत्र कुछ दिन पहले नहीं भेज सकते थे, डिप्टी कलेक्टर का 40 से 50 लाख तो यूं ही मिल जाता है। मुंशियाइन भी सुनकर सोच में पड़ जाती है और झिल्ला कर कहती है, तुम्हारी भी ना अकल मारी गई थी, मैं ना कहती थी कि महीने भर रुक जाओ, लेकिन नहीं, तुम तो तुम हो, ना मानो किसी की, हुलहुलाकर रिश्ता कर ही दिया। मैं तो कहती हूँ कि मास्टर जी को पत्र लिखिए, वे समझदार इंसान हैं, और फिर लड़का अब डिप्टी कलेक्टर लग गया है, थोड़ा सोचिए। मुंशियाइन के इस बात को सुनते ही लगे हाथ मुंशी जी ने पत्र लिख ही दिया। पत्र में कुछ यूं लिखा था, प्रिय मास्टर जी, यहाँ सब कुशल मंगल है, आशा करता हूँ कि आप सब भी कुशल मंगल होंगे। आपको प्रसन्नता होगी कि बेटे दीपक का चयन डिप्टी कलेक्टर के लिए हो गया है। विवाह के मंगल अवसर पर ये तो बहुत ही मंगल हुआ, इसमें आपकी पुत्री के भाग्य का भी पूरा योगदान है। अब आगे आप स्वयं समझदार हैं, समझदारी पर ही ये जमीन टिकी हुई है। इंसान का क्या है, जीता मरता रहता है, पैसा तो हाथ का मैल होता है, लेकिन मनुष्य की प्रतिष्ठा भी तो बड़ी चीज होती है। मैं तो कहता हूँ कि हमें अपने अपने कर्तव्य निभाने चाहिए, सदियों से चली आ रही रीत को छोड़ना नहीं चाहिए, और फिर हमें तो कुछ चाहिए नहीं, आप जितना भी देंगे अपनी लड़की को ही तो देंगे, आगे आप खुद समझ रहे हैं ना। आशा करता हूँ कि मेरे कम लिखने को ज्यादा समझेंगे, आपके उत्तर का बेसब्री से इंतजार है। मास्टर जी के परिवार ने पत्र पढ़ा, विचार किया और फिर जवाब तैयार किया। जवाब पत्र के रूप में मुंशी जी के घर पहुंच गया। मुंशी जी ने बड़ी उत्सुकता से पत्र खोला और पढ़ना शुरू किया। पत्र में लिखा था, प्रिय मुंशी जी, आपका पत्र मिला, मैं खुद आपको लिखने वाला था। दीपक की सफलता पर हम सब बेहद खुश हैं। आयुष्मान अब डिप्टी कलेक्टर हो गया है। दीपक एक चरित्रवान मेहनती और सुयोग्य लड़का है, वो अवश्य तरक्की करेगा। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि नीतू का चयन IAS के लिए हो गया है। आयुष्मती की इच्छा है कि अपने नीचे काम कर रहे कर्मचारी से वो विवाह नहीं कर सकती। आयुष्मती की ये भी इच्छा है कि शादी साधारण तरीके से हो। मुझे ये संबंध तोड़कर अपार हर्ष हो रहा है। आशा करता हूँ कि मेरे कम लिखने को ज्यादा समझेंगे। आपके उत्तर का बेसब्री से इंतजार बिल्कुल भी नहीं है। दोबारा लिखने का कष्ट न कीजिएगा। धन्यवाद।
1: कहानी के बाद एक बार फिर से स्वागत है। श्रोताओं, कहानी से हमें ये सीख मिली कि हमारे समाज में ज्यादातर लोग दहेज प्रथा को बढ़ावा देते हैं। ये विडंबना है हमारे पढ़े लिखे समाज की। साथ में हमने ये भी जाना कि बेटी को पढ़ा लिखा कर उस काबिल बना दिया जाए कि वो अपना उचित और सम्मान पूर्वक निर्णय ले सके, तो शायद दहेज जैसी कुरीतियों से निपटा जा सकता। फिलहाल बारी है दहेज प्रथा की कुरीतियों से जुड़े मुद्दों पर विशेषज्ञ से बात करने की। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और विशेषज्ञ से बात करते हैं। एक्सपर्ट से बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी साकिब शेख।
2: नमस्कार, मैं हूं साकिब शेख और आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM। श्रोताओ, आज हम फिर से लेकर हाजिर हैं आपके लिए वो खास कार्यक्रम जिसका हमेशा आपको होता है इंतजार। तो आइए, अब बारी है आपको एक्सपर्ट से मिलवाने की और एक्सपर्ट के जरिए से हम बातचीत इसी मुद्दे पे कर रहे हैं जिसे अभी थोड़ी देर में आपने एक कहानी सुनी और उस कहानी में आपने जाना ये जो दहेज है एक सामाजिक दिखावा है। जी हाँ, वर्तमान में दहेज एक गंभीर समस्या बनी हुई है। इसके कारण माता पिता के लिए लड़कियों का विवाह एक अभिशाप बन गया है। सामान्यतः दहेज उस धन को या संपत्ति को कहते हैं जो विवाह के समय कन्या पक्ष द्वारा वर को दिया जाता है। दहेज वो धन संपत्ति है जो विवाह के अवसर पर लड़की के माता पिता या अन्य निकट संबंधियों द्वारा दी जाती है। मैक्स रेडिन कहते हैं कि दहेज वो संपत्ति है जो एक पुरुष विवाह के समय अपनी पत्नी या अपने परिवार से प्राप्त करता है। आपने एक कहानी सुनी, उसमें तो एक लड़का होता है, उसकी शादी तय होती है, फिर उस लड़के की नौकरी लग जाती है, उसके बाद फिर वो उसका दहेज या फिर मांग का जो लेवल है वो थोड़ा और बढ़ जाता है। हम आपको मिलवाते हैं जो आज हमारे साथ फोन के जरिए से मौजूद हैं, प्रेरणा जी हैं। अब वो आपसे बहुत सारी बातचीत करेंगी दहेज के बारे में, दहेज के दुष्परिणाम के बारे में, दहेज निषेध अधिनियम से हमें कितना लाभ हुआ, दहेज एक्ट क्या है उसके बारे में बात करेंगी और दहेज प्रथा के बुरे परिणाम के बारे में और साथ ही बहुत सारी सामाजिक दिखावा है क्यों है कैसे है। तो फिलहाल इंतजार खत्म हुआ, मिलवाते हैं। स्वागत है आपका सुनो शारदा 90.8 FM पर।
3: शुक्रिया साकिब, आपने मुझे इनवाइट किया इस शो में और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आपसे इस पे बात करने के लिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा आपने चुना है आज के समय में बात करने के लिए।
2: मैं भी चाहता था कि आपको हम चुने इस मुद्दे पे, ताकि हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी लिसनर हैं आपसे कुछ सीखें और आपसे कुछ जानें और अपने अपने जानने वालों को भी इसके सीख दें। खैर, आज का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। शुरू करते हैं प्रश्न का सिलसिला जो हम आपसे जानना चाहते हैं और जो हमारे लिसनर चाहेंगे कि आप उनसे उन चीजों के बारे में बताएं। तो जब दहेज प्रथा की बात करते हैं तो दहेज प्रथा की शुरुआत की बात हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले परिभाषित कर ही दिया है कि दहेज है और किसे कहते हैं, तो उसमें भी अगर कोई उतार चढ़ाव रहा हो तो उसे भी आप शामिल कर सकती हैं, लेकिन साथ में ये भी बताइए कि दहेज प्रथा की शुरुआत कहाँ से हुई और दहेज प्रथा के लिए जिम्मेदार कौन है।
3: जी, तो जैसे साकिब आपने शुरुआत में ही बहुत अच्छे से बताया, दहेज प्रथा जो है एक तरीके से कुरीति है समाज की, जो हम कई सालों से सुनते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं और कहीं ना कहीं एक तरीके से लड़की पक्ष की तरफ से जितना भी सामान मटेरियल या चीजें दी जाती हैं एक वर पक्ष को एज अ गिफ्ट और एज अ मतलब दहेज के तौर पर जो दिया जाता है वो कहीं ना कहीं एक बर्डन भी एक लड़की पक्ष की तरफ होता है। और इसको अगर मैं ये बताना चाहूँ कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी या फिर इसका ओरिजिन कहाँ से रहा है, तो एक पर्टिकुलर मतलब डेट या ईयर हम नहीं शायद टटोल पाएंगे, क्योंकि पौराणिक हमारे ग्रंथों के अंदर भी दहेज प्रथा की बात हुई है। हिंदुस्तान के अलावा कई और देश भी हैं, यूरोप है, अफ्रीका है, बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे दहेज प्रथा भी अभी भी प्रचलित है।
2: सही बात, बिल्कुल।
3: ब्राइड प्राइस के नाम से जानी जाती है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे प्रथाएं जो है कहीं ना कहीं बहुत समय से चलती आ रही हैं, कुछ पॉजिटिव भी थी, कुछ ने अभी के समय में और ज्यादा जितने प्रोग्रेसिव हम होते जा रहे हैं उतना ही विकराल रूप ले लिया है, और दहेज प्रथा कहीं ना कहीं उसमें से एक है जिसके जिम्मेदार हम लोग ही हैं, एक समाज है, परिवार के लोग हैं जो इस तरह की मान्यता को या इस तरह की प्रथा को और ज्यादा प्रमोट करते हैं, या फिर एक तरीके से पितृसत्ता को भी मैं कहीं ना कहीं इसके अंदर इंक्लूड करती हूँ, क्योंकि लड़की को या स्त्री को जो है एक निचला पक्ष दिया जाता है, उसकी जिम्मेदारी या तो पिता लेता है या पति लेता है। तो मुझे ये लगता है कि हम ही इसके लिए जिम्मेदार हैं, चाहे हम कितने भी प्रोग्रेसिव हो गए हैं, पढ़े लिखे हैं, आधुनिक समाज में आधुनिक काल में भी हम आ चुके हैं, पर इस प्रथा से हम नहीं छुटकारा पा पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक सामाजिक मानसिकता भी है हमारी जो इस कुरीति को प्रमोट करने के लिए, आगे बढ़ाने या बढ़ावा देने के लिए भी है। और जैसा कि आपने बोला, एक तरीके का दिखावा जो है
2: जी,
3: वो भी कहीं ना कहीं इस चीज के लिए जिम्मेदार है कि मैं कितना प्रतिष्ठित, कितना सम्मानित और कितना इज्जतदार समाज में माना जाऊंगा, वो मेरे बैंक बैलेंस और मैं कितना दहेज दे सकता हूँ या दे सकती हूँ उससे कहीं ना कहीं आंका जाता है।
2: सच तो ये है कि इसकी शुरुआत कहीं ऐसे हुई थी कि सपोर्ट के तौर पे कि एक आर्थिक मदद मिल जाए, लेकिन उसके बाद इन्होंने विकराल रूप लिया और फिर एक रीति में आ गया, कहीं रीति से इसको जोड़ते हैं, कहीं गिफ्ट से इसको जोड़ते हैं, और फिर आते आते एक बर्डन बन गया ये, है ना। अब दहेज निषेध के अधिनियम से कितना लाभ हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ भी कानून के कई सारे प्रावधान हैं और कानूनन भी इसको गलत कहा गया है, लेकिन इससे कुछ फर्क पड़ा, फायदा हुआ हमारे समाज को, या फिर अभी भी वहीं के वहीं हैं?
3: तो मैं ऐसा कहूंगी साकेत कि दहेज अधिनियम तो हमारा 1961 में आ गया था और इसको बार बार संशोधित भी किया गया 85 में, 86 में, और इतनी जरूरत पड़ती गई इसके संशोधन के लिए कि जो इसके क्राइटेरिया थे उसके अंदर घरेलू हिंसा जैसी जो चीजें हैं वो नहीं आ पाती थी। तो 2005 में नया एक्ट लेके आया गया जो घरेलू हिंसा से संबंधित था, घरेलू हिंसा के फिर केसेस हुए तो उसके अंदर दहेज प्रथा से रिलेटेड केसेस होने लगे। तो कानून अपनी जगह पे है, पेपर पे वो कानून है, बट कितना लाभ हो पा रहा है ये आंकड़ा बता पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम देखेंगे कानून की व्यवस्था होने के बावजूद भी, जो अगर मैं महिला आयोग का भी डेटा आपको बताऊं जो 2020 का है,
2: उसमें
3: कहा जा रहा है कि 20% से ज्यादा इजाफा हुआ है, मतलब लगभग जितने पिछले साल केसेस आए थे उसमें 19,000 केसेस कुछ सालाना रिपोर्ट हुए थे, उसमें अब 20% का इजाफा हुआ है।
2: अरे बाप रे।
3: या जो डोमेस्टिक हरासमेंट्स की जो रिपोर्ट है कहीं ना कहीं वो 5,000 तक की कंप्लेंट्स जो है एक साल के अंदर उस तरीके से आ रही हैं, जो जिसमें मैक्सिमम परसेंटेज जो है वो डाउरी रिलेटेड डेथ्स का है, डाउरी रिलेटेड हरासमेंट्स का है। और इसमें हर एक कैटेगरी के लोग हैं, मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि जो निर्धन है या फिर जो एक पढ़े लिखे शिक्षित लोग नहीं है, शिक्षित समाज से एजुकेटेड लोग, मतलब इतनी हमारी एजुकेटेड महिलाएं हैं वो भी अपने केसेस जो है नहीं रजिस्टर कराती हैं, फैमिलीज वो चीजें नहीं रजिस्टर कराती हैं। और दूसरा पक्ष ये है कि उसको एक दहेज के तरीके से देखा भी नहीं जाता है कि वो गिफ्ट के तौर पे मान लिया जाता है या फिर
2: जो देंगे अपनी पुत्री को देंगे।
3: हाँ हाँ, वो कितना फोर्स्ड गिफ्ट है, कितना उसमें ब्रांडिंग है, कितने आपने कागज दिए हैं और कितना आपने मांगा है, उसको कहीं ना कहीं जस्टिफाई नहीं करते हैं। और ये एक चीज है जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम लाभ की जो बात कर रहे हैं उसका परसेंटेज बहुत ही कम होगा, जहां बहुत एक्टिवली किसी लड़की ने, किसी परिवार पक्ष ने अपनी बात रखी होगी और उस केस को वो जीते होंगे तो वो परसेंटेज बहुत कम है। और इस लाभ का मैं मतलब अभी तक नहीं समझती हूँ कि हम 21st century में है और अभी भी हम दहेज प्रथा जैसे चीजों की बात कर रहे हैं। तो कानून से मतलब बहुत ज्यादा अपेक्षाएं हैं कि वो प्रैक्टिकली कितना हमारी लाइफ में हम कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम जो पेपर में लिखा हुआ है।
2: नहीं, सच तो ये है कि अगर हम इंडिविजुअली देखें तो हम खूब अपना ज्ञान देते हैं कि दहेज नहीं लेना चाहिए, दहेज वो है, जब अपनी बारी आती है तो मुझे लगता है कि सबके सबके मुंह, जितने लोग हैं इंडिविजुअली, सबके मुंह खुल जाते हैं कि हाँ हमें चाहिए।
3: ये बहुत सही बात कही है साकेब आपने, क्योंकि आप देखिए कि मतलब हम आंकड़ा भी देखें, अगर मतलब डेटा को भी देखें या हम अलग अलग स्टेट्स की भी बात करें, हमारे यहाँ पे बहुत मतलब एक टाइम मतलब अगर आप एक IAS हैं तो आपकी मतलब बिहार में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, ऐसे जहाँ कम्युनिटीज हैं, या आप एक एजुकेटेड कम्युनिटी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में भी IAS अगर एक लड़का है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर ब्रांड है कि वहाँ 50 लाख का दहेज तो जाना ही जाना है,
2: बिल्कुल बिल्कुल
3: जाना है। तो ये चीजें क्या है, ये हम एजुकेटेड क्लास की बात कर रहे हैं जो अफोर्ड कर सकती हैं इस तरह का गिफ्ट सिस्टम, इस तरह का दहेज देना या शो ऑफ करना। वहीं जहां एक परिवार है जो एक गांव से है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसके लिए ये उतना ही बर्डन सम बन जाता है कि अगर वो अपनी बेटी का विवाह करना चाहता है तो उसको कहीं ना कहीं से उधार लेना पड़ता है, अपनी जमीन बेचनी पड़ती है, अपने सालों की कमाई को इकट्ठा करके तब जाके वो उसको अपनी बेटी की शादी वो कर पाता है। तो ये कहीं ना कहीं दिखावा तो है ही, साथ में मुझे लगता है कि प्रोग्रेस करते करते भी हम एजुकेटेड क्लास भी अगर इसके ऊपर अपनी बात नहीं रख पाएगी, वो लड़कियां जो पढ़ी लिखी हैं, जो एजुकेटेड हैं, सब कुछ जानती हैं, उसके बावजूद इस गिफ्टिंग सिस्टम को दहेज के नाम पे प्रमोट करती हैं या अपनी बात नहीं रख पाती हैं, तो कहीं ना कहीं हम सभी उस का हिस्सा हैं, और मतलब एक क्राइम है, एक इलीगल चीज है जिसको हम प्रमोट कर रहे हैं।
2: हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा और मैं भी यही कहूंगा। लेकिन एक बार अगर हम ये कहें कि जो कानून पे फिर से आना चाहेंगे, अगर दहेज एक्ट की बात करेंगे तो एग्जैक्टली वो है क्या?
3: तो मैं अगर दहेज एक्ट की बात करूं तो इसके अंदर बहुत क्लियरली बताया गया है कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई भी संपत्ति या मूल्यवान चीज जो एक लड़की की सुरक्षा के लिए दी जाती है, उसकी सहमति से दी जाती है, उसमें कुछ चीजें हैं, या तो वो वर पक्ष जो है वो डिमांड रखता है, वो इसके अंदर आती है, वो दहेज माना गया है
2: जी।
3: या कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक परिवार का मतलब सदस्य जो अपने मतलब किसी पक्ष से अभिभावक जो है वो देना चाहते हैं, किसी और रिलेटिव के द्वारा कोई डिमांड आई गई है वो उसमें रखा गया है, कोई भी तोहफा जो है वो तो दिया गया है, या कोई ऐसी चीज है किसी मतलब कोई रकम है जो दी गई है वो इसके अंदर आती है। तो उन सभी चीजों को दंडनीय माना गया है, दहेज के रूप में माना गया है, और तीन स्थितियां बताई गई हैं कि विवाह से पहले, विवाह के अवसर पर और विवाह के बाद। इन तीनों स्थिति के अंदर जो भी गिफ्ट है या जो भी गिफ्ट के तौर पे दहेज मांगा जा रहा है, क्योंकि देखिए गिफ्ट जब हम बात करते हैं तो उसमें बहुत क्लियरली है कि मैं अपनी विलिंगनेस से दूंगी, मेरे को जो अच्छा लगेगा मैं वो दूंगी, और वो देने वाले के ऊपर डिपेंड करता है।
2: बिल्कुल।
3: जबकि आप मुझे एक लिस्ट थमा दीजिए और बोल दीजिए कि 50 लोग हैं, इन 50 लोग के लिए इस ब्रांड का, इस चीज का इतने तोला सोना आप मुझे दीजिए, तो ये गिफ्ट नहीं है।
2: और फिर वही कहते हैं कि देंगे तो अपनी बेटी को ही देंगे।
3: हाँ, तो यहाँ पे बहुत क्लियर डिफाइंड किया गया है, और लॉ के अंदर भी बताया गया कि वो जो भी गिफ्ट है वो केवल वधू के लिए है, वो उस लड़की के लिए है जो दिया जा रहा है, क्योंकि उसकी पेरेंट जो है, उसका जो राइट है पेरेंटल प्रॉपर्टी में और एक सोशल फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है उसके लिए वो दिया जा रहा है, उसपे जो लड़की का ससुराल पक्ष है, पति और उसके जो लोग हैं, उनका कोई अधिकार नहीं है उसपे। अगर वो उस पर अपना अधिकार मानते हैं और लड़की को प्रताड़ित करते हैं या उससे बोलते हैं कि और पैसा आप लेके आइए, वो करिए, तो वो आपके जो कानून के दायरे में आता है उसके लिए सजा है, 6 महीने से लेके 7 साल तक की सजा है, 5,000 से लेके 10,000 रुपए तक का जुर्माना है उसके अंदर, पति के ऊपर भी और पति के परिवार के लोगों के ऊपर भी। तो नियम तो है हमारे यहाँ पे, और आप अगर उसको जानते हैं, समझते हैं, तो आप उसके ऊपर एक्शन भी ले सकते हैं।
2: बिल्कुल। अच्छा, हालांकि मैं इस प्रश्न को अलग से पूछना ही चाह रहा था कि इसके लिए प्रावधान क्या है सजा के, तो आपने अच्छा किया बता दिया। लेकिन जब इस तरह से हो चुका है, आप एक एग्जांपल देते हुए कहा कि लड़का अगर IAS हो तो उसका एक बंधा हुआ रेट है कि उसका 50 लाख मिलेगा ही मिलेगा। इंडिविजुअली स्टेप लेने पड़ेंगे हर इंसान को, है ना?
3: बिल्कुल। और कई लड़कियां ले चुकी हैं, मतलब वो अपनी वो कहती हैं कि आप मुझे पेरेंटल प्रॉपर्टी में मेरा हिस्सा दीजिए, आप मुझे दहेज मत दीजिए। अगर क्योंकि पहले ये जब शुरुआत की हम बात कर रहे थे तो उसमें ये कह रही थी कि पेरेंटल प्रॉपर्टी में भी हमें लड़कियों को नहीं पता था कि उनका हिस्सेदारी कैसे होगी, तो उसको समझा गया कि हाँ आप डाउरी दहेज दे रहे हैं तो वही आपका हिस्सेदारी है। तो जब ये समझ में आया और लॉ ने बहुत क्लियरली इसको डिफाइन किया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत क्लियरली डिफाइन किया कि लड़की का भी उतना ही हिस्सा अपने पेरेंट की प्रॉपर्टी में है, पिता के उसमें है, जितना कि एक लड़के का है, तो वहां से भी ये चीजें बहुत क्लियर हो गई कि अच्छा, मुझे अगर मैं फाइनेंशियली नहीं सिक्योर हूँ, तो एक हिस्सेदारी है जो मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सकती है, तो दहेज का कोई सवाल फिर वहां से नहीं होता। तो ये बहुत समझना जरूरी है कि कानून आपके लिए है, व्यवस्था बनाई गई है, आप कितने उसमें सजग हैं, सचेत हैं, जानते हैं चीजों को, वो बहुत इम्पोर्टेंट है,
2: बहुत इम्पोर्टेंट है।
3: इसलिए मुझे लगता है कि लड़कों को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि जब वो ये फैसला करते हैं शादी करने का, तो बहुत क्लियरली इस चीज को समझे, और लड़कियों को भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो बहुत सही तरीके से इस चीज को सामने रख पाए।
2: बिल्कुल रखना चाहिए। अच्छा, अब समय जो है बहुत कम बचा हुआ है, तो हम दो तीन चीजें आपसे पूछते हैं, और साथ में ये भी चाहेंगे कि आप आज का मैसेज भी दे दें। तो दहेज प्रथा के बारे में बुरे परिणाम तो है ही हमारे साथ, उनके बारे में थोड़ा सा कोई उदाहरण अगर देना चाहें तो दे दें, लेकिन जो हमारा ये दहेज को कहते हैं कि सामाजिक दिखावा है, ऐसे क्यों?
3: तो अगर मैं दहेज एक बुरी प्रथा है इसके आंकड़े देने चाहूं, तो मेरे पास मतलब आंकड़ों की कमी नहीं है। इसमें मैं महिला आयोग का आपको डेटा दे सकती हूं, इसमें मैं आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डेटा दे सकती हूँ। पैंडेमिक के अंदर हमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि हमारी जो महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न है कहीं ना कहीं दुगना हो।
2: अरे बाप रे।
3: कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट्स भी आई जो NCW ने भी बोला, व्हाट्सएप पे कंप्लेंट्स फाइल हुई, या मैं कहूँ कि जो FIR हुई, जो केस रिपोर्ट हुए, एक महीने के अंदर 1200 कुछ केसेस थे जो रिपोर्ट हुए हैं।
2: अच्छा।
3: तो पैंडेमिक के अंदर भी जब घर के अंदर स्थिति ऐसी खराब हो गई, तब इतने ज्यादा केसेस जो हैं वो बढ़ने लगे हैं। तो डाउरी डेथ्स की हम रोज केसेस पढ़ते हैं, ये पिछले 3 साल का आंकड़ा है जिसमें बताया गया था कि हर घंटे 16 औरतें जो हैं उनकी डेथ होती है।
2: ये बड़ा आंकड़ा है,
3: ये बहुत ही बड़ा आंकड़ा।

0: भी अच्छा लगेगा कि हाँ इतनी बड़ी मैंने शादी की है मेरी, चाहे वो आपका इतना पैसा खर्च करने के बावजूद भी आपकी वो लड़की जो है खुश नहीं रहे, वो लड़की जो है प्रताड़ित हो, उत्पीड़न तब भी ज्यादा होता है जहाँ उन फैमिलीज के भी केसेस आए हैं जहाँ पे मोटा पैसा देने के बावजूद भी वो लड़कियां प्रताड़ित की जाती हैं, क्योंकि भूख है पैसे की तो वो खत्म तो होती नहीं है। तो ये एक चीज है जो एक सामाजिक दिखावे के ऊपर बहुत ज्यादा मतलब हमें सोचने की जरूरत है कि हम एज अ ह्यूमन हम क्या चाह रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, एक मतलब शादी जैसे संबंध को हम कैसे देख रहे हैं, क्या हम उसको एक बिजनेस डील के तौर पे देख रहे हैं या फिर हम उसको एक सम्मान पूर्वक एक ऐसे कंपेनियनशिप की तरफ देख रहे हैं जहाँ पे दोनों लोग जो है एक पार्टनरशिप के अंदर है, ना कि एक बिजनेस डील के अंदर। अंत में मुझे लगता है कि हमें एज ह्यूमन एज वुमेन अवेयर होने की बहुत ज्यादा जरूरत है अपने राइट्स के बारे में, अपने एक्शंस के बारे में, कि हम कहाँ किससे सपोर्ट ले सकते हैं। कई बार हमें पता नहीं होता कि हम कहाँ किसको अप्रोच करें, किससे बात करें। अगर मैं एक दहेज उत्पीड़न की शिकार हूँ, मैं घरेलू हिंसा मेरे ऊपर इसलिए हो रही है क्योंकि दहेज नहीं दे पा रही हूँ, तो मुझे ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। और उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बोलूं या नेशनल लेवल पे बोलूं तो बहुत सारी हेल्पलाइन है, संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं। अगर मैं बोलूं कि नेशनल वुमेन हेल्पलाइन जो है तो 1090 है, 1090 है, 1091, 1081 भी है जो गौतम बुद्ध नगर में और क्या कहते हैं हमारे गाजियाबाद के एरिया में है, जो स्पेशल वैन सर्विस है कि इमीडिएट मुझे हेल्प चाहिए, मैं निकली हूँ उस जगह से तो मैं कैसे रेस्क्यू अपना करवा पाऊँ, उसके लिए 181 हमारी हेल्पलाइन है जो काम करती है, एक्टिवली काम कर रही है। पैंडेमिक के अंदर बहुत लोगों ने इसको यूज किया है। और अगर मैं यूपी की बात करूँ कि यूपी वुमेन कमीशन जो है उसका भी एक हेल्पलाइन नंबर है, आई विल ट्राई टू टेल यू, और एक व्हाट्सएप नंबर भी है।
1: बिल्कुल।
0: तो जो हेल्पलाइन नंबर है वो है 1800 180 5220। आई विल रिपीट 1800 180 5220। और इसी पे एक व्हाट्सएप नंबर है, ये वुमेन कमीशन हेल्पलाइन है जो यूपी की है, और उसका व्हाट्सएप नंबर जो है वो है 6306511708, 6306511708। तो ये नंबर्स हैं जिनको कांटेक्ट किया जा सकता है। सबसे इमीडिएट हेल्प आपका, आपको पता होना चाहिए कोई ट्रस्टेड आपका पर्सन है, उसको आप बताइए अपनी स्थिति, इमीडिएटली पुलिस में रिपोर्ट कीजिए। एक्शन लेना बहुत जरूरी है। अगर हम इसको समाज के हिसाब से छुपाते रहेंगे, बात कर मतलब छुपाना जितना आसान है उतना हम सहते रहेंगे, तो फिर काम नहीं चलेगा। मुझे लगता है कि हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए और अपना निर्णय जो है वो बहुत सोच समझ के लेना चाहिए।
1: बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ी और अपनी बात साझा की। आशा करता हूँ कि हमारे जितने भी लिसनर है, तमाम श्रोतागण सुन रहे हैं, इसे लाभ उठाएंगे। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए।
0: थैंक यू साकिब।
1: तो श्रोताओं, ये थी प्रेरणा जी और ये आपसे बातचीत कर रही थी दहेज प्रथा के बारे में। काफी सारी जानकारी इन्होंने दी कि दहेज प्रथा की शुरुआत कहाँ से हुई और दहेज प्रथा के लिए जिम्मेदार कौन है और दहेज के अधिनियम क्या है, दहेज एक्ट के बारे में बताया और साथ ही साथ बताया कि दहेज प्रथा के बुरे परिणाम क्या है और ये सामाजिक दिखावा है। कई सारे मुद्दों पर इन्होंने बहुत अच्छे से रोशनी डाला। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम को बहुत पसंद किया और अगर पसंद किया तो आप हमें फीडबैक भी देंगे, यानी अपनी राय प्रतिक्रिया देंगे, या फिर इस कार्यक्रम से संबंधित कोई भी बात अपना रखना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे वो दो माध्यम हैं, एक तो फोन का जरिया और दूसरा है ईमेल का जरिया। अगर फोन के जरिए से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 0120406025, यानी 01204060205। और अगर इंटरनेट के जरिए से संपर्क करना चाहते हैं तो ईमेल एड्रेस नोट कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है 90.8fm@sharda.ac.in। वंस अगेन वुड लाइक टू रिपीट इट फॉर यू, 90.8fm@sharda.ac.in। और अब इसके साथ अपने दोस्त अपने होस्ट साकिब शेख को दीजिए इजाजत। बने रहिए अपने सामुदायिक रेडियो सुनो शारदा 90.8fm पर। अगले कार्यक्रम के लिए नमस्कार।
2: तो श्रोताओं, मैं आपसे आशा करता हूं कि इस कार्यक्रम का आपने लुत्फ उठाया हो, इस कार्यक्रम से आपने एक सीख ली होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि इस कार्यक्रम से आप ये सीख लेंगे कि दहेज एक कुरीति है, इसको बढ़ावा नहीं देना है। ये कार्यक्रम था दहेज प्रथा या हत्या। आप मुझे बताइएगा कॉल कर 0120406025 पर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं 90.8 FM @sharda.ac.in पर। और ऐसी ही श्रृंखला हम आपके लिए समय दर समय लाते रहेंगे। बस आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें और सुनते रहें सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। और जल्दी मुलाकात होगी इस श्रृंखला की नवी कड़ी।

0: के साथ। फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर टीबी की मुफ्त जांच, मुफ्त इलाज और पोषण सहायता उपलब्ध है। मन में हो टीबी से जुड़ा सवाल तो करें टोल फ्री नंबर पर कॉल 1800-11-6666। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: एक छोटी सी लापरवाही से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
1: ऐसे ही जब आपकी जिंदगी भर की कमाई कोई साइबर फ्रॉडस्टर लूट ले तो तकलीफ तो होगी ही। हमेशा याद रखें, अपनी बैंक डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें।
0: साइबर फ्रॉड में पैसों की ठगी होने पर तुरंत इसकी शिकायत नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर करें। इससे आपके पैसे रिकवर होने की संभावना बढ़ जाती है।
2: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो शारदा
5: 90.8 FM। लक्षण इसी से तो किसी की पहचान बनती है। और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के दो चार लक्षण जान लो फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है। फिर एक खांसी के लक्षण को हम कैसे नकार कर उसे टीबी में बदलने का मौका दे देते हैं बताइए। देखिए सिर्फ 5 बातें ही तो याद रखनी है आपको। 2 हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराइए। और सुनिए सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ये जांच बिल्कुल मुफ्त है। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
6: ये संदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
7: हाय मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।

0: समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, किसे दिखाऊं, पता नहीं कितना पैसा खर्च हुई है।
1: अरे मैं तो कहूँ कि तुम इसे लेकर बाबा जी के पास जाओ, बच्चों को अक्सर नजर लग जाती है, अरे नजर झड़वाते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा।
2: अभी कहीं ले जाने में जाने की जरूरत नहीं है, जाके मेडिकल स्टोर से दवा ले लो या गांव के बंगाली डॉक्टर को दिखा लो, दोनों ही बहुत जानकार हैं। बड़े अस्पताल में बस बड़ा पैसा खर्च होता है और कुछ नहीं।
3: चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम बच्चे को जिला में स्थित बीमार नवजात शिशुओं के लिए अलग से बने अस्पताल जिसको कि SNCU बोलते हैं, वहाँ लेके चल सकते हैं। वहाँ के डॉक्टर साहब और नर्स बहन जी बीमार नवजात शिशुओं की देखभाल में विशेष रूप से प्रशिक्षित हैं। शहर के बड़े अस्पतालों जैसी सब मशीनें इस अस्पताल में हैं। अगर बच्चे की कोई जांच करानी हो तो अस्पताल द्वारा खुद ही करा ली जाती है। नवजात को लेकर इधर उधर भागना नहीं पड़ता है और इन जांचों और दवाइयों पर परिवार को कोई भी खर्च भी नहीं करना पड़ता। इसके साथ बीमार शिशुओं को घर से अस्पताल और अस्पताल से घर वापस छोड़ने के लिए सरकार ने निशुल्क एम्बुलेंस की सुविधा दी हुई है। तो सोचिए कि सरकार ने अगर इतनी व्यवस्था की है तो हम क्यों अपने नन्हे मुन्ने की जान को जोखिम में डालें और क्यों फालतू पैसा खर्च करें।
0: मैंने सोच लिया है, अब अपने बच्चे को 102 एम्बुलेंस में ले जाकर SNCU में ही दिखाऊंगा।
3: तो आपको क्या समझ में आया, फर्क पड़ता है अगर आप अपने बीमार नन्हे मुन्ने को झाड़ फूंक, मेडिकल स्टोर, झोला छाप डॉक्टर या फिर महंगे प्राइवेट डॉक्टर की बजाय जिला अस्पताल में स्थित SNCU में दिखाते हैं, क्योंकि फर्क पड़ता है।
4: सुरक्षा गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्मसिद्ध अधिकार है। यूनिसेफ द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को मेरा यानी विमलेश का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत बहुत बहुत आप सबका।
3: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं अजीत।
2: सुनते हैं आज का खूबसूरत विचार जो हमें भेजा है महाराष्ट्र वडनेर से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर जी ने। बहुत सुंदर विचार है।
3: विचार है, हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, पर लोग अक्सर इसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते।
2: जी, आप दोनों का बहुत बहुत आभार। और अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम।
3: इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम और नीलिमा अजीम।
2: संजय नगर कॉलोनी नेपानगर से प्रभुदयाल शिवदे, शिवा, खुशी, जानू, मनीषा, बसंती बाई और गणेश शिवदे।
3: और चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीब।
2: बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी।
3: और गांव डांगरी जिला जैसलमेर से बाबूराम जयपाल।
2: आप सबको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओ, एक बार फिर से आ गई है हमारी आपकी सबकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए।
3: श्रोताओ, जैसा कि आपको पता है, इस सप्ताह हमने विशेष रूप से चर्चा की उन सब्जियों की जो भारत में इतनी लोकप्रिय हैं कि वो भारतीय ही लगती हैं।
2: जी,
3: लेकिन उनका मूल कहीं और है।
2: तो इसी क्रम में आज हम बात करेंगे एक और सब्जी, पत्ता गोभी की, और जानते हैं इसका इतिहास। आपको बता दें कि हमारी प्यारी प्यारी पत्ता गोभी या कैबेज भी भारत की मूल सब्जी नहीं है।
3: हाँ, लेकिन ये जरूर है कि अब ये भारतीय कृषि और रसोई का अहम हिस्सा बन चुकी है।
2: जी,
3: और इसके उत्पादन में भारत उन देशों से बहुत आगे है जहाँ इसकी उत्पत्ति हुई है।
2: पत्ता गोभी के परिवार में फूल गोभी और ब्रोकली भी आती हैं। इसकी उत्पत्ति का मूल स्थान यूरोप माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि पत्ता गोभी की खेती सबसे पहले दक्षिण यूरोप यानी भूमध्य सागर के क्षेत्र में हुई थी।
3: अब जरा ये जानिए कि पत्ता गोभी भारत में कब आई। तो यह ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में 18वीं-19वीं शताब्दी में अंग्रेजों के द्वारा भारत आई।
2: जी,
3: और जल्दी ही बहुत लोकप्रिय हो गई। आज पत्ता गोभी भारत में एक प्रमुख सब्जी फसल है और पूरे देश में उगाई जाती है।
2: माना कि पत्ता गोभी भारतीय नहीं है बल्कि एक विदेशी फसल है, लेकिन ये आलू और टमाटर की तरह भारत में पूरी तरह से अपनाई जा चुकी है।
3: जी,
2: आज ये देश के हर हिस्से में उगाई जाती है और बड़े चाव से खाई जाती है, इसलिए इसे अब भारतीय रसोई का हिस्सा जरूर कहा जा सकता है।
3: लेकिन विमलेश जी, अब ये तो बताइए कि वैज्ञानिक रूप से पत्ता गोभी क्या है।
2: जी जरूर श्रोताओं, पत्ता गोभी न तो टमाटर और भिंडी की तरह एक फल है, न आलू की तरह तना,

0: पत्ता गोभी वैज्ञानिक रूप से मात्र एक पत्ता है।
1: जी, पत्ता गोभी वैज्ञानिक रूप से मात्र एक पत्ता है, तो इसलिए शायद इसका नाम पड़ा पत्ता गोभी।
0: बिल्कुल।
1: और अब श्रोताओं, आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से, और हमारा प्रश्न है, पत्ता गोभी किस सदी या शताब्दी में भारत आई और इसे भारत लाने वाले कौन थे? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: पत्ता गोभी किस सदी या शताब्दी में भारत आई और इसे भारत लाने वाले कौन थे?
1: audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता, और 8800440559 है हमारा IVRS नंबर।
0: आप इन पतों पर अपना संदेश भेज सकते हैं। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम बूढ़ी अम्मा और बूढ़े बाबा।
1: श्रोताओं, ये NCERT की हिंदी के पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम है जो पारिवारिक मूल्यों को प्रोत्साहित करता है।
2: हेलो बच्चों।
3: हेलो अंकल जी।
2: अच्छा, मेरे नाम का मतलब बताओ। अंकल
3: गेम।
2: बच्चों, आज हम एक नया खेल खेलेंगे जिसका नाम है बूढ़ी अम्मा बूढ़े बाबा। क्या नाम है?
3: बूढ़ी अम्मा बूढ़े बाबा।
2: अच्छा, आपका क्या नाम है?
4: गुड़िया।
2: गुड़िया, तो गुड़िया आप बनेंगी बूढ़ी अम्मा। अच्छा, बूढ़ी अम्मा कैसे चलती है? झुक के चलती है ना?
4: हाँ,
2: कमर पे हाथ रखा होता है, एक लाठी हाथ में पकड़ी हुई होती है। अच्छा, आप जरा करके दिखाओ, चल के दिखाओ बूढ़ी अम्मा के जैसे। अरे वाह, क्या एक्टिंग किया, जोरदार तालियां। ठीक है, तो अब बच्चों, जो मैं बोलूंगा वही सवाल आप सब बूढ़ी अम्मा से पूछेंगे। ठीक है, सवाल वही बोलना है जो मैं बोलूंगा। सवाल क्या है? बूढ़ी अम्मा जंगल में क्या ढूंढ रही हो? बोलो।
3: बूढ़ी अम्मा जंगल में क्या ढूंढ रही हो?
2: और गुड़िया, अब आप इनको जवाब देंगी, मेरी गाय खो गई है, उसे ढूंढ रही हूँ।
4: मेरी गाय खो गई है, उसे ढूंढ रही हूँ।
2: अरे वाह वाह, शाबाश। बच्चों, अब तुम अम्मा से पूछो, गाय का क्या करोगी?
3: गाय का क्या करोगी?
2: अब गुड़िया तुम जवाब दो, दूध निकालूंगी।
4: दूध निकालूंगी।
2: ऐसे। अच्छा बच्चों, अब तुम पूछो, दूध का क्या करोगी?
3: दूध का क्या करोगी?
2: अब गुड़िया तुम बोलो, दही जमाऊंगी।
4: दही जमाऊंगी।
2: अरे वाह वाह। अब बच्चों तुम पूछो, दही का क्या करोगी?
3: दही का क्या करोगी?
2: गुड़िया यानी बूढ़ी अम्मा तुम बोलो, मक्खन निकालूंगी।
4: मक्खन निकालूंगी।
2: बच्चों अब तुम क्या पूछोगे? मक्खन का क्या करोगी?
3: मक्खन का क्या करोगी?
2: अरे घी बनाऊंगी।
4: अरे घी बनाऊंगी।
2: तो बच्चों, जब घी तुम्हारे सामने आएगा तो तुम क्या करोगे? घी को हम खाएंगे, मोटे होते जाएंगे। बोलो बोलो।
3: घी को हम खाएंगे, मोटे होते जाएंगे।
2: घी को हम खाएंगे, मोटे होते जाएंगे। अच्छा बूढ़ी अम्मा, तुम्हारा घी ये बच्चे सारे लेके खा जाएंगे तो तुम इनके साथ में क्या करोगी? इनको डंडा मारोगी ना? तो मारो डंडा इनको, डंडा मारो, भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो। घी को हम खाएंगे, मोटे होते जाएंगे। घी को हम खाएंगे,
3: मोटे होते जाएंगे। घी को हम खाएंगे, मोटे होते जाएंगे। घी को हम खाएंगे, मोटे होते जाएंगे।
2: ये पड़ा डंडा। किसको पड़ा ये डंडा?
0: मोनू।
2: मोनू, तो अब मोनू आप बूढ़े बाबा बनोगे। ठीक है, ठीक है। और बाकी सब बच्चे बूढ़े बाबा से वही सवाल पूछेंगे जो बूढ़ी अम्मा से पूछे थे। जोरदार तालियां। ये बूढ़े बाबा बन गए। तो अब बूढ़े बाबा से सवाल क्या पूछेंगे? पहला सवाल क्या पूछेंगे सारे बच्चे? बूढ़े बाबा जंगल में क्या ढूंढ रहे हो? जोर से फिर से बोलो।
3: बूढ़े बाबा जंगल में क्या ढूंढ रहे हो?
2: तो बूढ़े बाबा क्या जवाब देंगे?
4: मेरी गाय खो गई है, उसे ढूंढ रहा हूं।
2: अब बच्चे क्या पूछेंगे? गाय का क्या करोगे?
4: दूध निकालूंगा।
2: दूध का
3: क्या करोगे?
4: दही जमाऊंगा।
3: दही का क्या करोगे?
4: मक्खन निकालूंगा।
3: मक्खन का क्या करोगे?
4: घी बनाऊंगा।
2: तो अब बच्चे क्या बोलेंगे? तुम्हारा घी हम खाएंगे,
3: मोटे होते जाएंगे।
2: अरे बाबा, तुम्हारा घी चोरी हो रहा है, मारो मारो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो पकड़ो पकड़ो। तो उमंग सुनने वाले सारे बच्चों आप भी इस खेल को खेलें और भरपूर मजा उठाएं।
5: बूढ़ी अम्मा बूढ़े बाबा, अभी आप सुन रहे थे ये खेल कार्यक्रम। कलाकार बाबला कोचर और बच्चे, ध्वनिंकन बटी लैंग लिंगडो, निर्माण सहयोग गीतिका उनियाल, आलेख निर्माण निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT।
0: तो आपको कैसा लगा ये कार्यक्रम? और अब सुनते हैं सुर ताल और गीत में निबद्ध ये अंग्रेजी भजन।
5: CIET NCERT presents भजन। यू आर अबव ऑफ

0: आर अबव ऑफ ऑल। यू आर जस्ट लिसनिंग टू दिस भजन। स्पेशल ग्रेटिट्यूड टू राजेश कुमार निमेश, म्यूजिक कंपोजर हरभजन सिंह, सिंगर्स नेहा खंखरियाल, मेघा शर्मा, आभा तिवारी, मोहम्मद शब्बीर, अनुश्री, राहुल, अभिषेक तिवारी एंड विवेक सिंह नेगी। टेक्निकल डायरेक्शन बटी लैंगलिंडो, साउंड रिकॉर्डिस्ट मयंक कुमार एंड शानु मुक्सीम। असिस्टेंस इन प्रोडक्शन बाय तनु गुप्ता, जगबंधु जाना एंड मीनाक्षी कुकरेती। रिटन, डायरेक्टेड, एडिटेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय वंदना अरिमर्दन। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय CIET NCERT न्यू दिल्ली इंडिया।
1: आशा है श्रोताओं आपको हमारा ये नया प्रयोग अवश्य पसंद आया होगा। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम ऋतुओं पर।
2: कार्यक्रम का शीर्षक है ऋतुएं।
3: सूरज तपता धरती जलती, गर्म हवा जोरों से चलती। सूरज तपता धरती जलती, गर्म हवा जोरों से चलती। तन से बहुत पसीना बहता, तन से बहुत पसीना बहता। हाथ सभी के पंखा रहता, हाथ सभी के पंखा रहता। आरे बादल काले बादल, गर्मी दूर भगा रे बादल। आरे बादल काले बादल, गर्मी दूर भगा रे बादल। रिमझिम बूंदे बरसा बादल, रिमझिम बूंदे बरसा बादल। झमझम पानी बरसा बादल, झमझम पानी बरसा बादल।

और घटाएं छाई, टप टप टप टप बूंदे आई, बिजली चमक रही अब चमचम, बिजली चमक रही अब चमचम, लगा बरसने पानी झमझम, लगा बरसने पानी झमझम, लेकर अपने साथ दिवाली, सर्दी आई बड़ी निराली, लेकर अपने साथ दिवाली, सर्दी आई बड़ी निराली, शाम सवेरे सर्दी लगती, पर स्वेटर से है वह भगती, शाम सवेरे सर्दी लगती, पर स्वेटर से है वह भगती, सर्दी जाती गर्मी आती, रंग रंग के फूल खिलाती, सर्दी जाती गर्मी आती, रंग रंग के फूल खिलाती, रंग रंगीली होली आती, रंग रंगीली होली आती, सबके मन उमंग भर जाती, सबके मन उमंग भर जाती, रात और दिन हुए बराबर, रात और दिन हुए बराबर, सोते लोग निकलकर बाहर, सोते लोग निकलकर बाहर, सर्दी बिल्कुल नहीं सताती, सर्दी बिल्कुल नहीं सताती।

0: आइए अब चलते हैं
1: प्राचीन से भी अधिक अति प्राचीन काल में, जब हिमयुग समाप्त हुआ और मानव सभ्यता शुरू हुई। और जानते हैं कैसे थे आदि मानव, यानी हमारे सबसे पहले के पूर्वज।
0: क्या करते थे वे और कैसे चलता था उनका जीवन,
1: कैसे और कहाँ रहते थे वो, आइए सुनते हैं ये इतिहास गीत प्रारंभिक मानव।

0: नहीं हुआ करते थे तब घर और न होते थे औजार, अंधेरी गुफाओं में सोते थे, पत्थर थे उनके हथियार।
1: कभी कभी फुर्सत जो मिलती, बैठ के वो सोचा करते, नदी कहाँ से लाती है जल, पेड़ों पे कैसे लगते फल।
0: कैसे उग जाता है पौधा, रात को क्या सूरज भी सोता, क्यों जंगल में लगती आग, देख जिसे सब जाते भाग।

0: आदि मानव, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। तो श्रोताओं, कैसी लगी आदि मानव पर यह जानकारी?
1: जी,
0: जरूर अच्छी लगी होगी। तो आइए अब अंत में सुनते हैं एक छोटा लेकिन मनोरंजक कार्यक्रम।
1: शीर्षक है छोटी सी

0: विक्रम,
1: इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है।
2: तो अब विमलेश को अजीत जी और उमंग की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार। उमंग, उमंग, उमंग,
3: उमंग। हाय, मैं उरण विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: क्या हुआ बहू, इतनी खांसी?
3: माँ जी, मुझे टीबी है।
2: टीबी? और छुपा कर रखा?
3: माँ जी, मुझे डर था कि कहीं आप मुझे वापस मायके न भेज दें।
2: जाना तो तुझे पड़ेगा, लेकिन मायके नहीं, डॉट सेंटर। टीबी कोई ऐसी बीमारी थोड़े ही है जो छुपाते फिरें। टीबी छूने, साथ खाना खाने या रहने से नहीं फैलती। टीबी मरीज को जरूरत है आपके प्यार की और डॉट्स के पूरे कोर्स की। टीबी से दूर रहें, टीबी के मरीज से नहीं। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
4: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। चलिए बात करते हैं हेल्थ की। जो कहते हैं सच कहते हैं कि हेल्थ है तो सब कुछ है। आप अक्सर जिम जाते हैं, जिम जाने से पहले किन किन खास बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसी के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, जिम अगर आप जा रहे हैं तो उससे पहले क्या आप खाएं क्या ना खाएं, इसी के विषय में आज हम आपको बताने वाले हैं। उन 5 फूड के विषय में जो आपकी बॉडी को लोहे जैसी मजबूत बॉडी बनाएंगे। जिम में ज्यादा देर तक एक्सरसाइज करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जो हमें प्री वर्कआउट फूड से बड़े आसानी से मिल सकती है। इनसे सेहत भी अच्छी रहती है और आप खुद को फिट महसूस करते हैं। चलिए यही बात डिटेल में जानते हैं। जिम से पहले जरूर खाएं ये फूड। क्या है खास जानकारी, बात करते हैं। जी हाँ, हमें अपने डाइट पैटर्न में तब बदलाव की जरूरत होती है जब हम जिम जा रहे होते हैं। हालांकि जिम के वक्त शरीर को ज्यादा एनर्जी और स्टेमिना की जरूरत होती है, इसलिए जिम करने से पहले प्री वर्कआउट फूड्स को लेने की सलाह दी जाती है। ये फूड्स स्टेमिना भी बढ़ाते हैं और एनर्जी भी डबल करते हैं। प्री वर्कआउट फूड्स हमेशा हेल्दी और पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए, जिससे पर्याप्त मात्रा में एनर्जी शरीर को मिल सके। इससे एक्सरसाइज करने में भी अच्छे से मदद मिलती है, साथ ही मसल्स की रिकवरी भी सही तरीके से होती है। इतना ही नहीं, प्री वर्कआउट फूड्स में प्रोटीन और कार्ब्स का संतुलन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दोनों के बीच का सही संतुलन होने से थकान नहीं होती। अगर आप भी जिम जाते हैं तो यहाँ हम आपको कुछ बेस्ट प्री वर्कआउट फूड्स के बारे में बता रहे हैं। ओट्स के विषय में बात करते हैं। ओट्स के बारे में तो हमने सुना ही है। फाइबर, कार्ब्स और अनगिनत पोषक तत्वों से भरपूर ओट्स सेहत के लिए बेहद अच्छा होता है। वर्कआउट से पहले ओट्स खाना फायदेमंद होता है। इससे लंबे समय तक शरीर में एनर्जी रहती है और अच्छे से एक्सरसाइज करने में मदद मिलती है। ओट्स में मौजूद

विटामिन बी कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदल देता है। वर्कआउट करने से करीब आधे घंटे पहले अनप्रोसेस्ड ओट्स खाने की हिदायत दी जाती है। अब बात अंडे की। वर्कआउट करने से पहले अंडा खाना काफी फायदेमंद माना जाता है। इसमें अमीनो एसिड के साथ साथ प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होता है, जिससे वर्कआउट करने में ज्यादा मदद मिलती है। अगर आप जिम जाने के 30 से 40 मिनट तक पहले एक से दो उबले अंडे या ऑमलेट खाते हैं तो एक्सरसाइज करने में ज्यादा एनर्जी मिल सकती है। बात स्मूदी। स्मूदी पोषक तत्वों का एक बड़ा स्रोत है। बेरी स्मूदी के साथ साथ ग्रीन स्मूदी भी काफी फायदेमंद होती है। इसे वर्कआउट से पहले लेने से कठिन एक्सरसाइज करने के लिए एनर्जी मिलती है। इसके अलावा ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, एवोकाडो, पत्तेदार सब्जियों की स्मूदी भी ट्राई कर सकते हैं। बात केला की। केले को भरपूर एनर्जी का स्रोत माना जाता है। इसके अलावा केले में कार्बोहाइड्रेट और पोटेशियम के भी अच्छे गुण होते हैं। इससे शरीर की नसों और मांसपेशियों को ठीक ढंग से काम करने में मदद मिलती है। केला खाने से डाइजेशन दुरुस्त रहता है। इतनी खूबियों के चलते केला बेस्ट प्री वर्कआउट फूड में से एक है। उबला हुआ चिकन। बात सामने ये आती है कि चिकन को डाइट का अहम हिस्सा माना जाता है। चिकन में मौजूद प्रोटीन शरीर के निर्माण के लिए बेहद जरूरी है। प्रोटीन मसल्स की रिकवरी में भी मदद करता है। थोड़ी सी काली मिर्च और स्वादानुसार नमक के साथ उबला हुआ चिकन एक अच्छा प्री वर्कआउट फूड में एक है। अब बात करते हैं एनर्जी बार की। जी हाँ, जिम में वर्कआउट करने वालों के पास एनर्जी बार जरूरी होना चाहिए। आप इसे अपने पास स्टोर करके रखने केमिस्ट दुकान या फिर किसी सुपरमार्केट में इसे आराम से खरीद सकते हैं। एनर्जी से भरपूर एनर्जी बार में कार्बोहाइड्रेट के साथ हेल्दी फैट, प्रोटीन और फाइबर भी मौजूद होता है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरोशा 90.8 FM।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: नमस्कार और स्वागत है आपका टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में। आज के सब्जेक्ट को ध्यान से सुनिए और टीबी को हराने में मदद कीजिए। टीचर जी,
2: जी
1: प्लीज कैरी ऑन।
2: थैंक यू सर। आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स में जीरो लापरवाही। टीबी की जांच में देरी ना करें, बलगम की सही जांच कराएं। टीबी की दवाइयों के कोर्स को नियमित रूप से लें, नहीं तो इलाज मुश्किल हो जाएगा।
1: तो मतलब इस क्लास का सार है लापरवाही करना टीबी से सिर्फ आधी लड़ाई जीतना।
2: यस सर, बिल्कुल करेक्ट।
1: तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश

0: संविधान शब्द सुनते ही जो तस्वीर हमारे मन में उभरती है वह है कानून की किसी मोटी सी किताब की। हकीकत यह है कि संविधान का छपा या लिखा तक होना जरूरी नहीं। संविधान का अर्थ है, खासकर जनतंत्र में, वह व्यवस्था या परंपरा जिसके अनुसार देश का शासन राजकाज चलाया जाना है। इसके साथ साथ भारत का संविधान उन सपनों और आदर्शों की धरोहर भी संजोए हुए है जिसमें आजादी की लड़ाई से लेकर आज तक करोड़ों हिंदुस्तानियों की हिस्सेदारी रही है। भारत के संविधान के सार को समझने के लिए इतिहास के पन्नों को पलटना बहुत जरूरी है।
1: संविधान का अर्थ हमेशा एक लिखी हुई किताब नहीं होता। इंग्लैंड का संविधान सिर्फ परंपरा पर टिका है। भारत के संविधान की एक खास बात यह है कि यह अमेरिका के संविधान की तरह लिखा हुआ है। भारत का संविधान हमें यह बताता है कि आजाद हिंदुस्तान में राजकाज कैसे चलाया जाता है और नागरिक तथा राज्य के बीच क्या रिश्ता है। हिंदुस्तान में अमेरिका और ब्रिटेन में अपनाए गए सरकार के अच्छे तरीकों का तालमेल बैठाने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ हमारा संविधान आजादी की लड़ाई के दौरान जो इरादे किए गए थे उनको पूरा करने का संकल्प भी है। यह बात याद रखने लायक है कि हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई सिर्फ विदेशियों को यहाँ से निकालने के लिए नहीं लड़ी गई थी, बल्कि इसका एक सबब आम आदमी के लिए बुनियादी अधिकारों को हासिल करना भी था। गांधी और नेहरू का सपना था हर आंख से हर आंसू पोंछना, गैर बराबरी को मिटाना और देश को खुशहाली के रास्ते पर आगे बढ़ाना। भारत का संविधान वह रूपरेखा हमारे सामने रखता है जिसके अनुसार नए भारत के निर्माण की योजना बनाई गई। संविधान के सार को समझने का काम शुरू करने से पहले इन सब बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। यूं तो हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई शुरू हुई थी 1857 में, पर जैसे जैसे यह चिंगारी लपट में बदली इसका रूप बदलता गया। पहले पहल इसका मकसद था अंग्रेजों को निकाल खदेड़ने का। बाद में यह सपना भी उसके साथ जुड़ गया कि आजाद हिंदुस्तान में समाज में फैली गैर बराबरी को मिटाना होगा और सब तरह की जातियों को, बुराइयों को मिटाना होगा। इसमें जमींदारी और सामंती तौर तरीकों की तमाम बुराइयां तो थी ही, छुआछूत और जातपात की वजह से मनमुटाव और भेदभाव भी शामिल था। दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। पूर्ण स्वराज की कल्पना में राजनैतिक स्वाधीनता के साथ साथ यह सब बातें भी शामिल थी। भारत को गणराज्य बनाने का संकल्प भी इसी मौके पर किया गया। आजादी की इस लड़ाई में करोड़ों देशभक्तों ने हिस्सा लिया और कुर्बानियां दी। आखिर हिंदुस्तान आजाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर तिरंगा फहराया।

आजादी हासिल करने के बाद सबसे अहम सवाल यह उठा कि देश को कैसे चलाया जाए, सरकार का तरीका कैसा हो। आजादी को अमली जामा पहनाने के लिए बहुत कुछ करना बाकी रहा था। इसी काम का बीड़ा उठाया संविधान बनाने वाली सभा ने। इसका गठन दिसंबर 1946 में किया गया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष चुने गए। मसौदा तैयार करने का काम सौंपा गया डॉक्टर अंबेडकर को। 26 जनवरी 1950 को ये संविधान लागू हुआ और भारत एक गणराज्य बना। संविधान का प्रमुख अंग इसकी भूमिका प्रस्तावना या प्रीएम्बल है। संविधान के सार को समझने के लिए यह खास तौर से उपयोगी है। संक्षेप में ही सही, इसमें उन सभी बातों का साफ साफ जिक्र किया गया है जिनसे हमारे संविधान के अलग अलग हिस्सों के बारे में, उनके आपसी रिश्तों के बारे में सही जानकारी मिलती है। इस प्रस्तावना से उन आदर्शों और मूल्यों का पता चलता है जिन्हें आजादी की लड़ाई के दौरान अपनी मंजिल समझा गया था। यह हैं संप्रभुता, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, जनतंत्र और गणराज्य वाली प्रणाली। इनके साथ साथ न्याय, स्वतंत्रता, समता, भाईचारा, व्यक्ति की गरिमा, देश की एकता और अखंडता को अहमियत देने की। कुल मिलाकर इन सभी मूल्यों का सबब एक है, देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखते हुए व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखना। व्यक्ति की गरिमा को बनाए बचाए रखने के लिए यह बेहद जरूरी है कि नागरिक को ऐसे बुनियादी अधिकार दिए जाएं जिनकी हिफाजत कानून करता हो, ऐसे अधिकार जिन्हें कोई उससे छीन न सके। इसीलिए हमारे संविधान में बुनियादी अधिकारों का जिक्र सबसे पहले किया जाना जरूरी समझा गया। यही वह नींव है जिस पर भारतीय जनतंत्र की बुलंद इमारत खड़ी है। जीने का और आजाद रहने का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है। संविधान की 21वीं धारा में यह कहा गया है कि हर नागरिक को जीने का और आजाद रहने का बुनियादी अधिकार है। न तो किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से बंदी बनाया जा सकता है और न ही उसे शारीरिक यातना दी जा सकती है। इसके साथ जुड़ा अधिकार शोषण से मुक्ति का अधिकार है। इसके बारे में धारा 24 विस्तार से बतलाती है। इतना ही महत्वपूर्ण है समानता का अधिकार, अर्थात कानून के सामने सभी नागरिक बराबर हैं। जन्म या धर्म की बिना पर कोई भी अपने को दूसरों से बड़ा नहीं समझ सकता। इस अधिकार के बिना बाकी बुनियादी अधिकारों को लागू करने की बात सोची ही नहीं जा सकती। संविधान की धारा 14 से लेकर 18 तक में समानता के अधिकार के बारे में विस्तार से बतलाया गया है। इस अधिकार को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए बहुत सारे कानून पास किए गए हैं। छुआछूत मिटाने वाला कानून, बधुआ मजदूरी समाप्त करने वाला कानून, समाज में महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिलाने वाला कानून। समानता का अधिकार यह नहीं कहता कि समाज के पिछड़े और गरीब तबके को आगे लाने के लिए, औरों के बराबर बनाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं की जा सकती। समानता के अधिकार का असली मतलब है अवसर की समानता। आरक्षण के बिना सदियों के पिछड़े और दबाए तबके को अवसर की समानता का लाभ मिल ही नहीं सकता। दूसरा महत्वपूर्ण बुनियादी अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार का मतलब यह नहीं कि आजाद हिंदुस्तान में नागरिकों को निरंकुश ढंग से मनमानी करने की छूट है। इसका अर्थ है सबसे पहले अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी अपने विचारों को और इच्छाओं को शांतिपूर्ण ढंग से प्रकट करने की आजादी। स्वतंत्रता की 16वीं धारा इस अधिकार के बारे में बतलाती है। कुछ लोगों की समझ में यह अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि शायद इसके बिना बुनियादी अधिकारों के उल्लंघन का कोई मामला उठाया ही नहीं जा सकता और न ही न्यायालय के सामने पहुंचाया जा सकता है। जनतंत्र को कारगर बनाने के लिए यह अधिकार बेहद महत्वपूर्ण है
इसके अभाव में न तो कोई उम्मीदवार अपने पक्ष में जनमत बना सकता है और न ही कोई मतदाता अपने चुने हुए प्रतिनिधि या चुनी सरकार के प्रति अपनी खुशी नाराजगी जाहिर कर सकता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बेलगाम नहीं छोड़ा जा सकता, इससे अराजकता को ही बढ़ावा मिल सकता है। इसीलिए इस बुनियादी अधिकार पर उक्त तर्कसंगत पाबंदियां लगाई गई हैं। देश की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले विचार, सांप्रदायिक बैर बढ़ाने वाले विचार, मित्र देशों के साथ संबंधों को खराब करने वाले विचार और अनर्गल गाली गलौज को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पर्दे के पीछे नहीं फैलाया जा सकता। भारत के नागरिकों को विचार और अभिव्यक्ति के साथ साथ धार्मिक मान्यता और पूजा उपासना की स्वतंत्रता भी बुनियादी अधिकार के रूप में हासिल है। भारत एक बहुत बड़ा देश है, इसका फैलाव एक महाद्वीप जैसा है। हमारा इतिहास इस बात का गवाह है कि हमारे सांस्कृतिक जीवन की सबसे बड़ी पूंजी या विविधता या बहुलता ही है। हम इसे हर हालत में बचाए रखना चाहते हैं। इसीलिए एकता या समता का अर्थ एक रास्ता या नकली जोर जबरदस्ती

0: से थोपी गई समानता नहीं समझा जा सकता। भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, अर्थात यहाँ राज्य का कोई सरोकार मजहब से नहीं। धर्म और मजहब नागरिक के जाती जिंदगी से जुड़े मसले हैं, इसीलिए धर्म और उपासना की स्वतंत्रता को बुनियादी अधिकार का दर्जा दिया गया है। विचारों और धार्मिक मान्यताओं की स्वतंत्रता के साथ साथ सार्वजनिक जीवन में शांतिपूर्ण संगठन और प्रदर्शन आंदोलन की स्वतंत्रता को भी बुनियादी अधिकारों में शामिल किया गया है। किसी भी जनतंत्र में इन अधिकारों का महत्व आसानी से समझ में आता है।
1: जो गरीब लोगों का हकों का जो हनन हो, उनको जो मौलिक अधिकार जो न मिलता हो, तो कोई भी सामाजिक संस्था अदालत में जा सकती है उन लोगों की तरफ से, और उन्हें मिलना चाहिए जो उनका हक, उसके बारे में कोर्ट में कार्रवाई कर सकती है। और हमने कहा कि इस बारे में जो हमारे जो सामाजिक संस्था है जो कोर्ट अदालत में जो गरीब लोगों का केस लाना चाहती है, तो इसीलिए वकील करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ एक पत्र जो कोर्ट अदालत को लिखे तो वो भी उतना काफी होता है, क्योंकि हमारे जो सामाजिक संस्थाएं भी बहुत ऐसे कुछ पैसे वाली नहीं है, इसीलिए वो लोग को भी जो कोर्ट में जो केस अदालत में केस लाना हो तो पत्र लिखकर भी कर सकते हैं।
2: नागरिकों ने अपने मूल अधिकारों को काफी हद तक
1: तो पत्र लिखकर भी कर सकते हैं
2: नागरिकों ने अपने मूल अधिकारों को काफी हद तक समझा है और उन्होंने इस बात की कोशिश भी की है कि वे अपने अधिकारों के लिए लड़ें और उनको मनवाएं, और काफी हद तक इसमें सफलता भी उन्होंने प्राप्त की है। और मैं न्यायपालिका को इस बात का श्रेय दूंगा कि उन्होंने व्यक्ति के जो मूल अधिकार थे उनको कार्यान्वित करने में काफी सफल भूमिका निभाई है।
0: भारत के संविधान की एक खासियत यह भी है कि इसमें अधिकारों के साथ साथ हर नागरिक के लिए कुछ कर्तव्य भी तय किए गए हैं। इनमें राष्ट्रीय झंडे और राष्ट्रीय गान का आदर शामिल है। पर्यावरण की रक्षा, सांस्कृतिक धरोहर की हिफाजत आदि ऐसे कर्तव्य हैं जिन्हें बुनियादी अधिकारों का दूसरा पहलू कहा जा सकता है।

0: सिर्फ नागरिक के ही नहीं शासन के या राज्य के कर्तव्यों के प्रति भी भारत का संविधान बहुत जागरूक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों वाला हिस्सा इन्हीं की रूपरेखा हमारे सामने रखता है।
1: अक्सर लोग असमंजस में पड़ जाते हैं कि हिंदुस्तान के संविधान में ज्यादा अहम चीज क्या है, मूलाधिकार या राज्य की नीति निर्देशक तत्व। असल में इन दोनों में टकराव नहीं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।
0: राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का सरोकार आर्थिक सामाजिक जीवन की बेहतरी से है। कुछ सीधे सीधे राजनीतिक जीवन से भी जुड़ते हैं। संविधान बनाने वालों का सोच यह था कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करने के लिए नागरिक के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य में निरंतर बेहतरी की जरूरत है। वर्षों की गुलामी और समाज में फैली गरीबी की वजह से कमजोर तबके को जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए लोकतंत्र में उसकी हिस्सेदारी के लिए ही इन नीति निर्देशक तत्वों की बात सुझाई गई। हर नागरिक के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा, पंचायती राज, नशाबंदी, भूमि सुधार आदि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में प्रमुख हैं। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ाना भी इस सूची में शामिल किया गया है।
2: मूल अधिकार तो सेक्रेट है, जैसे ही उसमें कुछ गड़बड़ होगी तो आपको हर तरह की प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, मिली हुई है, क्योंकि अगर मूल अधिकार खत्म हो गए फिर तो प्रजातंत्र खत्म है। लेकिन नीति निर्देशक तक ये जो कहा गया था उस वक्त कि ये डेकोरेशन है, वो तो गलत है। ये तो वाद विवाद का हिस्सा है। लोग कहते हैं कि तुमने हिंदुस्तान में 50 साल में

0: सबको शिक्षा क्यों नहीं दी? भाई आपने किया क्या? ये तो आपके संविधान की मांग थी, आप उसके लिए उत्तरदायी थे। संविधान ने जो भी चीज लिखी थी आप उत्तरदायी, उत्तरदायी थे। तो इसमें मॉरल था, इसमें मान्यता का था। चौथा जो हिस्सा है रीति रिश्ता, तो ये तो मान्यताओं का है। लेकिन शासक जो है मान्यताओं में गड़बड़ करते रहते हैं, तो उनको इसके जरिया रिमाइंड करते, डांट लगाते। और दूसरे दल वाले कहते हैं अगर हम आएंगे, अगर हम शक्ति में आएंगे तो ये तो प्रजातंत्र होता है, ये कोई तो नहीं है कि एक ही दल रहेगा। तो कहते हैं इन्होंने नहीं किया था, देखिए हम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये नीति निर्देशक तत्व में है, सामाजिक न्याय ये सबको पता था, एक दिन में तो होने वाला है नहीं। और जो हमने इनहेरिट किया था, जो हमने लिया था, उसके लिए बहुत समय चाहिए। तो ये किस्म का भविष्य के लिए, आने वाले समय के लिए गाइडेंस थी। लेकिन संविधान बनाते वक्त ये बार बार कहा गया, इसका मतलब ये नहीं है कि जो वर्ड यूज किए गए कि ये डेकोरेटिव पीस है, कि ये कोई शोभा के लिए, हमें संविधान को एक सुंदरता दिखाने के लिए एक हम खाम खा की बात कर रहे हैं।
1: राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निशुल्क प्राथमिक शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। समाज में फैली गैर बराबरी को मिटाने के लिए यह बेहद जरूरी है कि सभी नागरिकों को आगे बढ़ने के अवसर समान रूप से मिलें। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में बच्चों के कल्याण की बात भी सुझाई गई है। इसीलिए हमारे संविधान में बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा की समुचित व्यवस्था करने का निर्देश साफ दिया गया है। इसी तरह सदियों से समाज में महिलाओं का जीवन काफी कठिन रहा है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में इस तबके की कमजोरी और मजबूरी दूर करने के लिए हिदायतें दी गई हैं। आजाद हिंदुस्तान में महिलाओं के कल्याण के लिए कई कानून बनाए गए हैं। बाल विवाह का उन्मूलन, समान काम के लिए समान वेतन और दहेज प्रथा की कुरीति को मिटाना इनका मकसद है।

सामाजिक और आर्थिक जीवन में बेहतरी के लिए, पिछड़ों और दलितों को आगे बढ़ाने के लिए, राजनीतिक जीवन में उनकी हिस्सेदारी बढ़ाना बेहद जरूरी है। इसी को ध्यान में रखकर संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में पंचायती राज को शामिल किया गया है।

0: संविधान की कल्पना क्या है राष्ट्रीय एकता की? कि सबको मौलिक अधिकार प्राप्त हो, सबका मौलिक अधिकार का आदर हो, सबको अपनी जो बेसिक नीड्स कहते हैं आवश्यकता है वो मिले। पार्ट फोर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें काफी वादे किए गए हैं। तो संविधान की कल्पना ये थी कि राष्ट्रीय एकता इस तरह की होगी जिसमें न्याय की भावना हो और पिछड़े समाज के लिए आदर हो और उसका हक की रक्षा हो, जिसको मैं कहता हूं जस्ट इंटीग्रेशन, न्यायपूर्ण, न्याय से भरपूर राष्ट्रीय एकता।
1: यह बात याद रखने लायक है कि आजादी से आज तक बहुत सारे ऐसे कानून पास किए गए हैं जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सिर्फ अमूर्त या आदर्श नहीं रहने देते बल्कि एक ठोस रूप देते हैं। इन कानूनों को न्यायालय का संरक्षण प्राप्त है और इनके आधार पर नागरिक बुनियादी अधिकारों की तरह ही अदालत के दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। वैसे यह अंतर बना हुआ है कि बुनियादी अधिकारों की हिफाजत न्यायालय करते हैं, उन्हें ऐसी कोई जिम्मेदारी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में नहीं सौंपी गई है। यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि आजादी के लिए लड़ने वालों का सपना अभी पूरी तरह साकार नहीं हो पाया है। समाज से गैर बराबरी पूरी तरह खत्म नहीं हो सकी है, सिर्फ कुछ कम हुई है। हाँ, इस बात पर संतोष किया जा सकता है कि हम अपनी तय की दिशा में बढ़ रहे हैं और संविधान के सार के बारे में बढ़ती जागरूकता के साथ हमारी गति क्रमशः तेज होती जा रही है।
0: हम लोग संविधान को लिविंग डॉक्यूमेंट कहते हैं कि ये 1950 में जब बन गया और 1995 में भारत बदल चुका है, भारत का समाज बदल चुका है, भारत के समाज में मांगे बदल चुकी हैं, मान्यताएं बदल चुकी हैं, सरकार से एक नई नई चीजें मांगी जा रही है, नए नए दल आ रहे हैं, तो प्रश्न ये उठना चाहिए कि क्या समाजवाद या इसके आधार पर जब हम इसको लिविंग डॉक्यूमेंट कह रहे हैं कि ये परिवर्तन हो रहा है, ये संविधान वो नहीं है जो 1950 में था, इसमें कई परिवर्तन किए गए हैं, और नहीं तो वो संविधान खत्म हो जाते हैं। अगर आप उसको समाज के परिवर्तन के साथ मेलतोल नहीं करें, जोड़े नहीं, वो तो डॉक्यूमेंट रह जाएगा, खत्म हो जाएगा। इस आधार पर लोगों में एक बड़ा असंतोष है कि साहब समाज बदल गया, संविधान में भी आपसे कहा गया, लेकिन जो सरकारें हैं वो इसको नहीं करती। आपने कहा था आपको रहने के लिए घर मिलेगा, आपको नौकरी मिलेगी, तो आपने संविधान में जो बात कही थी उस वक्त कह के आप चुप हो गए, लेकिन 1950 में लोग मांग कर रहे। तो संविधान भारत का एक लिविंग डॉक्यूमेंट होते हुए इसने अपने ट्रायल एंड एरर से आदमी सीखता है, क्योंकि आदमी को नई चीजें करनी होती हैं, तो भारत का संविधान ट्रायल एंड एरर में तो ठीक उतरा है।
2: कोई भी संविधान पत्थर की लकीर नहीं होता। बदलते राजनीतिक और आर्थिक हालात ऐसी चुनौतियां पेश करते हैं जिनका सामना करने के लिए संविधान में संशोधनों की जरूरत पड़ती है। भारतीय संविधान इसका अपवाद नहीं, मगर ज्यादा अहम बात यह समझ लेना है कि लकीर का फकीर बने रहने की अपेक्षा यह बात ज्यादा महत्वपूर्ण है कि संविधान बनाने वालों की मंशा क्या थी। इसी सिलसिले में संविधान के सार को समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अनेक फैसलों में यह बात कही है कि संविधान का एक बुनियादी ढांचा है, एक बेसिक स्ट्रक्चर, और जिसे समझने के लिए संविधान के सार को हमेशा याद रखना जरूरी है। इस बुनियादी ढांचे में शामिल है मूलाधिकार, संघीय व्यवस्था और लोकतांत्रिक चुनाव। इसमें कोई फेरबदल किसी संशोधन के द्वारा नहीं किया जा सकता। सच है कि आज आजादी के 50 साल करीब करीब बीत जाने के बाद भी सभी सपनों को आजादी की लड़ाई के साकार नहीं किया जा सका है, और संविधान में जिन आदर्शों को प्रतिष्ठा दिलाई गई है वह सब लागू भी नहीं किए जा सके हैं। फिर भी यदि लचीलेपन की कसौटी पर कसें तो भारत का संविधान खरा उतरता है।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे

समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को। सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here.

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूं, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। समय 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
6: बिल्कुल सोचा है पापा।
5: क्या सोचा है?
6: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
5: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
6: जी पापा।
5: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
6: हाँ पापा बिल्कुल।
7: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
8: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। HIV और टीबी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक HIV रोगी को टीबी होने का खतरा आम आदमी से 10 गुना अधिक होता है। अगर HIV संक्रमित व्यक्ति को टीबी होता है तो टीबी का रोग HIV को एड्स में तेजी से बदल देता है। टीबी के इलाज का कोर्स पूरा करने पर HIV रोगी टीबी से पूरी तरह मुक्त हो सकता है। मैं विनती करता हूं कि हर HIV मरीज तुरंत टीबी की जांच कराएं और सभी टीबी मरीज भी HIV की जांच कराएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।

0: ट्यूबरक्लोसिस या टीबी किसी को भी हो सकता है। मैं भी इसका शिकार हुई थी, पर मैं इससे बच निकली। मैं ऐसा इसलिए कर सकी क्योंकि मैंने अपना इलाज अधूरा नहीं छोड़ा। टीबी से लड़ने के लिए इसका पूरा इलाज करना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये बीमारी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। हो सकता है आप ड्रग रेजिस्टेंट भी बन जाए, जो एक अधिक खतरनाक प्रकार की टीबी है और इसका इलाज भी बहुत मुश्किल है। एक टीबी विजेता होने के नाते मुझे पता है कि ये आसान नहीं है। इसका इलाज लंबा चलता है और इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। जब मैं ड्रग रेजिस्टेंट टीबी से जूझ रही थी, तब मुझे इसके इलाज से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली चुनौती है इसके इलाज से जुड़ी दवाइयों की संख्या। कभी कभी तो 16 दवाइयां लेनी पड़ती थी और कब कौन सी दवाई लेना ये याद रखना बहुत मुश्किल था। दूसरी चुनौती है इसके साइड इफेक्ट्स। उल्टी होना, सिर चकराना, दर्द, कमजोरी और मानसिक स्थिति बिगड़ने जैसे साइड इफेक्ट से उबरना मुश्किल होता है। इसलिए कई लोग इलाज बीच में ही छोड़ देना चाहते हैं। मैं भी यही करना चाहती थी। तो इन चुनौतियों से लड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर आप सरकार के RNDCP के द्वारा इलाज करा रहे हैं, तो उसमें एक ऐसा सिस्टम है जो आपके इलाज के ऊपर निगरानी रखता है और ये सुनिश्चित करता है कि आप आपका इलाज पूरा कराएं। ये काफी आसान है, इसको 99 डॉट्स कहते हैं। टीबी की दवाएं एक लिफाफे में होती है, जिसमें आपको अलग अलग निर्देश, आकार और नंबर दिखाई देंगे। यहाँ के सलाहकार पहले डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं और मरीजों से पूछते हैं कि डॉक्टर ने उनको कितनी गोलियां लेने को कहा है। चलिए हम आज की दवाई लेते हैं। मुझे आज 3 गोलियां खानी है। गोली नंबर 1 से शुरू करके गोली नंबर 3 तक खानी है। याद रखिए, लिफाफे में जैसा दिखाया है आपको उसी संख्या क्रम में गोलियां लेनी है। अगर आप क्रम के हिसाब से 3 गोलियां ले चुके हैं, तो इन गोलियों के खुले फ्लैप के अंदर देखें। आपको इन फ्लैप्स के अंदर छिपे नंबर दिखाई देंगे। अगर आप 3 गोलियां लेते हैं तो आप 1 या 2 नंबर बता सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने जो मोबाइल नंबर दिया है, उस मोबाइल से इनमें से किसी एक नंबर पर आपको कॉल करना है। ऐसा करने की क्या जरूरत है? जब आप ये कॉल करेंगे तो आपके सुपरवाइजर को ये पता चलेगा कि आपने उस दिन की गोलियां ले ली। अस्पताल कर्मचारी को ये पता होना जरूरी है कि आप नियमित रूप से दवाई ले रहे हैं। अगर आप नहीं चाहते कि वो बार बार आपके घर आए, तो आपको उनको कॉल करके ये बताना होगा कि आपने दवाई ले ली है। इसके लिए आपको रोजाना इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करना होगा। याद रखे, ये एक टोल फ्री नंबर है। आपके मोबाइल पे बैलेंस ना होने पर भी आप इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं। अगर बैलेंस हो भी तो भी इससे कोई पैसे नहीं कटेंगे। ये भी याद रखें कि आपको इनमें से दिखाए गए किसी एक नंबर पे ही कॉल करना है, सभी नंबर पे कॉल करने की जरूरत नहीं है। आपको इन नंबरों के पहले कोई अतिरिक्त संख्या जोड़ना भी जरूरी नहीं। जब आप नंबर मिलाएंगे तो दूसरी तरफ से धन्यवाद सुनने मिलेगा। अगर आपको कोई साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, तो उन्हें कहीं लिखिए और अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात कीजिए। ये याद रखना जरूरी है कि आपको बिना किसी चूक अपना इलाज समय पर लेना है। मैं जानती हूँ कि ये आसान नहीं है, लेकिन टीबी को हराने के लिए कोई दूसरा तरीका भी नहीं है। इलाज पूरा करने के लिए 99 डॉट्स का उपयोग करें। टीबी से लड़ने के लिए इसे एक साधन समझें। आइए हम सब मिलकर टीबी को हराएं।
1: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाएं। निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और

0: फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें। यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: मेरी फिल्मों में आपने देखा ही होगा कि अगर विलन को पीटते हुए आधे में छोड़ दिया जाए तो बाद में विलन बदला लेने जरूर आता है और हीरो के लिए बहुत सारी दिक्कतें खड़ी कर देता है। ठीक ऐसे ही अगर हम टीबी का इलाज अधूरा छोड़ दें तो आगे जाके ड्रग रेजिस्टेंट टीबी भी हो सकता है, जिसका उपचार लंबा और कठिन भी है। इसीलिए पूरा कोर्स ही है पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: हाय, मैं हूं रणवीर जी, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
3: मेरी सुबह हो तुम ही और तुम ही शाम हो, तुम दर्द हो तो
4: धोखा मेरे साथ हुआ है, जो करना है मैं ही करूंगा।
5: इशिता, आई एम सॉरी, लेकिन भाई से बढ़के कुछ नहीं।

0: आज के बाद मुझे अपना चेहरा मत दिखाना, जान ले लूंगा।
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: अरे सुनीता, कैसे बा मुनिया?
3: नमस्ते आशा दीदी,
2: सब ठीक बा?
3: साफ सफाई के ध्यान रखत आरू ना?
2: जी दीदी, जैसे रहुआ कहला रहनी, हर द्वार के साफ सफाई की जिम्मेदारी लेनी हम। जहाँ कहीं भी पानी जमा देखे नी, ओकेरा के तुरंत साफ करी नी। जैसे के पानी के ड्रम, कूलर, फ्रिज, ट्रे, सब के साफ सफाई करी ले हम।
4: और आसपास कहूँ भी टायर, नरिवल, खाली बर्तन या कौनो भी चीज में पानी

0: बेगम।
1: बस अमली हर इतवार के साफ सफाई की जिम्मेदारी, मिलके पड़क जा मच्छर बन पर भारी।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.

असहज हो सकती हैं, काफी दर्दनाक भी। लेकिन बहुत से तरीकों से इन समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। ऐसा करने का एक सबसे आसान तरीका है हेल्दी जूस पीना, जो विटामिन, मिनरल्स और डाइजेस्टिव एंजाइम से भरपूर होते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी हेल्दी जूस के बारे में जो आपके पाचन तंत्र के लिए काफी लाभदायक हो सकते हैं। बात करते हैं अदरक का जूस के विषय में, तो बात सामने आती है कि अदरक का जूस एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है, जो पेट के डिस्कम्फर्ट से राहत दिलाता है और हेल्दी डाइजेशन होने में मदद करता है। अदरक का जूस बनाने के लिए आपको अदरक छील लेना है और उसे छोटा छोटा काट लें। अब थोड़े से पानी के साथ इसे ब्लेंड कर लें और इसके पल्प को छान लें। आप स्वादानुसार नींबू का रस या फिर शहद भी मिला सकते हैं, इससे ये आपको कड़वा नहीं लगेगा। अब बात अनानास का जूस। जी हाँ, अनानास में ब्रोमेलिन नाम का तत्व अधिक मात्रा में होता है, जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर सकता है और इन्फ्लेमेशन कम करने में सहायक होता है। अनानास के जूस का सेवन करने से पाचन में लाभ मिल सकता है और ब्लोटिंग जैसी समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है। आपको केवल ताजा अनानास लेना है, उसे थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। अब इसे छानकर पी सकते हैं। अब बात नींबू के रस की। नींबू का रस भी प्रकृति में अम्लीय होता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। नींबू की साइट्रिक प्रकृति गुर्दे की पथरी की संभावना को कम करने में मदद करता है। बात एलोवेरा जूस की। एलोवेरा अपनी हीलिंग गुणों के लिए जाना जाता है। इससे इन्फ्लेमेशन कम होने में मदद मिलती है। इससे पेट में हेल्दी बैक्टीरिया का उत्पादन बढ़ता है और पाचन में भी मदद मिलती है। आपको केवल एलोवेरा जेल को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। गाजर का जूस। गाजर में फाइबर अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है और ये पाचन तंत्र को रेगुलेट करने में मदद करता है। इससे हेल्दी बाउल मूवमेंट्स में भी मदद मिलती है। अगर आप इसे नियमित रूप से पीते हैं तो पेट में इन्फ्लेमेशन भी कम हो सकती है और पेट में हेल्दी बैक्टीरिया के उत्पादन में भी मदद मिलती है। आपको केवल गाजर को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड करके छान कर पी लेना है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda. Suno Sharda.
1: नमस्कार, मैं श्रुति कीर्ति वर्मा, जिला मलेरिया अधिकारी, गौतम बुद्ध नगर। आज मैं सामुदायिक रेडियो सुनो शारदा 90

90.8 FM के माध्यम से जागरूक करने के लिए फाइलेरिया के विषय पर बात कर रही हूँ। फाइलेरिया एक मच्छर जनित बीमारी है जिसे क्यूलेक्स मच्छर के काटने पर यह बीमारी फैलती है। इसके लिए जो है एक पैरासाइट जिम्मेदार होता है, निमेटोड है वो, बेसिकली वाउचेरिया ब्रोंकाइफाई, जिसको ये कैरियर के रूप में मच्छर जो क्यूलेक्स काम करता है। और ये संक्रमित मच्छर अगर किसी स्वस्थ मनुष्य को काटता है तो ये फाइलेरिया रोग हो जाता है। इसके बचाव के लिए बहुत ज़रूरी है, पहले तो मैं ये बताऊंगी कि इसके लक्षण क्या होते हैं। अगर ये मच्छर किसी को काटता है तो पहली बात तो ये तुरंत इसके लक्षण प्रकट नहीं होते हैं, काफ़ी सालों के बाद में, लगभग 4 से 5 साल, कभी इससे भी ज़्यादा लंबा पीरियड लग जाता है, 7 ईयर्स भी कभी कभी देखने में आया है। तो काफ़ी सालों के बाद ये केसेस रिपोर्ट होते हैं। और हाथी पाँव, जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा कि पैरों में सूजन, लिम्फ नोड्स से प्रभावित हो जाते हैं, एलिफेंटियासिस की तरह इस तरह की बीमारियां देखने में आती हैं। तो हमें करना ये है कि हमें, अगर हम जितना बच सके मच्छरों से बचाव के लिए हमें कोशिश करनी होगी। जैसे डेंगू और मलेरिया का हम जागरूकता अभियान करते हैं, उसी तरह से हमें फाइलेरिया के लिए भी बचाव के लिए आप मच्छरदानी का प्रयोग कर सकते हैं। डिफरेंट तरह के आजकल मार्केट में कॉयल्स आते हैं, उनका भी यूज़ कर सकते हैं, नीम का तेल लगा सकते हैं। और बहुत अच्छा है कि कहीं भी अगर पानी स्टोर है तो अपने घरों के आसपास, अगर आप अपने घर में भी साफ़ सफाई रखते हैं, पानी कहीं भी जमा ना होने दें। ये हमें विशेष रूप से इस तरह की सावधानी लेकर के चलनी है। बेसिकली पाया ये जाता है कि जैसे बारिश स्टार्ट होती है और हमारा मलेरिया विभाग, हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हमारे जिला अधिकारी, हमारा पूरा प्रशासन और खास करके हमारा पूरा मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, इन सब चीज़ों के लिए हम लोग लगातार अवेयरनेस कैंपेन चलाते रहते हैं कि बारिश के बाद जो पानी इकट्ठा होता है सड़कों पर, घरों के आसपास, छत के ऊपर, कई बार कंटेनर्स, खास करके जो शहरी इलाके हैं उनमें बहुत छोटे छोटे जो हमारे स्थान होते हैं उनमें पानी भर जाता है, तो हमें ऐसे पानी को वहां से निकालना है। और अगर ऐसा पानी अगर हम नहीं निकाल सकते हैं तो वहां पे हमें एंटी लार्वा का छिड़काव भी करवाना है। तो नगर निगम, हमारे यहाँ नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, इन सब चीज़ों पर सक्रिय रहते हैं। मलेरिया विभाग भी लगातार छिड़काव और फॉगिंग की व्यवस्था भी करता है। और अगर हम व्यक्तिगत स्तर पर बात करें तो इन जगहों पर हम डीजल और केरोसिन का यूज़ कर सकते हैं, जला हुआ मोबिल ऑयल ऑयल और जला हुआ डीजल का भी प्रयोग करके हम लार्वा को रोक सकते हैं। मेरा आप लोगों से आग्रह है, क्योंकि चाहे डेंगू का एडीज मच्छर हो, मलेरिया का एनाफिलीज हो या क्यूलेक्स हो, हमें इनकी ब्रीडिंग ही स्टॉप करके हम बीमारियों के संक्रमण को रोक सकते हैं। धन्यवाद।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। जिंदगी में तनाव बहुत ज्यादा है और हर कोई ये चाहता है कि तनाव से मुक्त आप रहें, हम रहें। यही एक वजह की बात हेल्थ की आज हम बात करना चाहते हैं कि तनाव को कैसे दूर भगा सकते हैं। मैं समझता हूं अगर आप एक अच्छी सी मुस्कान अपने ऊपर रखकर चलते हैं, धारण करकर चलते हैं, तो निश्चित तौर पर आप तनाव से अपने आप को बचा कर रख सकते हैं। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि मुस्कान कितनी जरूरी है आपकी जिंदगी में, या यूं कहें कि आज का जो विषय है वो विषय है स्माइल प्लीज। बात करते हैं, मुस्कुराहट एक ऐसी दवा है जो इंसान को न केवल मुफ्त में मिलती है बल्कि ये उसके ज्यादातर शारीरिक और मानसिक रोगों के निदान में बहुत कारगर साबित होती है। मुस्कुराते रहने वाले मनुष्य की सेहत दुरुस्त रहती है और उसका मिजाज भी हमेशा बढ़िया रहता है। आइए जानते हैं मुस्कुराने के 10 हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। प्रतिदिन सुबह मुस्कुराहट के साथ उठना, नई ऊर्जा से भरकर अपने दिन का स्वागत करना प्रसन्नता से जीवन जीने का सर्वोत्तम धन है। नंबर 2, मुस्कुराने से हमारा मन अपने आप ही चिंताओं से मुक्त हो जाता है और मन को एक आत्मिक सुकून मिलता है। नंबर 3, हंसी के ठहाकों के साथ तालियां बजाने से जीवन में उत्साह का संचार होता है तथा जब हम तालियों के साथ हंसी का व्यायाम करते हैं तो शरीर की सुप्त अवस्था में रहने वाली कोशिकाएं भी जागृत हो जाती हैं, जिससे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 4, मुस्कुराना कई रोगों की अचूक औषधि है। ये कैसी दवा है जिसका हमारे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 5, मुस्कुराते रहने से मनुष्य का इम्यूनिटी सिस्टम सक्रिय होता है। इससे प्रकृति किलर सेल्स में बढ़ोतरी होती है जो वायरस जनित रोगों और ट्यूमर सेल को खत्म करने का कार्य करती है। मुस्कुराहट या दिल खोलकर हंसना हृदय के लिए एक सर्वोत्तम व्यायाम है जिसे टी सेल की संख्या में बढ़ोतरी होती है। नंबर 7, मुस्कुराने से एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए की मात्रा बढ़ती है जो श्वसन नली में होने वाले इन्फेक्शन से बचाव करती है। मुस्कुराने से तनाव को जन्म देने वाले हार्मोन्स का स्तर घटता है। पाचन तंत्र सही रखना, वजन घटाना और चर्बी कम करने में भी हंसी अहम भूमिका निभाती है। जोर से हंसने या मुस्कुराने से हमारे शरीर में एक तरंग सी दौड़ जाती है जिसमें एंड्रोफिन हार्मोन भी होता है जो प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर का दर्द निवारक है। ये शरीर में स्फूर्ति बढ़ाने और स्वस्थ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। नंबर 9, मुस्कुराने से मस्तिष्क के दाएं और बाएं दोनों भागों की सक्रियता बढ़ती है जिससे आपकी मेमोरी शार्प होती है। मुस्कुराना एक ऐसी संजीवनी बूटी है जो मनुष्य की मनोस्थिति को बदलकर उसे खुश रहते हुए जीने का अंदाज सिखाती है। हमेशा मुस्कुराना एक सकारात्मक भावना है जिसमें व्यक्ति को ऊर्जावान और शांतिपूर्ण बनाने के सभी तत्व उपस्थित रहते हैं। जैसे उदास एवं मुरझाया हुआ चेहरा किसी को भी नहीं भाता है, तो वहीं एक मासूम बच्चे की खिलखिलाती सी मुस्कुराहट हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, क्योंकि मुस्कुराना एक ऐसा एहसास है जो मन को सुकून प्रदान करता है। अतः हमें ये बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि मुस्कुराने के लिए कोई दिन कोई समय तय करने की जरूरत नहीं है। बस हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान कायम रखिए और सेहतमंद बनने के साथ साथ दूसरों को भी सेहतमंद बने रहने में काफी मदद कीजिए। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: हाय, नमस्कार, मैं हूँ RJ रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

तू जाने है कहां ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो संग बाय लकी अली कंपोजर्स माइकी मैक्लेरी और सूरज कुलवडी लिरिसिस्ट कौसर मुनीर तू जाने है कहां सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
1: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
0: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
1: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
0: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
1: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
0: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
0: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुषा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना, दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
5: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
6: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा।
4: ट्वेल्थ पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
0: बिल्कुल सोचा है पापा।
4: क्या सोचा है?
0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
4: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
0: जी पापा।
4: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
0: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University. शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: बिल्डिंग्स। फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM. ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश.
2: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM.

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर

0: take Carol Vaz as your lawfully wedded wife?
1: I do.

0: दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 एफएम सुनो शारदा।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 एफएम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: Solo Sharda.
6: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
7: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
8: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
9: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
10: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: हाय, मैं हूँ रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: मैडम यू कैन बी वेरी फंटा।
3: केटो डाइट का नाम सुना है? आज से ये सब बंद और वो शुरू।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: मैं जाऊंगी उनके पास जो नहीं है तारा की तरह तैयार।
1: टीम तारा, मच्छर आ रहे हैं, क्या तुम सब हो तैयार?

0: गुडबाय मिस मच्छर।
1: अगली बार हम सीखेंगे कि क्या करना है अगर आ जाए बुखार।
0: तब तक रहो तारा की तरह तैयार। बाय बाय।
2: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

0: Solo Sharda.
1: 94 Days FM. भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में. सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम. भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर. तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM. सुनो शारदा.
2: खबर कमला के घर में चार औरतें चोरी छिपे घुस गईं. कमला जी कौन थी औरतें?
3: अरे मेरी सहेलियाँ. वो आई थी पता करने मेरी मुन्नी की तंदुरुस्ती का राज.
2: क्या है राज?
3: 6 महीने पूरे होते ही पेट पूजा. रसोई में जो भी हो जैसे दाल चावल ले लो, इसमें कोई भी साग सब्जी मिला के पकाओ, इनको मीस के गाढ़ा बनाओ और अगर घी हो तो ऊपर से थोड़ा घी मिलाओ और बच्चे को खिलाओ. दिन में 3 बार 100 ग्राम की कटोरी में.
4: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी.
5: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी. स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए.

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। यदि आपको दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, रात का पसीना, हल्का बुखार, वजन का कम होना या भूख में कमी महसूस हो तो जल्द से जल्द अपनी बलगम की जांच कराइए, क्योंकि ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। घबराइए नहीं, इसका 6 से 8 महीने का पूरा इलाज है और देश के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में इसकी जांच और इलाज के कोई पैसे नहीं लगेंगे। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1-800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला

कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें, आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं, आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें, अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें, सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें, धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें, दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है, कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है, अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मेरे यानी गगन के साथ स्मार्ट संस्था के साथ मिलकर हम एक खास कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है सेहत से ही लाभ गई। इसी के अंतर्गत एक खास बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। दोस्तों, जब भी हम सफर पर निकलते हैं या निकलने से पहले हर चीज की प्लानिंग करते हैं, नया स्कूटर या कार खरीदने से पहले हर विकल्प पर सोचते हैं, तो फिर अपने परिवार की योजना बनाने से पहले क्यों नहीं सोचते? ये तो जिंदगी भर का फैसला है। आपके परिवार को नियोजित रखने के लिए आपके पास गर्भ निरोधक के कई विकल्प हैं। जब आपके पास सही जानकारी होगी तभी आप अपने स्वास्थ्य, अपने शरीर, अपने जीवन और अपने भविष्य के बारे में सही फैसला ले पाएंगे। तो झिझके नहीं, आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और अपने सभी गर्भ निरोधक विकल्प जाने। ये खास जानकारी सुनो शारदा 90.8 FM के माध्यम से स्मार्ट के सहयोग से सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत मैं आप तक पहुंचा रहा था। अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: Hello, मेरी बेस्ट फ्रेंड टिंकू।
3: हेलो मेरी प्यारी दोस्त तारा।
2: अरे क्या हुआ टिंकू, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो?
3: ओह, मुझे बुखार हो गया है।
2: बुखार?
3: पता नहीं, मैंने तो डॉक्टर को दिखाया ही नहीं है।
2: ओह नो नो नो नो नो टिंकू, बुखार में तेरी पड़ेगी भारी। और तुम तो ऐसी जगह रहते हो जहाँ मच्छर भी बहुत है, हो सकता है मच्छर के काटने से तुम्हें बुखार हो।

0: बुखार हो सकता है, जिससे अपंगता या मृत्यु भी हो सकती है।
1: ठीक है, मैं डॉक्टर को दिखाता हूँ। ओके अंकल, बाय बाय।
2: बाय टिंकू।
0: बाय बाय बेटा, टेक केयर।
2: तुम सब भी समझ गए ना।

0: जरूर जाना, जरूर जाना।
1: अगर नहीं समझे तो मैं आऊंगी करने बार, जैसे आई थी पिछली बार।
2: बिल्कुल नहीं, तारा है हमेशा तैयार, और ये मेरा आखिरी वार।
1: तुम जीती, मैं हारी, तारा तुम हमेशा रखती हो पूरी तैयारी।
2: दोस्तों, अब मच्छरों को हराने की बारी तुम्हारी। तो क्या टीम तारा है मच्छरों से लड़ने को पूरी तरह तैयार?
3: टीम तारा।

0: मरना नहीं मच्छरों से बचने के उपाय।
1: फिलहाल तारा अप्पा की ओर से बाय बाय।
2: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: लेकिन दोस्त, अगर ऐसे ही जिंदगी का साथ निभाते चले तो जिंदगी तुम्हारा साथ निभाना छोड़ देगी और अस्पतालों के चक्कर लगेंगे सो अलग।
1: जी हाँ, आप भी सचेत रहें और रहें धूम्रपान से दूर, क्योंकि हम सबका है यही सपना, नशा मुक्त हो भारत अपना। सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: या 45 मिनट योग करने से बीमारियां दूर रहती हैं और आप स्वस्थ रहते हैं। योग एक ऐसा विज्ञान है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत उपयोगी है।
1: आओ करें सब योग।
2: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
4: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
5: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
6: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
4: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: स्मार्ट के सौजन्य से प्रोजेक्ट सेहत सही लाभ कई में आपका स्वागत है। इसका उद्देश्य है आपको स्वस्थ रखना और आपकी उन्नति प्रगति और खुशहाली में योगदान देना। यह एक विशेष सामुदायिक रेडियो पहल है जिसके अंतर्गत हमारा उद्देश्य है समुदाय तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाना। तो आइए हाथ मिलाएं और सरकार द्वारा की गई इस पहल को सफल बनाएं।
1: नमस्कार श्रोताओं, हमारे साथ है डॉक्टर कालिंदी और जानते हैं हम उनसे कि इस बदलते मौसम में अपनी सेहत का बचाव कैसे कर सकते हैं।
2: हेलो, मैं हूं डॉक्टर कालिंदी सूद, सीनियर रेसिडेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी। मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं ड्यूरिंग चेंजिंग वेदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको थोड़ा स्मार्टली ड्रेस करना है। प्लीज वेयर लेयर्स सो दैट आपको अगर तो ठंड लगती है, यू आर इजीली एबल टू पुट ऑन अ जैकेट। देन स्टे हाइड्रेटेड टू कीप योर स्किन एज वेल एज योर इम्यून सिस्टम हेल्दी। सो प्रॉपर हाइड्रेशन इज इम्पॉर्टेंट। अपने साथ पानी हमेशा कैरी कीजिए। अपनी डाइट का ध्यान दीजिए, इंक्लूड विटामिन सी रिच फ्रूट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज इस टाइम पे वायरल इन्फेक्शंस आर वेरी कॉमन। अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखिए, रेगुलर एक्सरसाइज जरूर कीजिए, वो भी आपकी इम्यूनिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, टेक केयर ऑफ योर स्किन, बिकॉज वेदर कभी भी ड्राई हो सकता है। आपको मॉइस्चराइजर जरूर यूज करना चाहिए ऐसे टाइम में। बाहर जाने से पहले हमेशा सनस्क्रीन यूज करें। अगर आपको कोई सीजनल एलर्जीज हो जाती हैं तो इट विल बी बेनिफिशियल कि आप एक एयर प्योरीफायर में भी इन्वेस्ट करें अपने घर में। हाइजीन हमेशा मेंटेन करें। फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। जब आप बाहर होते हैं अपने फेस पे आईज पे कहीं पे भी टच ना करें। अपने साथ एक हैंड सैनिटाइजर रखें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गेट एडिक्वेट स्लीप। थैंक यू।
1: तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर कालिंदी जिन्होंने हमें बताया कि बदलते मौसम में अपने स्वास्थ्य का बचाव कैसे करें।
0: आप सुन रहे थे स्मार्ट के सौजन्य से हमारा विशेष कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, जिसका उद्देश्य है आपको स्वस्थ रखना और आपकी उन्नति प्रगति और खुशहाली में योगदान देना। तो आइए इस मुहिम को सफल बनाएं।
3: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
4: बिल्कुल सोचा है पापा।
3: क्या सोचा है?
4: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
3: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
4: जी पापा।
3: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
4: हाँ पापा बिल्कुल।
5: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
6: So where are you? The world is here at Sharda University.
7: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।